सुप्रभात। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज शुक्रवार है। 1948 की बैसाख मास की 18वीं तिथि तदनुसार 8 मई 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की

0: स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन, अपनत्व का सार ममता जीव का। वाचन स्वर है विभूति भूषण भट्ट का।
2: ममता जीव का दैवी गुण है जो सीधे और सपाट रूप से अपनेपन का बोध कराती है। शब्द का यथार्थ बोध मन की भावना स्वहित, स्वार्थ, प्यार, मोह, स्नेह आदि के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन अपनेपन की सार्थकता ये है कि इसमें प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जिसमें ममता प्रदर्शित करने वाला भी डूबता है और जिसके प्रति ममता प्रदर्शित की जाती है वो भी उस प्रेम की धारा में डूब जाता है। ये एक ऐसी मूल प्रवृत्ति है जो प्रत्येक प्राणी में सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है, लेकिन जिसका हृदय सरल, तरल और कोमल होता है, जिसके हृदय में बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके हृदय में अपने पन के बोध का आधिक्य होता है, उसके मन में ममता सदैव जागृत रहती है। इसके विपरीत संवेदना शून्य क्रूर कर्मियों के मन में ममता सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की सोई हुई ममता जब जागती है तो अंगुलिमाल जैसा कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सन्यासी बन जाता है। ममता दो रूपों में परिलक्षित होती है, व्यक्तिनिष्ठ और समष्टिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ ममता की सीमा संकुचित होती है, जहां व्यक्ति ममता का प्रदर्शन केवल अपने प्रियजनों के प्रति ही करता है वो व्यक्तिनिष्ठ ममता कहलाती है। व्यक्तिनिष्ठ ममता को मोह भी कहा जाता है। स्वार्थ पूरित ऐसी ममता का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसी ममता तो पशु पक्षी सभी में विद्यमान होती है। महत्वपूर्ण है समष्टिनिष्ठ ममता। ममता जब सीमा के बंधन को तोड़कर व्यापक रूप ग्रहण कर लेती है, ममता प्रदर्शित करने वाला संसार के सभी प्राणियों को प्रेम के बंधन में बांधकर अपना लेता है। संसार के किसी भी पीड़ित व्यक्ति के प्रति जब उसके हृदय में करुणा का बोध होता है और उसे दूर करने का जब वो मानसिक या शारीरिक प्रयास करता है, तो वहीं समष्टिनिष्ठ ममता प्रदर्शित होती है। इसी व्यापक ममत्व के वशीभूत होकर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने राज्य, पत्नी, पुत्र का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा का व्रत लिया। मदर टेरेसा संपूर्ण विश्व की मां बन गई और संपूर्ण विश्व को अपनी ममता के आंचल में समेट लिया। यही ममता का वास्तविक रूप है। जब किसी पीड़ित या दुखी व्यक्ति को देखकर यदि दर्शक के हृदय में पीड़ा की ऐसी सहानुभूति उमड़े कि दर्शक के आंखों में आंसू की अविरल धारा प्रवाहित हो उठे, तो वही सच्ची ममता होती है। बुद्ध, विवेकानंद और मदर टेरेसा के साथ ऐसा ही हुआ था। ममता हृदय को जोड़ती, करुणा को जन्म देती है। इसका सीधा संबंध हृदय से होता है। ये बुद्धि और तर्क से परे है। इसका समष्टि रूप ही विश्व में विश्व बंधुत्व और अपनापन ला सकता है, जो विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, अपनत्व का सार ममता जीव का। वाचन स्वर था विभूति भूषण भट्ट का। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 होने को हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। अब सुनिए गांधी कथा, वाचन स्वर कल्पना पंकज का।

0: गांधी कथा। आज के संक में महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से कुछ अंश और अंत में गांधी जी का एक प्रिय भजन।
1: परिस तूफान ने मुझे यात्रियों के साथ ओतप्रोत कर दिया था। कहा जा सकता है कि मुझे तूफान का डर न था या कम से कम था। लगभग ऐसे ही तूफान का अनुभव मैं पहले कर चुका था। मुझे न सागर लगता था न चक्कर आते थे, इसलिए मैं यात्रियों में निर्भय होकर घूम सकता था, उन्हें हिम्मत बंधा सकता था एवं कप्तान की भविष्यवाणियां उन्हें सुनाता रहता था। यह स्नेहगांठ मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। 18 या 19 दिसंबर को हमने डरबन में लंगर डाला। नादरी भी उसी दिन पहुंचा, परंतु वास्तविक तूफान का अनुभव तो अभी होना शेष था। दोनों स्टीमरों ने 18 दिसंबर के आसपास लंगर डाले। दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाहों में यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाती है। यदि रास्ते में किसी को कोई छूत वाली बीमारी हुई हो तो स्टीमर को सूतक में क्वारंटीन में रखा जाता है। हमारे बंबई छोड़ते समय वहाँ प्लेग का संदेह था, इसलिए हमें इस बात का डर अवश्य था कि सूतक की कुछ बाधा होगी। बंदर में लंगर डालने के बाद स्टीमर को सबसे पहले पीला झंडा फहराना होता है। डॉक्टरी जांच के बाद डॉक्टर के मुक्ति देने पर पीला झंडा उतरता है एवं फिर यात्रियों के संबंधी आदि को स्टीमर पर आने की अनुमति मिलती है। तदनुसार हमारे स्टीमर पर भी पीला झंडा फहरा रहा था। डॉक्टर आए, जांच करके उन्होंने 5 दिन का सूतक घोषित किया, क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि प्लेग के जीवाणु 23 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि बंबई छोड़ने के बाद 23 दिन की अवधि पूरी होने तक स्टीमरों को सूतक में रखा जाए। इस सूतक की आज्ञा हेतु परंतु केवल स्वास्थ्य रक्षा न था, डरबन के गोरे नागरिक हमें उल्टे पैरों लौटा देने का जो आंदोलन कर रहे थे वह भी इस आज्ञा के मूल में एक कारण था। दादा अब्दुल्ला की ओर से हमें शहर में चल रहे इस आंदोलन के समाचार मिलते रहते थे। गोरे लोग एक के बाद एक दूसरे विराट सभाएं कर रहे थे। दादा अब्दुल्ला के नाम धमकियां भेजते थे, उन्हें लालच भी देते थे। अगर दादा अब्दुल्ला दोनों स्टीमरों को वापस ले जाए तो गोरे नुकसान की भरपाई करने को तैयार थे। दादा अब्दुल्ला किसी की धमकी से डरने वाले नहीं थे। इस समय वहाँ सेठ अब्दुल्ला करीम हाजी अदम दुकान पर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े वे स्टीमरों को बंदर पर लाएंगे एवं यात्रियों को उतारेंगे। मेरे नाम उनके विस्तृत पत्र बराबर आते रहते थे। सौभाग्य से इस समय स्वर्गीय मनसुख लाल हीरा लाल नाजर मुझसे मिलने के लिए डरबन आ पहुंचे थे। वे होशियार एवं बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीयों को नेक राय दी। मिस्टर लाटन अधिवक्ता थे, वे भी वैसे ही बहादुर थे। उन्होंने गोरों की करतूतों की निंदा की एवं इस अवसर पर कौम को जो राय दी वह मात्र अधिवक्ता के नाते पैसे लेकर नहीं बल्कि एक सच्चे सखा के नाते दी। इस प्रकार डरबन में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। एक ओर मुट्ठी भर गरीब भारतीय एवं उनके इने गिने अंग्रेज सखा थे, दूसरी ओर धन बल बाहुबल विद्या बल एवं संख्या बल में भरे पूरे अंग्रेज थे। इन बलवान प्रतिपक्षियों को राज्य का बल भी प्राप्त हो गया था, क्योंकि नेटाल की सरकार ने

उलम पुलम की मदद की थी। मिस्टर हैरी एस्कम ने जो मंत्रिमंडल में थे उसके कर्ता धर्ता थे, इन गोरों की सभाओं में प्रकट रूप से हिस्सा लिया। अर्थात हमारा सूतक केवल स्वास्थ्य रक्षा के नियमों के ही कारण न था, उसका हेतु किसी भी तरह एजेंट को या यात्रियों को दबाकर हमें वापस भेजना था। एजेंट को तो धमकी मिल ही रही थी, अब हमारे नाम भी धमकी आने लगी। अगर आप वापस नहीं गए तो आपको सागर में डुबो दिया जाएगा, लौट जाओगे तो लौटने का भाड़ा भी संभवतः आपको मिल जाए। मैं यात्रियों के बीच खूब घूमा फिरा, उन्हें धीरज बंधाया, नागरिक यात्रियों को भी धीरज से कार्य लेने के संदेश भेजे। यात्री शांत रहे एवं उन्होंने हिम्मत का परिचय दिया। स्टीमर पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए खेलों का प्रबंध किया गया था। बड़े दिन का त्यौहार आया, कप्तान ने उस दिन प्रथम श्रेणी के यात्रियों को भोज दिया। यात्रियों में मुख्यतः मैं एवं मेरे परिवार के लोग ही थे। भोजन के बाद भाषण करने की प्रथा तो थी ही, मैंने पश्चिमी सभ्यता पर भाषण दिया। मैं जानता था कि यह अवसर गंभीर भाषण का न होता, पर मैं दूसरा कोई भाषण दे ही नहीं सकता था। मैं आनंद में सम्मिलित हुआ था, पर मेरा हृदय तो डरबन में ही चल रही लड़ाई में ही लगा हुआ था, क्योंकि इस मामले में मध्यबिंदु मैं था। मुझ पर दो आरोप थे। मैंने भारत में नेटालवासी गोरों की अनुचित निंदा की थी। मैं नेटाल को भारतीयों से भर देना चाहता था एवं इसलिए विशेषकर नेटाल में बसाने के लिए भारतीयों को कुरलैंड एवं नादरी में भर लाया था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का विचार था। मेरे कारण दादा बुल्ला भारी घाटे में पड़ गए थे, यात्रियों के प्राण संकट में थे एवं मैंने अपने परिवार को साथ लाकर उसे भी दुख में डाल दिया था। परंतु मैं स्वयं एकदम निर्दोष था। मैंने किसी को नेटाल आने के लिए ललचाया नहीं था। नादरी के यात्रियों को मैं पहचानता भी नहीं था। कुरलैंड में अपने दो तीन संबंधियों को छोड़कर बाकी के सैकड़ों यात्रियों के नाम धाम तक मैं जानता न था। मैंने भारत में अंग्रेजों के विषय में ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा जो मैं नेटाल में कह न चुका था, एवं जो कुछ मैंने कहा था उसके लिए मेरे पास अधिक प्रमाण थे। इसलिए नेटाल के अंग्रेज जिस सभ्यता की उपज थे, जिसके वे प्रतिनिधि एवं हिमायती थे, उस सभ्यता के प्रति मेरे मन में खेद उत्पन्न हुआ। मैं उसका विचार करता रहता था, इसलिए इस छोटी सी सभा के सामने मैंने अपने वे ही विचार रखे एवं श्रोता वर्ग ने उन्हें सहन कर लिया। जिस भाव से मैंने उन्हें रखा, कप्तान आदि ने उसी भाव में उन्हें ग्रहण किया। उन विचारों से उनके जीवन में कोई फेरफार हुआ या नहीं सो मैं नहीं जानता, पर इस भाषण के बाद कप्तान एवं दूसरे अधिकारियों के साथ पश्चिमी सभ्यता के विषय में मेरी बहुत बातें हुई। मैंने पश्चिम की सभ्यता को प्रधानतया हिंसक बतलाया एवं पूर्व की सभ्यता को अहिंसक। प्रश्नकर्ताओं ने मेरे सिद्धांत मुझे पर लागू किए। बहुत करके कप्तान ने ही पूछा, गोरे जैसे धमकी दे रहे हैं उसी के अनुसार वे आपको चोट पहुंचाए तो आप अहिंसा के अपने सिद्धांत पर किस प्रकार अमल करेंगे? मैंने उत्तर दिया, मुझे आशा है कि मुझे क्षमा कर देने की एवं उन पर मुकदमा न चलाने की हिम्मत एवं बुद्धि ईश्वर मुझे देगा। आज भी मुझे उन पर रोष नहीं है, उनके अज्ञान उनके संकुचित नजरिए के लिए मुझे खेद होता है। मैं समझता हूँ कि वे जो कह रहे हैं एवं कर रहे हैं वह उचित है, ऐसा वे शुद्ध भाव से मानते हैं, इसलिए मेरे लिए रोष का कोई कारण नहीं। पूछने वाला हंसा, संभवतः मेरी बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। इस प्रकार हमारे दिन बीतते एवं लंबे होते गए। सूतक समाप्त करने की अवधि अंत तक निश्चित नहीं हुई। इस विभाग के अधिकारी से पूछने पर वह कहता, यह मेरी शक्ति से बाहर की बात है, सरकार मुझे आदेश दे तो मैं आप लोगों को उतरने की अनुमति दे दूं। अंत में यात्रियों को और मुझे अल्टीमेटम मिले। दोनों को धमकी दी गई कि आपके प्राण खतरे में हैं। दोनों ने नेटाल के बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार के विषयों में लिखा एवं अपना यह निश्चय घोषित किया कि कैसा भी संकट क्यों न हो, हम अपने इस अधिकार पर डटे रहेंगे। अंततः 23वें दिन अर्थात 13 जनवरी 1897 के दिन स्टीमरों को मुक्ति मिली एवं यात्रियों को उतरने का ऑर्डर दिया गया।

गांधी जी के इस प्रिय भजन के साथ ही गांधी कथा का आज का अंक यहीं पर संपन्न हुआ। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान,
1: एपिसोड नंबर 368। 36

सुंदर उपवन में रमण करते हुए भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ने श्री राम के सम्मुख सिर नवाया। भरत श्री राम से कुछ जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं, किंतु उन्हें संकोच हो रहा है। हनुमान उनके संकोच की बात बताकर उसे दूर कर देते हैं। भरत के मन में संत और असंत के लक्षण सुनने की जिज्ञासा है। श्री राम उनकी शंका का समाधान करते हैं। संतों और असंतों की करनी चंदन और कुल्हाड़ी के आचरण जैसी होती है। कुल्हाड़ी का काम है वृक्ष को काटना, किंतु चंदन उसके प्रहार सहकर भी उसे अपनी सुगंध देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर सुशोभित होता है, जबकि कुल्हाड़ी को आग में तपाकर घन से पीटा जाता है। संत विषय वासना में लिप्त नहीं होते। उन्हें दूसरों को दुखी देखकर दुख और सुखी देखकर सुख प्राप्त होता है। कोई उनका शत्रु नहीं होता। वे काम, क्रोध, लोभ और मोह रहित होते हैं। उनका चित्त अत्यंत कोमल होता है। वे सबको आदर और सम्मान देते हैं और स्वयं मान अपमान रहित होते हैं। इसीलिए वे मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं।

मुस्कान FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सूर्यपाल के गाए गढ़वाली लोकगीत, जिसमें ढोलक पर सुरेंद्र बेसवाल, हुड़का पर विजेंद्र, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर आयुष सेमवाल संगत करेंगे। आज दोपहर 12:30 पर महिला जगत के कार्यक्रम में सुनिएगा सावित्री शर्मा की कहानी सपनों से आगे।

शाम 7 बजे किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज आप सुनेंगे सहकारिता से ग्रामीण विकास विषय पर श्री कृष्णानंद डिमरी से वीना शर्मा की बातचीत। रात 8 बजे सुनिएगा कथा सागर के अंतर्गत डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र से कहानी। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा सुबह 8:30 का, और आज सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। सुबह 10:35 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा गुड्डू राणा के गाए जौन सारी लोकगीत। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा पंडित ब्रज नारायण का सरोदवादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग मुल्तानी। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। शाम 5:45 का समय रहेगा पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं के खास कार्यक्रम ग्राम जगत का। रात 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आज सुनिएगा पंडित उल्लास कलाशकर का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग काफी कानड़ा।

0: आज रात 10 बजे आप सुनेंगे आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 9 बजे सदाबहार फिल्मी गीतों के अंतर्गत, आज सुबह 11 बजे व्हाट्सएप फरमाइश में, दोपहर 1:15 पर, दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए में, दोपहर 3:02 पर कार्यक्रम गाने नए तराने में, शाम 7:40 पर और रात 8:30 पर। और आपको एक बार पुनः बता दें कि दोपहर 12:30 पर महिला जगत के कार्यक्रम में सुनिएगा सावित्री शर्मा की कहानी सपनों से आगे, और शाम 7 बजे आप सुनेंगे सहकारिता से ग्रामीण विकास विषय पर श्री कृष्णानंद डिमरी से वीना शर्मा की बातचीत। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले संस्कृत में होंगे, फिर हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings have been held and tight security arrangements have been put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state talks have been held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the Legislative Party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the Governor Vishwanath Arlekar had demanded from them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the Chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information on a social media post, he said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has said government food grain stocks have reached over 604 lakh tons in the country, which is nearly three times higher than the mandatory buffer requirement. In a social media post, the minister said robust wheat and rice reserves are ensuring an uninterrupted supply for welfare schemes and the public distribution system across the country. Mr. Joshi said strong procurement, successful harvest and sustained support for farmers continue to reinforce India's commitment towards food security, farmer welfare and a resilient future. He highlighted that India's food security framework continues to grow stronger under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Russia has announced a ceasefire in its ongoing war with Ukraine beginning today till May 10th during celebrations marking the 81st anniversary of the Soviet victory in World War II. The announcement was made by the Russian Defense Ministry following a decision by President Vladimir Putin. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said at a summit in Yerevan that Russia might avoid displaying military equipment during its May 9th Victory Day parade because of fears of possible drone attacks over Moscow's Red Square. In response, Russian officials warned that any Ukrainian attack on Moscow during the parade could trigger a large missile strike on central Kyiv. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova also criticized Western countries over their stance on May 9 celebrations and accused them of distorting Soviet history. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using the DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell March scored dazzling 111 of 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 of 31 for Bengaluru. Mitchell March was adjudged player of the match. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today and tomorrow. The Met Department said the thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are very likely to prevail over Uttar Pradesh, East Rajasthan, Coastal Karnataka and Rayalaseema today. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। शीर्षक गीतों के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मी भजन। कार्यक्रम का पहला भजन फिल्म बेटी बेटे से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आजाद से ये भजन अभी आपने सुना।
1: सुनने में आया कि
2: आज की खबर देख
3: पहले ही बोला था ब्रो।
4: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
4: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो।
7: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्मी भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले की आवाज़ में सुनिए अगला भजन फिल्म घराना से।
2: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है

0: अभी आप सुन रहे थे शीर्षक गीत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हुई। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। और हरिद्वार जिले में संचालित 23 मदरसों में PM पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने स्वीकृत धनराशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनहित के कार्यों में तेजी लाई जा सके। स्वीकृत योजनाओं में विभिन्न जिलों में भवन निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार, पुलिस और होमगार्ड विभाग के कार्यों के साथ ही शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा RTE अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए भी धनराशि जारी की गई है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तीर्थ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। चारधाम यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। वहीं अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं और लगभग 9 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पंजीकरण और GMVN गेस्ट हाउसों की लगातार बढ़ रही बुकिंग को देखते हुए यात्रा में इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने यात्रियों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य जांच कराने, मौसम को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े और रेनकोट साथ रखने तथा यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की है। उधर केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा देर रात केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग, मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
1: जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। श्रद्धालुओं ने दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष जताया। जिलाधिकारी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, दर्शन लाइन, विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा अवधि के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: चंपावत के कथित नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस जांच में साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार बदले की भावना से एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था। मामले में मिली शिकायत के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर SIT गठित की गई। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, काउंसलिंग और न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच में पाया कि नामजद तीनों व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। वहीं मेडिकल परीक्षण में भी जबरदस्ती या संघर्ष के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस के अनुसार जांच में कुछ लोगों के बीच लगातार संपर्क के तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश माना जा रहा है। मामले में डिजिटल और फॉरेंसिक जाँच अभी जारी है। चंपावत के कथित नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में एसआईटी जांच के बाद सामने आए तथ्यों पर उत्तराखंड राज्य महिला

0: आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रंजिश के चलते एक नाबालिग को बहला फुसलाकर पूरे घटनाक्रम में शामिल करना गंभीर मामला है और ये समाज तथा कानून दोनों के खिलाफ अपराध है। अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करता है, लेकिन कानून के दुरुपयोग को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
1: पता चला जैसे ही पूरी जांच और पड़ताल के बाद मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चला कि उस बेटी के साथ कुछ भी नहीं, ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। ये किसी व्यक्ति की पूरी तरह से साजिश रची गई थी और उस साजिश के तहत उस बेटी को मोहरा बनाया गया। तो निश्चित ही महिला आयोग ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कठोर कारावास होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। इस
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
3: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है।
0: हरिद्वार जिले में संचालित मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में 23 मदरसों में मिड डे मील व्यवस्था और छात्र उपस्थिति से जुड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं, जबकि छात्र संख्या में अनियमितता मिलने पर 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना का संचालन बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इन मदरसों के मार्च और अप्रैल माह के भुगतान पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी मदरसों की विस्तृत जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ मदरसों में उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के बच्चों का दाखिला कराया गया है। प्रशासन अब इन बच्चों के सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी जुटा रहा है। और अब एक नजर समाचार पत्र की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने पर अमर उजाला सेना के हवाले से लिखता है, आतंकियों की कोई पनाहगाह सुरक्षित नहीं। नवोदय टाइम्स की खबर है, LOC पर कोई आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों व मत्स्य पालकों के साथ किए संवाद को सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, पशुपालकों को धामी का मंत्र, पहाड़ का दूध बनेगा ग्लोबल ब्रांड। इसी पर नवोदय टाइम्स मुख्यमंत्री धामी के हवाले से लिखता है, पशुपालकों की आय बढ़ाने को सरकार संकल्पबद्ध। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हुई। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। और हरिद्वार जिले में संचालित 23 मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल संगीत। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए सूर्यपाल के गाए कड़वाली लोकगीत। ढोलक पर सुरेंद्र बेसवाल, हुड़का पर विजेंद्र, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर आयुष सेमवाल साथ दे रहे हैं।
5: जय भगवती जगदवंदनी राज राजेश्वरी माता धारिकी कालिंगा डाट काली डिहाट काली जय काली कल

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो,
1: बी द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड टेक
1: सुनने में आएगी,
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो।
2: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन,
2: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो।
5: अब अच्छा लग रहा है ना, लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं सूर्यपाल के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सूर्यपाल के गाए गढ़वाली लोकगीत। ढोलक पर सुरेंद्र बेसवाल, हुड़का पर विजेंद्र, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर आयुष सेमवाल साथ दे रहे थे। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 8 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर VCK, CPI और CPIM के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की।

0: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: India and Vietnam offer something important.
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी

0: के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश पूर्वी राजस्थान तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the Pochishe Boishak, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Center in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edapati Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
4: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on the governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
5: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
2: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumarasinghe, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agriculture.

नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं वंदना आप सभी के साथ, और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं इस बेहतरीन गीत के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, अब सुनिए सुर्खियां समाचार पत्रों से। एशिया के सबसे बड़े पीएसपी हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से आएंगे उत्तराखंड और करेंगे टिहरी बांध की पंप स्टोरेज प्लांट यानी पीएसपी परियोजना की चौथी यूनिट का औपचारिक लोकार्पण। इस लोकार्पण के साथ ही यह परियोजना एशिया की सबसे बड़ी पीएसपी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। टिहरी झील क्षेत्र को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने सचिवालय में इस संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसे लेकर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचने पर जोर, मानसून से पहले गुणवत्ता जांच पूरी करने के निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं की धीमी प्रगति और गुणवत्ता जांच पर लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित योजनाओं को का कार्य शीघ्र पूरा कर हर घर जल सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है और चार धाम को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। यात्रा मार्गों पर स्थित GSVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से भी अधिक हुई। ये थी जानकारी कुछ समाचार सुर्खियों की। अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं नमस्कार देहरादून का ये कार्यक्रम FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और अब एक नज़र डालते हैं इतिहास के पन्नों पे। श्रोताओं, आज है 8 मई। साल के 5वें महीने का ये 8वां दिन इतिहास के पन्नों में रखता है कुछ खास जगह। आज के दिन 1828 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूना का जन्म हुआ। इसे रेड क्रिसेंट के रूप में भी जाना जाता है। 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुए सैली फेरसो युद्ध में हेनरी डूना ने जब युद्ध का दौरा किया तो भयानक रक्तपात को देखकर विचलित हुए, जिसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसी भी युद्ध और कठिनाई में मानव जीवन की रक्षा करना है। आज ही के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जिसकी स्थापना और पहला आयोजन 1994 में हुआ था, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक रक्त विकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मरीजों को सहायता प्रदान करना है। और श्रोताओं, आज ही के दिन 1828 में 8 मई 1999 को महान क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर शहीद हुए। इन्होंने मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ये थी जानकारी इतिहास के पन्नों से। अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड है
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर है
4: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: 5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार देहरादून का। श्रोताओं, आज है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जिस पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिलजीत सिंह।
1: थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है जो कि लाल रक्त कोशिका के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से खून बनने कम लगता है और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है। ये रोग अनुवांशिक रोग है, मतलब जेनेटिक है, जो माता पिता से बच्चे में जाता है। दो प्रकार में ये विभाजित है, एक होता है थैलेसीमिया माइनर जिसको थैलेसीमिया ट्रेट भी कहा जाता है, और दूसरा होता है थैलेसीमिया मेजर। जो थैलेसीमिया माइनर होता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, सिवाय हल्का सा ब्लड की या खून की या हीमोग्लोबिन कह लें उसकी कमी रहती है। ये लोग नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। मेन चैलेंज होता है थैलेसीमिया मेजर में, जिसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा होने लगती है। ऐसे बच्चों को नियमित रूप से खून चढ़ाना पड़ता है, खून चढ़ाने की वजह से आयरन लोड बढ़ जाता है शरीर में, उसकी दवाइयाँ चलती हैं जिससे कि शरीर से आयरन बाहर निकले। इससे बचा कैसे जा सके कि जैसे हमारे देश में शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है कि वो आगे आने वाला जीवन उनका सुखी रहे, इसके साथ साथ अगर हम उनका हीमोग्लोबिन A2 लेवल भी अगर चेक करें और वो दोनों में अगर थैलेसीमिया ट्रेट या हीमोग्लोबिन A2 लेवल की कमी पाई जाए तो ये पहले से ही अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले उनके बच्चों में हर प्रेगनेंसी 25% के चांस रहेगा कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा रहेगा। दूसरी चीज, अगर कोई थैलेसीमिया मेजर वाला है तो आज उसका इलाज संभव है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के। हमारे भारत देश में बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें यह इलाज मुफ्त में उपलब्ध है। मेन चीज यह है कि ऐसे बच्चों में, ऐसे लोगों में बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। आम जनता से सबसे अनुरोध रहेगा कि वो बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा ले, अपना ब्लड डोनेट करें।
0: थैलेसीमिया पर अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिलजीत सिंह। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, जो कि आशा भोसले की आवाज़ में है। फिल्म है मेरे सनम।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम को संपन्न करने का समय हो गया है। इस कार्यक्रम के लिए आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, जिसके लिए पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। साथ ही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 7088000731। इसी के साथ ही नमस्कार देहरादून का ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 9 बज गए हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। पहला गीत आरजू फिल्म से है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

कार्यक्रम का अगला गीत है हजरत जयपुरी और शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन के संगीत के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म लव इन टोक्यो से।

आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोता, मौसम के बदलते मिजाज की तरह जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं बनता और मौसम में बदलाव ही दुनिया और खुद को फिर से जीवंत करने के लिए काफ़ी है ना। ठंडे या तूफानी मौसम की तरह कठिन समय भी आता और जाता रहता है, बस मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। महेंद्र कपूर की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म मेरे हमसफर से।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में
2: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज में

कार्यक्रम का अगला गीत 1968 में आई फिल्म कहीं दिन कहीं रात से है। ओपी नैयर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया ये खूबसूरत युगल गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में है। इस गज़लनुमा गीत को SH बिहारी ने लिखा है, जो प्यार में समर्पण और अधिकार की भावना को दर्शाता है।

आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और सुबह के 9:26 स्टूडियो क्लॉक में पेशा कार्यक्रम का यह अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म है मेरे जीवन साथी।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुभव। इस कार्यक्रम में आज बात होगी डॉक्टर हिमांशु अरियन से, संकल्प मिश्रा के।

0: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम अनुभव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम अपने मेहमानों के निजी जीवन के अनुभव, उनके कार्यक्षेत्र के अनुभव से सीख लेते हैं, उन अनुभवों के बारे में जानते हैं कि उनकी जिंदगी का जो सार है, उसकी सीख का जो निचोड़ है, वो आप तक पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु एरन, जो कि कुलपति हैं राजबिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून के। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हिमांशु।
1: धन्यवाद संकल्प जी।
0: डॉक्टर हिमांशु, कैसा था बचपन, पढ़ाई लिखाई कैसी थी, कुछ अपनी बचपन के बारे में बताइए
1: जी। मैं

0: बेसिकली उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर में एक जगह है हल्दौर, वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन उसी टाउन में बीता है। और मैंने अपनी जो क्लास 10 तक की एजुकेशन है वो वहाँ चंद्रमणि देवनागरी इंटर कॉलेज से प्राप्त की है। और मेरा बचपन अच्छा बीता, मेरे माता पिता की मुझे अच्छी शिक्षाएं मिली। मेरे पिताजी डॉक्टर क्षेमेंद्र गुप्ता जी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे और हमारा जैसे कि एक छोटे ग्रामीण माहौल में विकास हो सकता है उस हिसाब से हुआ। और हमने अपनी बेसिक एजुकेशन वहाँ अपने प्राइमरी टीचर्स के माध्यम से, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आपका वेश है, जो आपका आधार है, वो आपके बचपन पर बहुत कुछ निर्धारित करता है। और जो पहला गुरु होता है वो माँ होती है, और मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे संकल्प दिए। इसके रहते रहते मैंने वहाँ से 10th पास किया। और उसके बाद क्योंकि मैं बायोलॉजी का छात्र था, मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। मेरे पिता श्री डॉक्टर हैं, तो मैंने देखा था कि वो किस तरह से मरीजों की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता था कि मैं एक डॉक्टर बनकर एक समाज सेवा का कार्य कर सकूं। तो इसलिए बायो वहाँ नहीं होती थी, तो उसके लिए मैं फिर अपनी ननिहाल में हापुड़ में रह के मैंने 10th+2 किया। और फिर मैं BSc करने के लिए दोबारा बर्धमान कॉलेज बिजनौर में आया। और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहता था, तो हमारे ज़माने में कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसके माध्यम से मेरा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उस ज़माने में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिशन हुआ। और वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एंड मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की शिक्षा प्राप्त की।
1: आपने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, आज के समय में विश्वविद्यालय है, से डेंटल साइंस की डिग्री ली, और निश्चित ही हल्द्वार जैसी जगह जो कि उस समय थोड़ी छोटी जगह रही होगी, आप वहां से निकल करके एक प्रतिष्ठित कॉलेज में आए। थोड़ा बताइए कि दोस्त कैसे थे आपके, घर में आपकी शरारतें होती थी, चूंकि आप खुद मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, क्या आपको पढ़ाई के लिए कहा जाता था या आप घर के माहौल से प्रेरणा लेकर के खुद से पढ़ करके इस एग्जाम को आपने निकाला?
0: देखिए, हमारे ज़माने में माँ बाप का फोकस तो रहता था कि बच्चा पढ़े, तो उनकी तरफ से तो हमें हमेशा गाइडेंस मिलती थी कि बेटे खेलना कूदना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि मेरे दोस्त कैसे थे, मेरे दोस्त सब पढ़ने लिखने वाले ही थे और हमारे परिवार के ही थे। हमारा एलन परिवार वहाँ का एक प्रतिष्ठित परिवार है, तो उस तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं थी। और जो हमारे आड़ोस पड़ोस का माहौल था वो भी सब पढ़ाई लिखाई वाला था। इसका मतलब ये नहीं कि हम किताबी कीड़े थे, हम किताबी कीड़े नहीं थे, क्योंकि हमें शुरू से दिखा सिखाया गया कि ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है। तो हम विभिन्न स्तरों की खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते थे। और जैसे आपने कहा कि वो एक छोटी जगह थी, तो मेरा मानना यह है कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आप किस जगह पल बस रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका अपना फोकस क्लियर होना चाहिए। और मैं आज के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें शुरू से ही अपना फोकस क्लियर रखना है और सब कुछ करना है लाइफ में, लेकिन जो आपका एक टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपको सदा प्रयासरत रहना है। और वही हमने बचपन से किया, और हमें एक छोटे से परिवेश में पैदा होकर और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जैसे मुकाम तक पहुँचे, तो उसमें हमारे माँ बाप का लगातार गाइडेंस और हमारे जो बचपन के गुरु थे, क्योंकि मैं मानता हूँ जो हमारा पहला गुरु है, जिसने हमें, जैसे मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो जिसने मुझे सबसे पहले सेल के बारे में बताया, कोशिका के बारे में बताया, उसने मेरा बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग किया, तभी मैं एक डॉक्टर बन पाया।
1: डॉक्टर हिमांशु, बचपन की ऐसी बहुत सी सीख होती हैं, वो एक गुरु की सीख होती है, माँ बाप की सीख होती है, कई बार हम अपने आसपास के परिवेश से, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। बहुत सी सीख हम समय के साथ भूलते चले जाते हैं और कुछ सीख जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। कौन सी सीख हैं बचपन की जो आज भी आपके साथ हैं और हमेशा कोई भी फैसला लेने से पहले आप ज़रूर एक बार याद आती है उसकी?
0: देखिए, मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और मैं आज एक विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, लेकिन आज भी जब मैं कहीं टेक्निकली किसी चीज़ में फंस रहा होता हूँ तो मैं अपनी मम्मी से, अपने माताजी से ज़रूर राय करता हूँ, और जो उनकी राय होती है वो अल्टीमेट होती है। तो यही बचपन से मैं फॉलो करता आया हूँ। और जैसे आपने कहा कि गुरुओं का बहुत रोल होता है, तो मैं मानता हूँ कि जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो मैंने एजुकेशन प्राप्त की, तो जो उसमें हमारे दंत विज्ञान के गुरु रहे, मेरे मेंटर रहे प्रोफेसर NK अग्रवाल, उन्होंने जो कुछ भी मुझे डेंटिस्ट्री के अंदर सिखाया उससे मैंने भरपूर नाम कमाया, भरपूर पैसा कमाया। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मैंने शिक्षा अपने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्राप्त की वो मुझे एक परिपूर्ण डॉक्टर बनाने के साथ

0: साथ एक स्वस्थ भारतीय भी बनाया और उसको मैंने पूरी तरह से फॉलो किया, कैच किया। तो जो गुरु सिखाता है, चाहे वो आपका प्राथमिक स्तर का गुरु है या वो आपका व्यावसायिक क्षेत्र का गुरु है, उसको अगर आप गुरु मानते हैं तो वो आपको जरूर आशीर्वाद के रूप में आपको सफलता मिलेगी। आजकल की तारीख में हम देखते हैं कि नेट है, गूगल है, तो बच्चे सोचते हैं कि गुरु का उतना महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि आपको गूगल से, नेट से किताबी ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन जो आपके गुरु ने अपने 30-35 साल लगा के अपने प्रोफेशन में जो उसने एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो आपको गुरु ही दे सकता है। तो इसलिए गुरु का महत्व कभी भी कम नहीं होगा। अगर मैं एक और गुरु की बात करूं, तो मैं आज भारतीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं, डॉक्टर अतुल कृष्णा, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव गुरु हैं, उनके साथ मैं 98 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले भारतीय विश्वविद्यालय मेरठ में भी काम कर सका हूँ। तो जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी एक कार्य प्रणाली है, वो भी बहुत सिस्टमेटिक है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। दूसरा, जो हमारी भारती की कल्चर है, वो राष्ट्रवादी कल्चर है। हम शिक्षा, सेवा, संस्कार, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो जो हमारे माननीय संस्थापक जी हैं, डॉक्टर अतुल जी हैं, उनका ये सपना है कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। तो जब भी हम कहीं करेक्टर निर्माण की बात करें, चरित्र निर्माण की बात करें, तो हम राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। तो यही मेरा आजकल के विद्यार्थियों से भी अनुरोध है कि जो भी आप सीख रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में माँ बाप को मत भूलिए, अपने गुरुओं को मत भूलिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और गुरुओं के मार्गदर्शन से ही हासिल किया है, और वही सफलता की अंतिम कुंजी है।
1: निश्चित ही गुरुओं के मार्गदर्शन में बहुत सी ऊंचाइयां हासिल की गई हैं समाज में, और माँ बाप का जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में जो योगदान है वो तो सर्वोपरि है। आप जब कॉलेज में आने के बाद निश्चित ही युवावस्था में पढ़ाई के साथ साथ बाकी तरह के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। पढ़ाई के इतर आपके क्या कॉलेज में शौक रहे जो आज भी आपको समय मिलता है, खाली समय में आप उन्हें ज़रूर पूरा करते हैं?
0: मैंने बताया, शौक कई तरह के हो सकते हैं, वो खेल के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो अध्ययन के क्षेत्र में हो सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल हॉबीज़ की बात करूं, तो मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, नए नए स्थानों को में जाना बहुत पसंद है, सीनिक ब्यूटीज, नेचुरल के बीच में रहना मुझे बहुत पसंद है। वाटर इज़ माई लविंग साइन। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में क्या किया, तो मेरे अंदर हमेशा से ही एक सामुदायिक सेवा के लिए, एक समाज के लिए कुछ करने की चाह थी। तो उसके तहत मैं अपने, जो हमारा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन था, उसका पूरे उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा, और मैंने हमेशा जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके राइट के लिए लड़ा। तो मेरे अंदर एक भावना है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। और अब जब मैं एक खुद देने वाली पोजीशन में आ गया हूँ, मैं जब कुलपति हूँ किसी विश्वविद्यालय का, तो मेरा आज भी ये प्रयास रहता है कि बच्चों को जो है, जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं, जो बेस्ट पॉसिबल सुविधा हैं, वो उपलब्ध कराई जा सके। और मेरा मानना ये भी है कि एक जनरेशन गैप नाम की चीज़ होती है, वो हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें उसके अनुरूप अपने आप को डालना है। हमें ये नहीं देखना है कि हम आज से 30 साल पहले हमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, सुविधाएं मुहैया नहीं थी, तो हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को भी ना उपलब्ध हो। तो हमें उनको जो भी आज की तारीख में बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो हमें अब उन सब सुविधाओं को उनको प्रोवाइड कराना है, उनको मुहैया कराना है। क्योंकि जब मैं डेंटल एजुकेशन कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, लेकिन मैंने उनको खुद कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन कोर्स करके, शॉर्ट कोर्स करके शिक्षा ग्रहण की। तो यही सब हमें बच्चों को भी, अपने बच्चों में, छात्रों को भी प्रोवाइड कराना है।
1: निश्चित ही जनरेशन गैप समाज की एक सच्चाई है, लेकिन बहुत से हमारे अनुभवी लोग इस बात को समझते हैं कि गैप को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे एक विकास को सम्मिलित विकास के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी से एक सवाल आता है कि जब आप अपनी मेडिकल एजुकेशन ले रहे थे और आज के समय में जो मेडिकल एजुकेशन है, जहाँ इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत से तौर तरीके आ गए हैं सीखने के लिए, आपके समय में मेडिकल एजुकेशन कितना चैलेंजिंग था और किन किन चीज़ों को अब आज की तकनीक ने आसान बना दिया है?
0: देखिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, क्योंकि जब हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डेंटल साइंस हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मेसी हो, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, कोई सी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, तो जो पहला सबसे मूलभूत

0: तत्व है वो है मानवीयता। आपके अंदर अगर मानवीय अप्रोच नहीं है तो आप एक कुशल चिकित्सक नहीं बन सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि आपने 35 साल का मेरा करीब करीब एक्सपीरियंस है, और मेरे कितने ही रोगी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे बात करके आधी तकलीफ दूर हो जाती है और आधी तकलीफ आपका हाथ लगाने से चली जाती है। तो ये पहला जो पहलू है मानवीकरण का पहलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक डॉक्टर के अंदर, हर एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री रिलेटेड, चाहे वो नर्स है चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके अंदर होना चाहिए। जहाँ तक तकनीक की बात है, मेडिकल साइंस क्या साइंस आज तक हमेशा डेवलपिंग ही रही है, और जो हमारे ज़माने में एजुकेशन थी वो आज और एडवांस हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन का वर्ड आ चुका है, तो इन सब चीज़ों का समावेश हमारे चिकित्सा शास्त्र में भी हो चुका है। और हमारे ज़माने में इतनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं थी, इतने ज़्यादा स्कैंस नहीं थे, इतने ज़्यादा पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं थे, या थे भी तो वो बहुत प्रारंभिक अवस्था में थे। आज की तारीख में ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। MRI आ गया है, CT स्कैन आ गया है, PET स्कैन आ गया है। तो इस सब के चलते चलते आज की तारीख में डायग्नोसिस करना काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, उसका रोल हमेशा रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि जो भी आपको डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट आ रही है उसको आपको क्लिनिकली कोरिलेट करना है, तभी आप पेशेंट को एक सही डायग्नोसिस दे पाएंगे और सही डायग्नोसिस के बेस पे आप उसका उपचार कर पाएंगे। तो एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर की भूमिका है, जो पर्सन की भूमिका है, वो कभी कम नहीं हो सकती।
1: डॉक्टर हिमांशु, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है उस पड़ाव का जहां हम अपने मेहमान के एक पसंदीदा गीत को सुनवाते हैं, साथ ही हमारे श्रोता भी उस गीत को सुनते हैं। आपकी पसंद का कोई एक गीत हम सुनवाना चाहेंगे आपके साथ अपने श्रोताओं को।
0: मैंने ऐसा आपको बताया कि मेरी जीवन में मेरी माता श्री का बहुत रोल है, और मैं मेरठ में प्रैक्टिस करता था, और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड में श्री माँ गंगा की वजह से आया, और हमारी जो भारत माँ है वो भी हमारी सर्वप्रथम माता है। तो मैं सारी माताओं को डेडिकेट करते हुए, ए माँ तुझे सलाम।
1: जरूर इस गीत को हम आपको सुनवाएंगे।

0: इस गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हिमांशु। हम गीत से पहले बात कर रहे थे, क्या अप्रोच होता है, क्या बदलाव आया है मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई में। आप चूंकि खुद एक प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन रह चुके हैं, उसके बाद आप एकेडमिक्स में आए, थोड़ा बताएं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर की लाइफ कितनी अलग होती है एक एकेडमिशियन से, कौन सी लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, किस लिहाज में, अपने अनुभवों के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस और एकेडमिक्स दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल ही किए हैं। आज मैं 35 साल का एकेडमिक और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने हूँ। तो जो दोनों ही अपने आप में एक डिफरेंट काइंड का रोल है। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें जब डॉक्टर पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो जब वो मेरी डेंटल चेयर में लेट रहा है, तो मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। वो नहीं जानता कि मैंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, मैंने KGMC में पढ़ा या मैंने सुभारती में पढ़ा या मैंने कानपुर में पढ़ा। उसको वो मेरे पास एक विश्वास के साथ आया है और उसको मुझे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना है और एथिकल ट्रीटमेंट देना। एथिकल मींस जो कि हमारी मेडिकल एथिक्स के अनुसार हो, और जो मैंने जो भी कुछ ज्ञान मैंने प्राप्त किया, जो भी मैंने अपनी क्लिनिकल स्किल जब डेवलप की, वो मुझे उसको बेस्ट पॉसिबल वे में प्रदान करनी है, क्योंकि वो मेरे पास एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ आया है। तो ये तो क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक बेस है, हर चाहे कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो डेंटल सर्जरी हो, सर्जरी हो, मेडिसिन हो। तो डॉक्टर का फेथ के साथ आया है मरीज, तो वो फेथ बरकरार रखना है। लेकिन अगर हम एकेडमिक की बात करें, तो एकेडमिक में मैंने आपको बताया कि मेरा शुरू से रुझान था कि मैं समाज की सेवा करना चाहता

0: आपका क्या अनुभव है, कितना ज़रूरी है एक डॉक्टर का एथिकल होना, और आज के समय में इस बात में बड़ी चर्चा भी होती है। आपके लंबे अनुभव के बाद एक डॉक्टर का पहले एक इंसान होना कितना ज़रूरी है?
1: ये तो मैंने आपसे शुरुआत नहीं कहा कि डॉक्टर बनने से पहले आपको इंसानियत, मानवता का पहला सूत्र है, उसके बिना आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते, उसके बिना आप एक सफल चिकित्सक हो ही नहीं सकते। जहाँ तक आपने बात की पेशेंट्स के टेक केयर करने की, मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भी काम करता हूँ, जिसका कि नेशनल बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर है। उनका पर्पज है कि मरीज को, समाज को एक बेहतर क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। तो उसके अंदर पेशेंट्स बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर मैं आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके रिसेप्शन पे लिखा होना चाहिए कि मरीज के क्या क्या राइट्स हैं, मरीज की क्या क्या ड्यूटी हैं। तो मरीज के बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे मरीज को राइट है कि वो अपने डायग्नोसिस के बारे में जान सके। अगर वो आपके ट्रीटमेंट से, आपके डायग्नोसिस से सहमत नहीं है, तो उसको राइट है कि वो किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट कर सके, और उसके लिए जो आप जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किए हैं वो उसको उसको लेने का अधिकार है। जो पेशेंट की कोई ऐसी बीमारी है जो कि उसको समाज में नहीं वो बताना चाहता, तो एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो उसको किसी के साथ शेयर ना करे। तो ये सब एथिकल इश्यूज हैं। एथिकल इश्यूज ये भी हैं कि अगर पेशेंट को कम इलाज की जरूरत है तो उतना ही इलाज दिया जाए, उसे अननेसेसरी इलाज ना दिया जाए। जैसा कि आजकल के समय में हम सुनते रहते हैं कि अस्पतालों के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर ऐसे आक्षेप लगते रहते हैं कि उन्होंने सिर्फ पैसा बनाने के लिए मरीज का इलाज किया या मरीज का इलाज करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब एथिकल ट्रीटमेंट में आता है, और जो जरूरी टेस्ट है वही कराए जाएं, ये सब एथिकल ट्रीटमेंट में आता है। और अगर पेशेंट टर्मिनल स्टेज में पहुंच गया है तो उसको कैसे कन्वे किया जाए उसके रिश्तेदारों को, ये भी सब एथिकल ट्रीटमेंट में आता है। तो इन सब एथिक्स को हमें फॉलो करना चाहिए, और ज़्यादातर अच्छे चिकित्सक जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ डॉक्टर के कर्तव्य हैं, मरीज के भी कुछ कर्तव्य हैं। मैंने बताया ना कि वहाँ मरीज की ड्यूटीज एंड मरीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मरीज के राइट दोनों डिस्प्ले होते हैं। तो मरीज की भी ये ड्यूटी है कि अगर डॉक्टर उसको कुछ सलाह दे रहा है तो उसके भले के लिए ही दे रहा है। जैसे कि अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको धूम्रपान नहीं करना है, तो आप डॉक्टर आपको कोई भी चीज़ एडवाइस कर रहा है तो आपके भले के लिए कर रहा है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहा है। आपको वो कोई टेस्ट बता रहा है तो उसको वो टेस्ट कराने हैं, आपको जो वो डोजेज बता रहा है उसको फॉलो करना है। ये सब मरीज के और डॉक्टर के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है।
0: डॉक्टर हिमांशु, आप एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं इस समय, और आपका एक लंबा अनुभव रहा है एकेडमिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी। जब एक विश्वविद्यालय चलाना होता है तो कैसे चैलेंजिंग फैसलों को लेना पड़ता है, कड़े फैसले कैसे लेते हैं, जब चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं तब आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं?
1: देखिए, आपको मैंने बताया कि मैं बेसिकली एक डेंटल सर्जन हूँ, लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे एकेडमिक्स में आना है, एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, तो मैंने अपने आप को और स्ट्रांग करने के लिए मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, जिससे कि मुझे अपनी तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अनुशासनात्मक ज्ञान या एडमिनिस्ट्रेटिव ज्ञान भी प्राप्त हो सके। जहाँ तक चैलेंजिंग सिचुएशन की बात है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, चाहे वो वाइस चांसलर है, चाहे वो किसी कॉलेज का डायरेक्टर है या कोई प्रिंसिपल है, उसको अपने आप को उस बच्चे के स्थान पर रखकर देखना है कि अगर वो उस स्टेज पे था तो वो क्या बिहेव करता था। क्योंकि हम सभी कभी ना कभी तो छात्र रहे हैं, जिसको हम छात्रों की उद्दंडता कहते हैं वो हमने भी कभी ना कभी तो की ही है। तो हमें इस बात को उनके परिप्रेक्ष्य पर रख के सोचना है। और लेकिन ऑन द अदर हैंड, वाइस चांसलर होने के नाते, कुलपति होने के नाते, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में अनुशासन भी बना के रखना है, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का डेकोरम भी मेंटेन करना है। तो यही बैलेंस है जो आपको पोस्ट के साथ रहते हुए करना है। आपको बच्चों को संस्कार देने हैं, तो बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाएंगे, पहले आपको खुद उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं राष्ट्रीयता की बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करते, हम जय हिंद करते हैं। तो अगर हम जय हिंद करते हैं तो हमें एक भारतीयता की, एकजुट होने की फीलिंग होती है। तो इस तरह से हमें कुछ भी करना है तो उससे पहले बच्चों को करके दिखाना है। यही मेरा मूलभूत सिद्धांत है, इसी को मैं फॉलो करता रहा हूँ।
0: डॉक्टर हिमांशु, और अंत में इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले एक आखिरी सवाल लेंगे, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के साथ जो आपकी कार्यक्षेत्र का जीवन रहा है उसका निचोड़ आप हमारे श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे? क्या वो सीख है जो आपके साथ हमेशा रही है और हमारे श्रोताओं को भी वो जाननी चाहिए?
1: देखिए, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है। पहला तो सिद्धांत यह है कि अगर हम आजकल की जनरेशन, जेन जी जनरेशन की बात करें, तो वो एक रात में करोड़पति बन जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर

0: मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो 35 साल के कठिन संघर्ष के बाद पहुंचा हूं। तो पहला तो मैं यही टेक होम मैसेज देना चाहता हूं यंगर जनरेशन को कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको डेडिकेट होके काम करना पड़ेगा, आपको डिवोशन के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप अभी अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन ही सब कुछ है। अगर आप एक नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप एक मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, तो अभी इन 4-5 साल में जो भी आप सीखेंगे वही आपके लाइफ लॉन्ग का आने वाला है। इसके लिए मैं एक शेयर कहना चाहूँगा, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों तक पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है।
1: और व्यक्तिगत के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं एक छोटे से टाउन से आया और मैं कोई बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट कभी नहीं रहा, मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट रहा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई परसेंटेज के साथ आ रहे हैं तभी आप ज़िंदगी में राइज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर की एकाग्रता है, अगर आपके अंदर एक संकल्प है, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है।
2: निश्चित ही डॉक्टर हिमांशु, हमारे श्रोताओं को आपकी इस जीवन यात्रा से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने अपने निजी जीवन के साथ अपने कार्यक्षेत्र के अनुभव आकाशवाणी से साझा किए। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मुझे लगता है कि मैं इस अनुभव प्रोग्राम के माध्यम से आने वाली पीढ़ी का कुछ मार्गदर्शन कर पाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।

कार्यक्रम अनुभव में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हिमांशु हिरौन से संकल्प मिश्रा की बातचीत। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: सुबह के 10 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर एलएसएम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह आकाशवाणी परिसर देहरादून से नेहरू कॉलोनी चौक तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हुई। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिले में संचालित 23 मदरसों में पीएम पोषण योजना की प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा देर रात केदारनाथ धाम पहुंचे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकास परियोजनाओं का किला शिलान्यास और लोकार्पण। पिथौरागढ़ में ट्रैकिंग सीजन के दौरान सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा समस्त टूर ऑपरेटरों एवं ट्रैवल एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने स्वास्थ्य विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रम की समीक्षा कर तेजी लाने के दिए निर्देश। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:02 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

0: नमस्कार दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशिष्ट पदार्थ या पदार्थों के समूह के प्रति सामान्य से अधिक संवेदनशीलता के स्तर की विशेषता होती है। ये पदार्थ जिन्हें एलर्जी कहा जाता है अति संवेदनशील व्यक्तियों में प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। एलर्जी टिक्स, मोल्ड, भोजन, पराग, पालतू जानवर और धूल के कणों में पाई जा सकती है। शरीर में एलर्जी की बीमारी विकसित करने की आनुवंशिक प्रकृति को एटोपी के रूप में जाना जाता है। जब एलर्जिस्ट एटोपिक लोगों के संपर्क में आते हैं तो एक प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है जो आगे चलकर एलर्जी और सूजन की ओर ले जाती है। एलर्जी किसी विशिष्ट एलर्जी वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो एलर्जी रिएक्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जैसे ही एलर्जेंस शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर द्वारा एक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। मस्तूल कोशिकाओं को प्रति एंटीबॉडी का जुड़ाव होता है। मस्तूल कोशिकाओं की प्रतिक्रिया हिस्टामिन को मुक्त करते हैं। यदि एलर्जी के कारण हिस्टामिन निकलता है तो इसे जलन और सूजन हो सकती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। अब आपको बता दें कि सबसे आम एलर्जीज क्या है दोस्तों। पहले तो पेंसिलिन से एलर्जी। पेंसिलिन के कारण होने वाले एलर्जी की प्रतिक्रिया एनाफिलैक्सिस से लेकर हल्के दाने तक हो सकती है। पेंसिलिन एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह है जिसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। मीट एलर्जी। पोल्ट्री उत्पाद और बीफ जैसे मांस के कारण एक व्यक्ति एलर्जी की प्रतिक्रिया से पीड़ित हो सकता है। इस एलर्जी प्रतिक्रिया के लक्षण को विकसित होने के कुछ समय लगता है। पराग कण, पॉलन, ये ऐसे कण हैं जो पेड़ और घास द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर ये कण सांस के जरिए शरीर के भीतर पहुंच जाए तो इससे सरदर्द, छींक और गले में जलन हो सकती है। कॉस्मेटिक एलर्जी। कई कॉस्मेटिक उत्पाद जैसे मॉइस्चराइजर, शैम्पू और अन्य चेहरे के उत्पादन एलर्जी का कारण बन सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षण में सूखापन और सूजन शामिल है। डस्ट माइट्स। ये जानकर आपको बहुत हैरानी हो सकती है कि लेकिन कमरे के ज्यादातर कोनों में डस्ट माइट मौजूद है। बेडशीट्स, मैट्रेस, पर्दे और तकिए इनके घर है, इसीलिए आप हमेशा अपना घर का साफ सफाई ठीक से करें। दोस्तों, दुनिया भर में ज्ञात सबसे आम एलर्जी से एक प्रोटीन है जो जानवरों द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलती से इसे अंदर ले लेता है तो इसे घरघराहट हो सकती है। खाद्य एलर्जी। किसी व्यक्ति को खाद्य एलर्जी भी हो सकती है दोस्तों। ये संभव है कि किसी व्यक्ति को दूध, काजू, अंडे, मेवा आदि जैसे डेयरी उत्पादों से एलर्जी हो सकता है। अगर कोई कीट व्यक्ति को काटता है तो एलर्जी की प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। कीड़े का काटना भी खतरनाक हो सकता है। कीड़ों के कुछ काटना घातक भी हो सकता है। अगली एलर्जी है दोस्तों मोल्ड्स। ये फंगस जो घर के अंदर और नम स्थानों में आसानी से पाई जा सकती है। मोल्ड से एलर्जी जलना, छींकना और अंततः अस्थमा का कारण बन सकती है। परफ्यूम की खुशबू से भी व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है। ये सबसे आम एलर्जीनों में से एक है जिसे त्वचा पर यानी अपने स्किन पर सोरनेस हो सकता है। एलर्जी के सबसे आम कारणों में से एक कॉकरोच के कारण हो सकता है जो घर में इधर उधर भाग रहे हैं। कॉकरोच द्वारा छोड़े गए श्वास संबंधी एलर्जी से व्यक्ति को अस्थमा का विकास हो सकता है। कॉकरोच एलर्जी के सबसे आम कारणों में से एक है। यदि किसी व्यक्ति को उचित धूप नहीं मिल रही है, अगर कोई व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित है, एलर्जी एक विशेष एजेंट के लिए शरीर की प्रतिक्रिया है। लक्षणों में एलर्जिक राइनाइटिस, छींकना, साइनसाइटिस, सांस की तकलीफ, घरघराहट, सीने में जकड़ना, खांसी, लाल चकते जो उठे हुए हैं और खुजली, सूजे हुए होंठ, जीभ, आंखें और चेहरा, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त शामिल है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बीमारी और शुष्क और फटी त्वचा की भावना। एलर्जी के लक्षण तुरंत प्रदर्शित नहीं हो सकते हैं। ये कुछ घंटों से लेकर 10 दिनों के बीच कहीं भी स्पष्ट हो सकता है। उपचार के साथ भी लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं। एलर्जिन के लगातार संपर्क से बचने से इसे बारामासी बनने से रोका जा सकता है। एक व्यक्ति एलर्जी प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जा रहे लक्षणों को सीमित करना संभव है। एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए उपचार उपलब्ध है। एलर्जी की रोकथाम के लिए व्यक्ति को स्वयं को एलर्जी से बचने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में पालतू जानवर है तो एलर्जी से खुद को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि सतर्क रहने से भविष्य में एलर्जी से बचा जा सकता है। एंटीहिस्टामिन, ये दवाएं हिस्टामिन क्रियाओं को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। एक डॉक्टर इम्यूनोथेरेपी की सलाह भी दे सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के पुनर्वास के लिए डॉक्टर द्वारा इस चिकित्सा की सिफारिश की जाती है। एलर्जीज मौसमी हो सकते हैं, यानी सीजनल हो सकते हैं, यानी हे फीवर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल चीजें करके एलर्जी होने से बच सकते हैं, जैसे एलर्जी पैदा करने वाले कारकों के संपर्क को कम करना, इंडोर हवा की शुद्धता बनाए रखना, पॉलन ग्रेन्स, पराग की मात्रा अधिक होने पर बाहर के संपर्क से बचना। ऐसे कई इलाज है दोस्तों, आप घर पर भी कर सकते हैं। और बेहतर यही है कि आप पहले अपने एलर्जेंस को पहचाने और बाद में उसके संपर्क से आने में अपने आप को बचाए। तो ये थी दोस्तों एलर्जीज के बारे में। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:11 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ में कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म है नमस्ते लंदन।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म बीवी नंबर 1 से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनिए प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह आकाशवाणी देहरादून से नेहरू कॉलोनी तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आकाशवाणी के अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रोताओं सहित अन्य गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का उत्सव मना रही है, बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति, एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित कर रही है। चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हर की पौड़ी से भीमगोड़ा क्षेत्र तक स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कुछ स्थानों पर फुटपाथ और नालियों के ऊपर दुकानें संचालित होती मिली, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में परेशानी हो रही थी। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ी दुकानों को पीछे हटवाया और स्पष्ट निर्देश दिए कि फुटपाथ और नालियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को नियमित निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने स्वीकृत धनराशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनहित के कार्यों में तेजी लाई जा सके। स्वीकृत योजनाओं में विभिन्न जिलों में भवन निर्माण, मंदिर के सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार और पुलिस और होमगार्ड विभाग के कार्यों के साथ ही शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए भी धनराशि जारी की गई है। देहरादून के करजन रोड स्थित गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में संचालित जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र DDRC दिव्यांगजनों के लिए राहत और सहारा बनकर उभरा है। यहां प्रत्येक बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिल रही है। वहीं DDRC द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 8791009301 के माध्यम से दिव्यांगजन घर बैठे भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में पहली बार गांधी शताब्दी अस्पताल में DDRC संचालन के लिए 4 कमरे उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक वर्ष से भी कम समय में 600 नए दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड तैयार किए गए हैं, जबकि 250 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण भी किया जा चुका है। वहीं दून निवासी दिव्यांग लाभार्थी मनोज बहुगुणा ने बताया कि लंबे समय से उन्हें UDID कार्ड बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। DDRC के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने केंद्र पहुंचकर आवेदन किया, जहां दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनका UDID कार्ड तैयार हो गया। श्री केदारनाथ धाम यात्रा के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने धाम पहुंचकर देर रात्रि विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने धाम में उपस्थित श्रद्धालु से संवाद स्थापित कर यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य सुविधाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने श्री केदारनाथ धाम में निर्मित अस्पताल का भी निरीक्षण किया। अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकीय उपकरणों एवं दवाओं की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:10 पर प्रसारित किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:35 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपको सुनवा रहे हैं गुड्डू राणा के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर में
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं गुड्डू राणा के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुड्डू राणा के गाए जौनसारी लोकगीत।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 11 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। आप सभी श्रोता हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ आइए शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश की। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ नीलम ममगाई। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अपना और अपना पसंदीदा गीत सुनने के लिए आपको हमें करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिखना है अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731।

पहली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं सादुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। ये अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं, आप हैं श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से हैं डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सानू कुंभार और अर्चना कुंभार। कोयते बस्ती पुनावली से हमारे साथ जुड़े हैं अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका और सायशा।

ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गुगामा से आप हैं हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, मोहम्मद शादाब खत्री। ये अगली फरमाइश करताल जिला रंगा रेडी तेलंगाना से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कानूगोला गोपाल महेश्वरी प्रबालिका विष्णुवर्धन विघ्नेश। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं धामणगांव महाराष्ट्र से आप हैं भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी देठे पाटिल, समर्थ दादा, कुमारी सानिका। बर्फ गांव नांदुरा से आप हैं शिवाजी उगले, राहुल उगले। और ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, आपके नाम हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, इनके पिताजी हैं नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। शामिल कर रहे हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू को। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, फिल्म का नाम जब वी मेट।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, आप हैं एसएम जावेद, शगुप्ता, अंजुम और नजमल होदा, गुमला झारखंड से आपने ये फरमाइश हम तक पहुंचाई है। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, आप हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक और परी खर्चे, और इन्हीं के साथ हैं स्वाति प्रयाग चौधरी। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश, जिसको लिखा है बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा। ये अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, आप हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, रचिता और केशो रिधान खुराना। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को, आप हैं पुरानी भिलाई तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद और इनका पूरा सिद्दीकी परिवार। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। जसपुर रोड दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से आप हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और इनकी बेटी है अलशिफा परवीन। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा को। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी आप सभी का, और शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में फाजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार को, आप हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालनी टिवांशी और समस्त खेड़ा परिवार। अगले श्रोताओं का ये मैसेज प्राप्त हुआ है कैथल हरियाणा से, आप हैं जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, टीडी मल्होत्रा, शुभचंद्र बजाज। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में इस अगली फरमाइश को, जिसको लिखा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर शर्मा, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। कस्बा उघेती बदायूं से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू को। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म का नाम अभिमान।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: 7.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश, जिसको लिखा है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह ने शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। करणवीर हाउस भूचो कैनचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिजोत को। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आप हैं शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज और विशाल सपकाल। शीशगढ़ बरेली से आप हैं इलियास इदरिसी, नाजरा इदरिसी, नईम, नदीम और असद बाबू। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। गांव खरकड़ा चौबासी से ये मैसेज आया है गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका और तमन्ना कांगड़ा का। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा को। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से हैं सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया। कार्यक्रम में यह अगला मैसेज आया है बिहार रेडियो लिसनर क्लब से, आप हैं सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा और अनामिका शर्मा। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से आपने मैसेज किया है, आप हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से आप हैं मधु नायक। वारसी क्लब सिंधौली बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करुला मुरादाबाद से आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। समस्तीपुर नरहन स्टेट बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं ललन मिश्रा, नूतन, अमन पाराशर, आराध्य और लल्लू पंडित। शाही मार्केट श्योहरा जिला बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम लव इन टोकियो।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार के सदस्यगण। कस्बा गन्नौर से आप हैं फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, साथ में हैं आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता दिव्या, रचना ओमवती भारती और इनके बहुत सारे साथियों का ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली यूपी से। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद फारूक फूलवाले, सैयद खलील, मुबीन भाई, एमडी यासीन, मूसा करीम शेख और शेख सलीम को। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। ये अगली फरमाइश आई है पुराना तालाब डुमराव से, लिखने वाले श्रोता हैं वली उल्लाह अंसारी और असमनाज अंसारी, सरगुजा मेन

से आप हैं विनोद थापा, पूजा रानी और विजय थापा। छत्तीसगढ़ से आप हैं जानवी डोमिन, यामिनी और रोहित। डोंडी लोहार से आप हैं फर्जी हरिशंकर बेलदार और प्रभा रानी बेलदार। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं उमा राज और जगदीश राज। मेरठ कैंट से ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, लिखने वाले श्रोता हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये अगली फरमाइश आरजे मनोज वर्मा की नजीबाबाद से हम तक पहुंची है। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में इस अगली फरमाइश को, जिसको लिखा है रणधीर बांगड़ गुरमेजो गौरव परवीन युगम और वीरे ने गांव झगुड़ी जिला यमुना नगर से। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आप हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या गोस्वामी। देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और इनके साथ हैं मास्टर अल कबीर। आप ये कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। शामिल कर रहे हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी को दाऊद सराय सहारनपुर से। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है व्हाइटफील्ड बेंगलोर से। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का। रामगढ़ कैंट से आप हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप बंसल। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म अनाड़ी से ये कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। आप हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टवुल और PB कुलथे को। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आप जुड़े हैं जवाहर नगर दुर्ग से। आप हैं RC कामले, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामले। कार्यक्रम का ये अगला मैसेज आया है अनारकली बाजार जगराऊं से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गाविया और भाई सुच्चा सिंह पाठक ने इसको हम तक पहुंचाया है। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिंपा, कपिल, ईशान छिपा, पूजा और परिहार को। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी, जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, नवीन, मंदीप, प्रियंका, सपना, नीतू, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा। ये अगली फरमाइश जिला नांदेड़, इताला, महाराष्ट्र से लिखने वाले श्रोता शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। ये कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं पाकुड़ झारखंड से। ये अगले श्रोता हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। आप हमारे साथ जुड़े हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन UP से। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से आप हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्या, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ये अगली फरमाइश पहुंची है। लिखने वाले श्रोता हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश और योगेश, साथ में है युधव कड़वासरा। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं मॉडल टाउन करनाल से। आप हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज और रोहित शर्मा। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से आप हैं शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदिनी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। गुरमीत सिंह मीता हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से। और ये मैसेज भटिंडा रोड मंडी डबवाली से लिखा है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग ने। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली युवान और RK राजा। कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सरिता, सुजाता, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, पूजा पिंकी, बाबू शिवा चौरसिया और शिवानी चौरसिया को फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा UP से। ये अगले श्रोता हमारे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं पोटिया कला दुर्ग से। आप हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। ये अगले श्रोता हैं विजय चौहान, तेजस्वनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत, वारणा, शाहपुर, कोल्हा।

नागपुर महाराष्ट्र से आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म सरगम का ये कार्यक्रम का अगला गीत।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, आप हैं चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी पटवा, ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से आपने ये मैसेज किया है। दतरंगी से हमारे साथ जुड़े हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय को। दुबीहा नेवादा, जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अनिनोदीन बनहटी, ममताज बनहटी, रियाज, रुबीना, जुनैद, अंजुम, मारिया, हुमेरा, सलमान और सीमा। आपने ये मैसेज किया है कर्नाटका गढ़ मोहल्ला महालिंगापुर से। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजुर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी को। कार्यक्रम में अगला मैसेज आया है देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी हैं सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू।

राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता और स्मिता रानी, साथ में समस्त गुप्ता और चावला परिवार। ये अगले श्रोताओं का मैसेज प्राप्त हुआ है चौसा गोला बक्सर से। आप हैं जयराम बिंद, सीता मुन्नी देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रदुमन और प्रीतम कुमार शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश, जिसको लिखने वाले हैं गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष विवेक बेबी आयुषी श्रीवास, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपने ये मैसेज किया है। कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से आप हैं मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमू, मानस राज। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से ये मैसेज प्राप्त हुआ है। अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना आरिज, नदीम शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा का, इन्हीं के साथ हैं कोहात बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह को। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश, श्री देवी जी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। ये अगला मैसेज आया है रामपुर ग्राम दिव्या नगला अंबेडकर पार्क के पास से। आप हैं आकाश गौतम, सौरभ गौतम, विक्की गौतम, कपिल और अर्पित गौतम। मुताला महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। कलानौर हरियाणा से आप हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, बसंतराव, निर्वति आड़ुकार ने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। तिलक नगर दिल्ली से आप हैं रविंद्र छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में, फिल्म का नाम संगीत।

अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आप हैं। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना और सुमेध दामोदर। वरसिंगी बुलढाणा से आप हैं अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, श्लोक और दीपाली। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारबिसगंज बिहार से आप हैं प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार विमल। इन्हीं के साथ हैं नवरतन हाटा बारीहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव देवांशु और डब्लू जी। ये अगली फरमाइश सब्जी मंडी बुलढाणा से पहुंची है। लिखने वाले श्रोता हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन। अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं हैदराबाद कीसरा मंडल से आप हैं सदानंद गौड़ और सत्यम्मा। ये अगली फरमाइश भेजी है गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत मोहम्मद इंतजार ने। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से आप हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। कार्यक्रम का ये अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से आप हैं बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश राहुल शर्मा। ये अगले श्रोता गांव नथाना पंजाब से हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। जय जुनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से आप हैं रुपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और इनका पूरा परिवार। ये अगली फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं आप हैं पंजू सराय संभल से हैं छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निम्मी पम्मी ध्रुव, सिया हर्षिता और निशांत ध्रुव। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर यूपी से। गंज डुंडवारा गणेशपुर से ये अगला मैसेज आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं फिरासत हुसैन, अलकमर जहां और शिफा सिमरन। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी, हिना कौसर को मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज सनावत से आया है। लिखने वाले श्रोता हैं शेख मूसा मोहसिन। ये अगले श्रोता हैं रामगंज खंडवा से विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, सोनू मोनू, रानू सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू उनके नाम हैं। इन्हीं के साथ हैं शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी मोहबिया, अनय अनाया और यशु बाबा। शीतला चौक खंडवा से आप हैं विशाल सिंह और विवेक सिंह। हैदराबाद बी एन रेड्डी नगर से आप हैं मोनिका बालू, विनय कुमार। ये अगले श्रोता हैं ग्रामपुट पार्क तेलंगाना से भवानी वेंकट, मास्टर मिथुन और महादेव। अगले श्रोताओं का ये मैसेज जमशेदपुर झारखंड से आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन जी। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म उमराव जान से ये कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइशों की ओर। तो अंतिम फरमाइशें हम शामिल कर रहे हैं आप सभी श्रोताओं की। आप हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहम, साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। ये अगली फरमाइश भेजी है शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया साईदाज और विशाल सबकाल ने। स्टेशन रोड जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज जलालाबाद वेस्ट से आया है। लिखने वाले श्रोता हैं सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से आप हैं मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और मोहम्मद इंतजार। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार और इनके बहुत सारे साथियों को ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं आजाद नगर यमुनानगर से हैं रमेश चावला, ऋतिक चावला, सुमित चावला, मीनू चावला और इनके परिवार के सभी सदस्यगण। ये अगली फरमाइश लिखने वाले श्रोता हैं गुन्नौर से हैं आदिल कमर तस्दीक और इन्होंने ये मैसेज किया है गुन्नौर से। शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज जिसको लिखा है आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ने शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से। ये अगले श्रोता नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से जुड़े हैं। आप हैं अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। और कार्यक्रम में ये अंतिम मैसेज हम शामिल कर रहे हैं तेलंगाना भोंगिर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा और आजमीन गुड़िया। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम कुदरत।

0: इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 12 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन

0: to de-risk the international economy. We help to give more possibilities. We are creating more options. We are today negotiating and concluding more free trade agreements for countries to avail of it. And along with that, we are trying to create a global footprint so that our impact on the international economy and the de-risking of the world is as impactful, as far-reaching as possible.
1: Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh has said that India's approach to migration is guided by the core operational principles of protection of migrants, comprehensive governance across the migration life cycle, and strong international cooperation. The minister was addressing the heads of delegations to the second International Migration Review Forum at the Permanent Mission of India to the United Nations, New York. Mr. Singh highlighted that India has concluded comprehensive bilateral mobility agreements and MOUs with 23 countries and is pursuing several more to create sustainable pathways for fair and ethical mobility. The minister underlined that migration is ultimately about people, their aspirations, resilience and contributions. He added that India's endeavour is to build an inclusive, humane and future-ready framework. In IPL cricket, Delhi Capitals will face Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. And with that, we end this news bulletin.
2: FM 107.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं. 12:10 हो रहे हैं. आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस.
3: ये आकाशवाणी देहरादून है. अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस. आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी परिसर देहरादून से नेहरू कॉलोनी चौक तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर LSM परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत. उग नमा शिवाय के जयकारों के साथ आदि कैलाश यात्रा का पहला दल आज हल्द्वानी से हुआ रवाना. दल में 13 महिला और 7 पुरुष शामिल. केदारनाथ यात्रा में सफाई के लिए 400 से अधिक कर्मी तैनात. अभी तक 60 टन कूड़ा हो चुका एकत्रित. चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह. यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग 9 करोड़ रुपए से अधिक हुई. रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा. उत्तरकाशी के विकासखंड डुंडा के राजकीय इंटर मातली कॉलेज में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने स्वास्थ्य विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा कर तेजी लाने के दिए निर्देश. इको विकास समिति का गठन कर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक स्वामी पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधा. प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण पर भी किया जा रहा कार्य. पुलिस लाइन हरिद्वार में आयोजित परेड के दौरान SSP हरिद्वार ने नए भर्ती जवानों और पुलिस कर्मियों के साथ दौड़ लगाकर फिटनेस का दिया संदेश. हरिद्वार जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ की सख्ती. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हर की पौड़ी से भीमगोड़ा क्षेत्र तक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा. और भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा कार्यालय द्वारा ज्वेलर्स जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन. आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस.
2: 107.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है. 12:12 हो रहे हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत. आज के कार्यक्रम में सुनिए विविध कलाकारों के गाए शब्द.

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है म्यूचुअल फंड

0: बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
1: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत का। आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए शब्द। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला शब्द।

अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए शब्द। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर संपन्न हुआ। FM 7.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 12:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

जिस घर में नारी का होता है मान, वहीं बसता है खुशियों का जहान। त्याग, प्रेम और ममता की पहचान है, नारी ही तो इस दुनिया की शान है। नमस्कार, अभिवादन सभी बहनों का आपके कार्यक्रम महिला जगत में। आज मैं हूँ आपकी दोस्त सुनीता भट्ट। आज हम बहनों ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मानवता, सेवा और करुणा का प्रतीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। विश्व रेड क्रॉस आंदोलन की शुरुआत एक महान व्यक्ति हेनरी दुनंत ने की थी। 1859 में उन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों की स्थिति को देखा और उनके मन में सेवा की भावना जागी। इसी भावना से रेड क्रॉस संगठन की स्थापना हुई। आज यह संगठन पूरी दुनिया में काम कर रहा है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करना, आपदा के समय मदद की भावना बढ़ाना, जरूरतमंद की सहायता करना। बहनों, यह दिन हमें सिखाता है कि बिना किसी भेदभाव हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। रेड क्रॉस का मुख्य कार्य है बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी आपदाओं में सहायता देना, रक्त शिविर, प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता देना, युद्ध पीड़ितों की मदद, घायल सैनिकों और नागरिकों की देखभाल करना, मानवाधिकार संरक्षण, हर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना। बहनों, रेड क्रॉस का सबसे बड़ा संदेश है मानवता सबसे पहले। यह हमें सिखाता है कि धर्म, जाति, भाषा या देश से उठकर इंसानियत के को महत्व देना चाहिए। आज जब दुनिया संकटों का सामना कर रही है, जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और कई संघर्ष, तब रेड क्रॉस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह संगठन हर परिस्थिति में लोगों की मदद के लिए आगे आता है और इस संगठन में महिलाएं और युवा इस भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जैसे रक्तदान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, समाज सेवा करना और जागरूकता फैलाना। रेड क्रॉस दिवस हमें दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सेवा का भाव सिखाता है। हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए। सेवा में जो जीवन बिताए वही सच्चा इंसान कहलाए, दुख में जो हाथ बढ़ाए वही मानवता को अपनाए। समय हो गया है बहनों म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: प्यारे से गीत के बाद स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम महिला जगत में। श्रीमती सावित्री शर्मा हमारे लिए कहानी लेकर आई हैं, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कहानी है सपनों से आगे।
1: दिल्ली के एयरपोर्ट पर श्यामली कुंजा को देख हर्ष से भर उठी। लगा

की मीठी फुहारें तन मन भिगो गई हैं, उसने पति आहान से कहा। देखो आहान, जो गेट से अभी अंदर आई है, हरे रंग का सूट है, जिसके घुटनों तक चोटी है, मेरी बचपन की सहेली है। बीच में संपर्क टूट गया था, देखो कैसा इत्तेफाक है, आज यहाँ मिली है और हमारे पास समय भी नहीं है बात करने का, हमें घर से पहले ही देर हो गई है, पता नहीं फिर कब मिलें। आहान ने कहा, कोई बात नहीं, पर तुम जल्दी जाकर उससे फ़ोन नंबर ले आओ, मैं सामान और गुड्डन को देखता हूँ। श्यामली बिना समय गवाए दौड़ती हुई कुंजा के पास पहुँची। कुंजा ने उसे देखा तो खुश हुई, दोनों सहेलियाँ गले लग गईं, पलकें गीली हो गईं, शायद समय की गति से शिकायत कर रही थीं। मन था बचपन में उड़ना चाहता था और समय था कि भागने की जिद पर था, शब्द थे कि कहीं छुप गए थे भावों के अतिरेक में। वर्षों की बातें पल में कह देने की उलझन, सुख दुख की हवा को महसूस करना कराना था। श्यामली ने उससे विलग होते हुए कहा, कहाँ खो गई थी तू दुनिया की भीड़ में, तू तो फेसबुक पर भी नहीं दिखाई देती, क्यों तुझे पता नहीं मुझे सोशल मीडिया में घुसे रहना अपना समय खराब करना लगता था। लेकिन कुंजा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ परेशान है। सुनकर कुंजा के चेहरे पर दुख की काली माँ और गहरा गई। कुंजा ने अनमने मन से कहा, श्यामली इस बारे में फिर बात करते हैं, कहकर कुंजा चुप हो गई। कुंजा के साथ उसके पति थे और साथ एक बेटी थी जो उसके पति की गोदी में थी। तेज कदमों से चलती कुंजा की दृष्टि शायद श्यामली पर नहीं पड़ी थी, लेकिन श्यामली ने कुंजा को दूर से पहचान लिया था। कुंजा श्यामली की बचपन की सहेली थी, आसपास रहने के कारण दोनों साथ स्कूल जाते, लौटकर खेलते, त्योहार साथ मनाते, बड़े हुए तो दोस्ती और गहरा गई। लेकिन दोनों की पढ़ाई में पसंद अलग हो गई, जहां श्यामली को कथक पसंद था वहां कुंजा को टीचर बनना। अचानक कुंजा के पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया। दिन महीने साल बदले, बरसात की भीनी खुशबू, पौष की ठंडी खामोशी, ठंड में ठिठुरते दिन रात को थामने गर्मी भी आ गई। श्यामली कुंजा की दोस्ती भी समय की परतों में समा गई। कुछ समय तक तो दोनों को यादों ने पीछे मुड़कर देखने को विवश किया, फिर समय की मांग ने यादों को गिरफ्त में लेकर जैसे कहीं छुपा दिया था और दो दोस्त अपने जीवन की मांगों में बह निकले। आज इतने अंतराल के बाद दिल्ली एयरपोर्ट में विगत थामे आमने सामने खड़े थे। श्यामली बोली, अरे तेरी भी शादी हो गई कुंजा, और राधा भी आ गई। श्यामली ने कुंजा के गोद में बेटी को देखते हुए उसके सिर को प्यार से सहलाया। कुंजा बोली, और तुमने क्या रंग दिखाया बता तो जरा। श्यामली बोली, मैं भी तुझसे पीछे कैसे रहती, देख मेरे पति देव। उसने दूर खड़े अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे वाह तेरी बिटिया बड़ी प्यारी है, एकदम अपने पापा पर गई है। उसने दूर खड़े श्यामली के पति को की उंगली थामे खड़ी उसकी बेटी को देखते हुए कहा। श्यामली यादों को समेटने में समय की पाबंदी भूल गई थी कि आहान का फोन आ गया। जल्दी आओ, हमारे पास समय नहीं है। अच्छा सुन कुंजा, अपना नंबर दे, बाकी बातें बाद में होंगी, अब मिल गए हैं, अब दोबारा नहीं बिछड़ेंगे। फोन नंबरों के आदान प्रदान के बाद सखियां यादों को दुलराती सहलाती अलग हो गई। श्यामली अपनी बहन की शादी अटेंड कर लौट रही थी, कुंजा अपने मैके से आई थी, ससुराल जा रही थी। नंबर लेकर श्यामली भागती हुई पति के पास पहुंच गई। प्लेन में बैठने के साथ यादों का सफर भी शुरू हो गया। पूरे रास्ते श्यामली कुंजा के बारे में ही बात करती रही। मन का कोना जाने क्यों कह रहा था, अब ये वो कुंजा नहीं लग रहा था, जिंदगी उसका इम्तहान बहुत कड़ा ले रही है, वरना इतनी जीवट बिंदास लड़की के चेहरे पर उदासी। घर पहुंचकर श्यामली कुछ दिनों तक व्यस्त रही। एक दिन ऑफिस से लौटकर आहान ने चाय पीते हुए पूछा, श्यामली जब हम शादी से लौटे थे पूरे रास्ते ही तुम अपनी बचपन की सहेली कुंजा के बारे में सुनाती रही थी, कुंजा ऐसी है कुंजा वैसी है, अब उसकी कोई खबर लिया नहीं, क्योंकि तुम कह रही थी शायद उसे कुछ परेशानी है। अरे आपने अच्छा याद दिलाया, मैं तो शादी से लौटकर इतने दिन से बंद घर की सफाई कपड़े धोने में ही लग गई थी, अब तो रात हो गई है, कल सुबह नाश्ते के बाद आराम से करूंगी। दूसरे दिन श्यामली ने सारा काम निपटाकर कुंजा को फोन किया। बहुत देर बाद कुंजा ने फोन उठाया।

आया तो श्यामली बोल उठी, क्या यार कुंजा, बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में। उस दिन जब हम एयरपोर्ट पर मिले थे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ परेशानी है, क्योंकि सिर्फ मैं ही बोलती रही थी लगातार। तूने बात जरूर की पर मुझे पहले जैसा हम मिलते थे उस तरह नहीं लगा। तू मुझे हमेशा शामू कहती थी, श्यामली नहीं। उस दिन तुमने मुझे शामू भी नहीं बोला, कुछ बताएगी क्या? कुंजा ने गहरी सांस खींचते हुए कहा, श्यामली हम बहुत बार इतने अक्षम होते हैं कि परिस्थिति में घटता हुआ सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। श्यामली को लगा कुंजा की आवाज किसी गहरी खाई से आ रही है, आवाज भी भीगी हुई है, जैसे कुंजा ने अपने दुख को बरबस रोका हुआ हो। कुंजा कुछ पलों के लिए जैसे कहीं खो गई थी, उसकी वेदना बोल उठी थी, क्या हुआ कुंजा? श्यामली भी उसकी मना स्थिति से परेशान हो उठी, अगर बाद में बताना चाहे तो फिर कभी सही। कभी कभी दुख शब्द छीन लेता है, अंदर उठता गुबार सिर्फ आंखों से बहता है। श्यामली ने महसूस कर लिया था कुंजा के गले में अटके गरल को। नहीं, आज ही बताती हूँ। सुन, तू मेरी बेटी से मिली थी, वो गोद में थी, मेरा बेटा हुआ था, उसके होने के बाद लगा था सारे सुख मेरी झोली में आ गिरे हों। उसको बड़ा होते देखने में असीम सुख था, स्कूल जाने लगा था, लेकिन जब वो 5 साल का था उसके स्कूल से फोन आया, आपका बेटा बेहोश हो गया है। हम बदहवास से भागते हुए स्कूल पहुंचे, ऐसा पहली बार हुआ था। मैं और मेरे पति घबरा गए, इतने छोटे बच्चे का यूं बेहोश हो जाना साधारण बात नहीं थी। जानती है जब सारे टेस्ट हुए तो जो रिपोर्ट आई लगा दुनिया ही खत्म हो गई। बेटे को कहकर अब वह खुद को संभालती कुंजा रो पड़ी। श्यामली जीवन के कड़वे सत्य को महसूस कर रही थी, उसका कलेजा भी मुंह को आ गया। क्या कहकर समझाती विधाता के नियम कौन जानता है। कुंजा थोड़ी संभली तो बोली, श्यामली उसे कैंसर था, वो भी 4th स्टेज का। बस हम बेटे को सारी दवाओं दुआओं के बाद भी उसे हर पल अपने से दूर होता जाता देखते रहे। बेटा कहता, मम्मी मुझे क्या हुआ है, मैं खेल क्यों नहीं पा रहा, मनपसंद चीजें आप मुझे खाने को क्यों नहीं देती हैं, मम्मा मैं अब घर कब जाऊंगा। उसके इन सवालों का जवाब नहीं था श्यामली, मैं और तेरे जीजा जी अकेले में बहुत रोते रहते थे लेकिन बेटे के सामने हंसते थे। अपनी आंखों से अपने बेटे को सामने से दूर जाता हुआ देखना आसान नहीं था श्यामू, कैसे बताऊं कि कैसे लगता था जब उसका जन्मदिन हमने अस्पताल में मनाया था। बेटे ने कहा, मम्मा मैं बाद में घर जाकर दोबारा बर्थडे मनाऊंगा अपने सारे दोस्तों के साथ। अस्पताल में मैं ज्यादा दोस्त भी नहीं बुला सकती थी उसके। हम बर्थडे केक काट रहे थे, ताली बजा रहे थे, लेकिन अंदर से रो रहे थे, जानते थे ये उसका आखिरी जन्मदिन है, कहकर कुंजा कुछ देर के लिए चुप हो गई। श्यामली भी इस असह वेदना को अपने अंदर पी रही थी, क्या कहती सांत्वना में, यही कि ईश्वर पर किसी का जोर नहीं है। थोड़ी देर बाद कुंजा फिर बोली, श्यामू एक कड़वा सच और है। और क्या हुआ कुंजा? जब बेटा हुआ उसी समय यूट्रस में बहुत बड़ी सिस्ट हो गई थी जो शायद नॉर्मल नहीं थी, डॉक्टर ने उसे साथ ही रिमूव कर दिया था। मैं दोबारा कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। बेटे के जाने के बाद मुझे अवसाद हो गया, मैं बड़बड़ाती रहती थी, बेटे का सामान देखती तो संभाल ही नहीं पाती थी खुद को, भूख लगनी बंद हो गई थी, फिर मुझे दुनिया बेमानी लगने लगी थी। मेरा अवसाद इतना गहरा था कि बुरे विचार खुद को समाप्त करने के लिए आने लगे थे। फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो मन थोड़ा संभला, समझ आया कि बेटे को याद करने के लिए या उसे प्यार देने के लिए जरूरी नहीं है खुद को भी समाप्त करूं। मैंने जीवन का सूनापन दूर करने के लिए बेटी गोद ले ली। अब मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है। बेटे के जन्मदिन पर पार्कों में पेड़ लगाती हूँ, अनाथ आश्रम में केक काटकर उसको याद करती हूँ, लगता है कि वो मुस्करा रहा है। उसके सारे दोस्त उसके जन्मदिन पर घर आते हैं, उसे साइकिल चलाना बहुत पसंद था, हर जन्मदिन पर किसी गरीब बच्चे को साइकिल जरूर देती हूँ, लगता है मेरा बच्चा सबके बीच है। कितना बड़ा अपराध करने जा रही थी खुद को खत्म करने का, जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, दुखों से भागना तो कायरता है, बस सोच की सही दिशा

0: होनी चाहिए। श्यामू, जीवन क्या है, इसकी सही परिभाषा इसके जीने में है। दुख कैसा भी हो, सामना करना है। खुशी पहले से निर्मित कोई चीज या वस्तु नहीं है, सोच और कर्मों से प्राप्त होती है। श्यामली सोच रही थी, वास्तव में कुंजा एक आदर्श है। टूटकर बिखरते तो सब हैं, पर जो संभल जाए वही सच्चा इंसान है। श्यामली अपनी सहेली के हौसलों पर नतमस्तक थी। फोन थामे श्यामली कुछ पल के लिए संवेदना से भर उठी। सच कहा कुंजा, जीवन की परख तुझसे ज्यादा कौन जानता है, इसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल में संभलना आसान नहीं है। बहुत कुछ हार कर भी अड़िग खड़े रहना और खुद को संभालना जीवंतता है। इसकी असलियत सपनों से बहुत आगे है। जीवन हम सब जीते हैं, लेकिन जीवन ऐसा आदर्श बने कि लोगों के लिए उदाहरण हो। जीवन के खेल में खिलौना बनना है या खेल, ये आप स्वयं निश्चित करें।
1: अभी आप प्रेरणादायक कहानी सुन रहे थे सपनों से आगे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी श्रीमती सावित्री शर्मा। अब हम जिस विषय पर बात करेंगे, वह विषय केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब महिला अपनी शक्ति को पहचानती है तो वह न केवल अपना जीवन बदलती है बल्कि पूरे समाज का परिवार को आगे बढ़ाती है। महिला स्वभाव से ही मजबूत, सहनशील और संवेदनशील होती हैं। महिला एक साथ कई भूमिका निभाती है, बेटी, बहन, पत्नी, माँ और एक जिम्मेदार नागरिक। लेकिन बहनों, कई बार समाज की सोच, डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण महिलाएं अपने असली क्षमताओं को पहचान नहीं पाती। हम बहनों को अपनी क्षमताओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, अपने सपनों को पूरा करने का साहस आता है और समाज में अपनी अलग पहचान बनती है। जब महिला खुद समझती है तभी वह अपने जीवन की सही दिशा तय कर पाती है। कई महिलाएं अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाती, इसके कई कारण हैं, जैसे समाज की पुरानी सोच, शिक्षा की कमी, परिवार या समाज का दबाव या खुद पर विश्वास की कमी। लेकिन आज समय बदल रहा है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति और व्यापार में भी कई महिलाओं ने अपनी क्षमता को पहचानकर इतिहास रचा है, जैसे कल्पना चावला, मैरी कॉम, किरण बेदी, बिछेंद्री पाल जैसी कई महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला मजबूत हो तो लक्ष्य असंभव नहीं। डर को दूर करें, असफलता से डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीखना चाहिए। हमें बेटियों को समान अवसर देना होगा, उसके सपनों का समर्थन करना होगा, अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना ही सीखें। हर महिला के अंदर अपार शक्ति और प्रतिभा छिपी होती है, जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। जब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानेंगी तब ही समाज और देश का सच्चा विकास संभव होगा। खुद की पहचान बनानी है तुम्हें, अपने सपनों को उड़ान देनी है तुम्हें, रोक ना पाए कोई भी राह में, इतना मजबूत बनना है तुम्हें। मिलते हैं बहनों संदेश के बाद।
2: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
3: सॉरी,
2: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
3: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
2: मतलब?
3: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
4: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: संदेश के बाद रसोई घर से आज हम स्पेशल कटलेस अरबी बनाएंगे, जो शायद पहले कभी नहीं बनाई होगी। कटलेस अरबी सब्जी के लिए आधा किलो अरबी को उबालें, ठंडी होने पर छील लें और कद्दूकस करें। बहनों, आप कद्दूकस अरबी को एक बाउल में डालें। अरबी में एक

दो लौंग, 5-6 काली मिर्च, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, अच्छे से भुनें। अब बड़े प्याज को बारीक काट कर डालें और ब्राउन होने तक भुनें। इसमें टमाटर और काजू की प्यूरी भी डालें। इसमें आधा चम्मच दही, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, सारे मसाले तब तक भुनें जब तक तेल मसाले से अलग ना हो जाए। इसमें 1 गिलास पानी डालें। उबाल आने के बाद अरबी के फ्राई रोल्स डालें। 4 से 5 मिनट उबाल आने दें और उसके बाद कसूरी मेथी डालें। मजेदार स्वादिष्ट अरबी कटलेट्स की सब्जी तैयार है। तो बहनों, अब समय हो गया है एक प्यारा सा गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

इतने प्यारे गीत के साथ बहनों, समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते आपको अपना पता और एड्रेस बता देते हैं। आपको हमारा पता है कैपिटल कार्यक्रम महिला

जगत निर्देशक कार्यक्रम आकाशवाणी निकट रिस्पना पुल बाईपास रोड हरिद्वार हरिद्वार रोड देहरादून। पिन कोड नंबर है 248001। हर रविवार को बहनों बच्चों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है बालमंडल। अगर आपको अपने बच्चों के गीत और कविताओं की रिकॉर्डिंग करवानी है तो आप 3:30 से 4 बजे आकाशवाणी में आकर बच्चों की रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। आपका स्वागत है। अब अपनी दोस्त नीता भट्ट को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी देहरादून है। 1 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत के सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

0: वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सदशमलव 5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, असम के चाय उद्योग के अनुभवों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन को नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की, मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकथॉन का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोकभवन में आयोजित उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद की 17वीं बैठक में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि एक पवित्र दायित्व है। ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधनों, संरक्षण और अवसरों का अभाव है, उनके जीवन को संवारने के लिए संवेदनशील और सक्रिय प्रयास आवश्यक हैं। राज्यपाल ने परिषद के सदस्यों से अधिक उत्साह, सक्रिय भागीदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण परिषद जैसी संस्था को समय के अनुरूप नई सोच, नई कार्यशैली और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने प्रत्येक जिले में कल्याण परिषद गतिविधियों को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर प्रभावी बाल कल्याण केंद्र विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक योजनाओं और सहायता का लाभ बेहतर ढंग से पहुंच सके। बैठक में राज्यपाल ने बाल कल्याण परिषद के वर्ष 2026-27 के अनुमानित आय और व्यय का अनुमोदन करने के साथ ही विभिन्न बिंदुओं पर अपनी सहमति दी। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी इन दिनों असम के दौरे पर हैं। उन्होंने असम के बारपाथर स्थित चाय बागानों का दौरा कर वहां की उत्पादन क्षमता, प्रसंस्करण प्रणाली और विपणन व्यवस्था का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय चाय उत्पादकों, निर्यातकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने, गुणवत्ता सुधारने और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में चाय उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य की जलवायु उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि असम के चाय उद्योग के अनुभवों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन को नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय किसानों को अधिक लाभ मिल सके। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा मार्ग, नदी और पहाड़ियों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार यात्रा मार्ग पर स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए 400 से अधिक सफाईकर्मी सीतापुर से केदारनाथ धाम तक लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं। अकेले गौरीकुंड क्षेत्र में 110 सफाईकर्मियों की तैनाती की गई है। सोनप्रयाग में प्लास्टिक कचरे को कॉम्पैक्ट करने के लिए विशेष मशीनें लगाई गई हैं। अब तक लगभग केदारनाथ सहित यात्रा मार्ग पर 7 टन प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर प्रोसेसिंग के लिए के बाद रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा चुका है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर 600 से अधिक डस्टबिन लगाए हैं और पर्यावरण मित्रों की तैनाती कर नियमित सफाई और कचरा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। उखीमठ के उप जिलाधिकारी अनिल रावत ने श्रद्धा

0: धातुओं से प्लास्टिक और अन्य कचरा निर्धारित कूड़ेदान में ही डालने की अपील की है।
1: सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 400 के आसपास कार्मिकों को स्वच्छता और सफाई के लिए लगाया गया है, जिनमें से मात्र गौरीकुंड में ही 110 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही शौचालय, यात्रा मार्ग की सफाई और अन्य कार्यों का संपादन किया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम पधारने वाले सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने कूड़े का समुचित निस्तारण करने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और जिला प्रशासन को स्वच्छता और सफाई के दृष्टिगत अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
0: वहीं केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु भी सफाई व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की सराहना कर रहे हैं।
2: यहाँ पर जो टॉयलेट्स की सुविधा है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सफाई हो रही है और सब काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सफाई मिलेगा, पर बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आगामी मानसून सीजन को लेकर सचिवालय में विभागों और जिलों की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को मानसून पूर्व तैयारियां समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून के दौरान जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चारधाम यात्रा भी संचालित हो रही है, ऐसे में सभी रेखी विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड में कार्य करना होगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मानसून शुरू होने से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करते हुए क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली, पेयजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और शहरी विकास विभाग को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज्य में नदी तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए नदियों के चैनलाइजेशन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नदी मार्ग में जमा RBM को हटाने के निर्देश दिए ताकि नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो और कटाव से आबादी व आधारभूत संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे। बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने विभागीय तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य आपातकालीन चालन केंद्र में विभिन्न रेखी विभागों के नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है और मानसून अवधि के लिए समन्वित कार्य योजना तैयार कर ली गई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
0: आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र से नेहरू कॉलोनी तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में केंद्र सरकार की थीम कर्मयोगी मिशन के तहत राजयोग मेडिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला जज, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से तनाव मुक्त और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि संबंधों में मधुरता और मानसिक शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन बेहद जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद उपयोगी साबित होते हैं।
5: जिस तरीके से तनाव को महसूस करते हैं अपने कार्य को करने में, उससे कैसे तनाव को कम किया जा सके, उससे कैसे उसको मैनेज किया जा सके, इस संबंध में मेडिटेशन क्या अभ्यास बताया, मेडिटेशन को किस तरीके से करना है, क्या है उसकी क्या उपयोगिता है, इस संबंध में जानकारी दी और मेडिटेशन का कार्यक्रम किया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली ने कुछ विधिक साक्षरता के संबंध में हमने कुछ बातें रखी, जिसमें लोक अदालत जो आगामी लोक अदालत है 9 तारीख को वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने स्वीकृत धनराशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि जनहित के कार्यों में तेजी लाई जा सके।

0: कृत योजनाओं में विभिन्न जिलों में भवन निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यकरण, ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार, पुलिस और होमगार्ड विभाग के कार्यों के साथ ही शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरुमीत सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, असम के चाय उद्योग के अनुभवों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन को नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की, मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकथॉन का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: .5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 1:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म आशिकी 2 से ये गीत। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, चिन्मय श्रीपर्दा और गोपी सुंदर की आवाज में। फिल्म का नाम चेन्नई एक्सप्रेस।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 107.5 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत कुमार सानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 1:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
3: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
3: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
3: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
3: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
3: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
3: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
3: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
3: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
3: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक

0: मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है।
0: जी
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
0: जी
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
0: जी
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
0: जी
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
0: जी समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं। यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र। यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र। यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800-440-5559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@ciet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है, रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रवि

0: विद्यालय के नाम से जाना जाता है। रवींद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी, उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।
1: तो अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ा

0: बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र है उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

0: अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सदशमलव 5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक साथियों, जय हिंद। कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत की प्रेरणादायक गाथा, जिनकी बहादुरी, साहस और देश प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। आज की यह वीर गाथा है परम वीर चक्र विजेता जोगिंदर सिंह की।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

श्रोताओं, जोगिंदर सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के महला कला गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन संस्कार असाधारण। बचपन से ही उनमें अनुशासन, मेहनत और देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी। वो खेतों में काम करते हुए भी सेना में जाने का सपना देखा करते थे।

श्रोताओं, उस वक्त देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। चारों ओर देशभक्ति की लहर थी। युवाओं के मन में मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। इसी प्रेरणा ने उस वक्त जोगिंदर सिंह को भारतीय सेना की ओर आकर्षित किया। 28 सितंबर सन 1936 में जोगिंदर सिंह भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने सेना शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी ईमानदारी, निडरता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें साथियों और अधिकारियों के बीच लोकप्रिय बनाया। देशभक्ति का जज्बा तो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था।

श्रोताओं, जोगिंदर सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा मोर्चे पर और सन 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी अपनी सेवाएं दी। साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में दुश्मन लगातार आगे बढ़ रहे थे। उस समय जोगिंदर सिंह अपनी छोटी टुकड़ी के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे। दुश्मन सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों से कई गुना अधिक थी, लेकिन भारतीय जवानों का हौसला अधिक था। जोगिंदर सिंह ने अपनी छोटी टुकड़ी के साथ दुश्मन के कई हमलों को विफल कर दिया। उनकी वीरता देखकर दुश्मन भी आश्चर्यचकित था। गोली लगने के बावजूद जोगिंदर सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथियों का मनोबल बढ़ाया और अंतिम सांस तक ये वीर जवान दुश्मनों से लड़ता रहा और वीर गति को प्राप्त हुआ।

श्रोताओं, जोगिंदर सिंह जी की वीरता और बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम में सैनिकों के लिए को संपन्न करने की नीलम ममगाई को दीजिए अनुमति। सैनिक साथियों, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में अस्पताल का लोकार्पण किया। कहा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस उच्च हिमालय क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। राज्यपाल गुरुमीत सिंह ने लोकभवन में आयोजित उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद की 17वीं बैठक में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने असम के बरपाथर स्थित चाय बागानों का दौरा कर वहां की उत्पादन क्षमता, प्रसंस्करण प्रणाली और विपणन व्यवस्था का विस्तार से निरीक्षण किया। कहा, असम के चाय उद्योग के अनुभवों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन को नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा मार्ग, नदी और पहाड़ियों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ

0: कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आगामी मॉनसून सीजन को लेकर सचिवालय में विभागों और जिलों की तैयारियों की समीक्षा की। सभी विभागों को मॉनसून पूर्व तैयारियां समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी की स्थापना के 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून से नेहरू कॉलोनी तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी पौड़ी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के संयुक्त तत्वाधान में जिला चिकित्सालय पौड़ी में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ प्राधिकरण की सचिव नाजिश कलीम ने किया। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: 7.5 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। दोपहर के 3:02 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, गाने नए तराने।

शाश्वत सचदेव की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म थी धुरंधर द रिवेंज। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विशाल शेखर और अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम संघाई।

अभी आप सुन रहे थे नंदनी और अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत फिल्म थी संघाई। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, नीरज श्रीधर की आवाज में, फिल्म का नाम तुम मिले।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: FM 7.5 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत गाने नए तराने। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला तराना राबता फिल्म से। गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने, संगीत प्रीतम का, गीतकार हैं इरशाद कामिल। फिल्म का नाम राबता।

श्रोताओं, अक्सर जो दिल के करीब होते हैं वही अक्सर समझ नहीं पाते कि वो कितने खास हैं। वक्त कहता है ठहर जा, दिल कहता है चल पड़, और जिंदगी बस इसी खींचतान में बीत जाती है।

श्रोताओं, सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का हौसला हो। तो सपने खूब देखिए और अपना हौसला कभी भी कम मत होने दीजिए जब तक कि आपका सपना पूरा ना हो जाए।

श्रोताओं, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हों तो हर रास्ता आसान लगने लगता है।

श्रोताओं, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने डर से हमेशा आगे बढ़िए, क्योंकि जीत हमेशा उसी के कदम चूमती है जो आखिरी दम तक कोशिश करता रहता है।

अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए, एक दिन वही सपने आपकी पहचान बन जाएंगे। श्रोताओं, जिंदगी में हारना गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना ये सबसे बड़ी हार है।

श्रोताओं, जीवन में हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। जब इंसान अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ता है ना, तब उसकी मेहनत एक दिन इतिहास बन जाती है। और याद रखिए, तालियों की गूंज अक्सर उसी के लिए होती है जिसने संघर्ष की आवाज को कभी भी दबने ना दिया हो।

तो श्रोताओं, सपने देखिए, मेहनत करिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने आप को उत्साह से हमेशा भर के रखिए और इसी के साथ सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 4 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 50 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। कहा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस उच्च हिमालय क्षेत्र में यह अस्पताल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय नागरिकों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग बाजार में स्थानीय लोगों से संवाद किया। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को भी गंभीरता से सुना। कैबिनेट

0: मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। चंपावत के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में जिला स्तरीय एक दिवसीय कौशलम प्रदर्शनी का आयोजन। कौशलम कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रदर्शनी में जिले के चारों विकासखंडों के चयनित 22 विद्यालयों में से 17 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने नवाचारी मॉडल का प्रदर्शन किया। पौड़ी जिले में आदर्श विद्या निकेतन हल्दुखाता कोटद्वार में बाल विवाह रोकथाम व बाल संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। 300 से अधिक छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणाम, बच्चों के अधिकार, बाल संरक्षण और पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर बागेश्वर जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून से नेहरू कॉलोनी तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: 7.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4:02 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में सुनिए पंडित ब्रजनारायण से सरोद वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मुल्तानी। तबले पर आपके साथ संगत दे रहे हैं सुखविंदर सिंह नामधारी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित ब्रज नारायण से सरोद वादन राग मुल्तानी में। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे थे सुखविंदर सिंह नामधारी। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: अब हमारे श्रोता जहां हम भी वहां, आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। शाम के 4:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक कलाकार।

0: स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम एक कलाकार में। आज का कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं उस महान गीतकार, कोरियोग्राफर और अभिनेता को, जो अपने देशभक्ति गीतों, विशेषतः सन 1965 में आई मनोज कुमार अभिनीत फिल्म शहीद के गीतों और संगीत के लिए जाने जाते थे। उनका नाम था प्रेम धवन। इनके बारे में जानेंगे और भी, लेकिन पहले आप सुनिए इन्हीं की शब्द रचना फिल्म एक फूल दो माली से।
1: अच्छे बच्चे नहीं रोया करते, और तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो।

0: श्रोताओं, प्रेम धवन जी का जन्म 13 जून सन 1923 को अंबाला हरियाणा में हुआ। इनके पिता ब्रिटिश सरकार में जेल अधीक्षक के पद पर तैनात थे। इन्होंने लाहौर से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। प्रेम धवन जी ने सन 1946 में लाहौर में संगीतकार ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आज और कल में बतौर सहायक बनकर अपने करियर की शुरुआत की। बाद में वो मुंबई चले गए और इंडियन पीपल्स थिएटर से जुड़ गए। आगे क्या हुआ बताएंगे इस गीत के बाद।
1: जीरो।

श्रोताओं, इंडियन पीपल्स थिएटर से जुड़ने के दौरान उनकी मुलाकात हुई प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार रविशंकर से। उनसे उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका मिला। सन 1946 में उन्होंने बतौर गीतकार धरती के लाल फिल्म के लिए गीत लिखे। इसी बीच उन्होंने आराम, तराना, आसमान, शोला और शबनम, काबुलीवाला, एक फूल दो माली, पूरब और पश्चिम जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे और इन गीतों ने प्रेम धवन जी को एक नई पहचान दी।

ধূপ ঝাউরে।

श्रोताओं, बतौर संगीतकार उन्होंने शहीद जैसी फिल्म के लिए संगीत तैयार किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म ने प्रेम धवन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अभिनेता मनोज कुमार की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया।

0: श्रोताओं, प्रेम धवन जी ने जहां बतौर गीतकार संगीतकार के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया, वहीं उन्होंने दो फिल्मों लाजवाब और गूंज उठी शहनाई में अभिनय भी किया। इसके अलावा उन्होंने 7 फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया। श्रोताओं, वचन उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने बतौर गीतकार और बतौर कोरियोग्राफर काम किया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सन 1971 में नानक दुखिया सब संसार में इस गीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।
1: ये पर्दा हटा दो,

लेकिन सन 1980 के दशक के अंत तक उनका करियर कुछ थम सा गया और 7 मई सन 2001 को हृदयाघात आने के कारण उनका निधन हो गया। हिंदी सिनेमा को अपने बेहतरीन गीतों से समृद्ध करने वाले प्रेम धवन साहब को हम नमन करते हैं और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार, एफएम 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी।

0: प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साया के 5:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज प्रसारित होने वाले शेष और कल से प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं कार्यक्रम विवरण में।

श्रोताओं से बस कुछ ही मिनटों बाद यानी साय के 5:10 पर आप सुनेंगे NSD द्वारा निर्मित पॉडकास्ट श्रृंखला के 29वें एपिसोड में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले श्री रामामूर्ति श्रीधर से बातचीत। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा साय के 5:45 पर।

7:30 हमारे किसान भाई अपने दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में सुनेंगे श्री कृष्णानंद डिमरी से वीना शर्मा की बातचीत, और बातचीत का विषय होगा सहकारी

कारिता से ग्रामीण विकास। श्रोता उत्साह के 7:40 और रात्रि के 8:30 पर हमारे श्रोता सुन सकते हैं अपना मनपसंद फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। साय के 7:50 पर होगा विशेष कार्यक्रम यानी आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद। डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र सुनाएंगे कहानी कथा सागर में। समय रहेगा रात्रि के 8:00। विविध कलाकार पेश करेंगे गजल रात्रि के 8:15 पर सुगम संगीत में।

कार्यक्रम स्पॉटलाइट सुनना ना भूलिएगा श्रोताओं, रात्रि के 9:15 पर, 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में पंडित उल्हास कशालकर प्रस्तुत करेंगे ख्याल गायन राग काफी कानाड़ा में। अपने फरमाइशी गीत हमारे श्रोता सुनेंगे रात्रि के 10 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इसी के साथ आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। अब एक नजर डालते हैं कल के खास कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 7:10 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत के मोती आप सुन सकते हैं। किर्तु प्रस्तुत करेंगे जौन सारी लोक गीत कार्यक्रम शैल संगीत में कल प्रातः 7:30 पर। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल सवेरे 8:30 और लोक संगीत। जी हाँ, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं कल सवेरे 10:35 पर, जहां विनोद कुमार प्रस्तुत करेंगे रागिणी, उनके साथ संगत पर होंगे ढोलक में प्रदीप कुमार, नकाड़े पर मोतीराम और हारमोनियम में तेलू राम।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम फिल्मी गीतों और जानकारियों का ये कार्यक्रम कल दोपहर 2:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे और सायं के 4:02 का समय रहेगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के लिए, जहां पंडित डी के दातार प्रस्तुत करेंगे वायलिन वादन राग यमन में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:23:37 हुए हैं। अब हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सनाली, और मैं आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी शाम अच्छे से बीत रही होगी. वैसे दोस्तों, पता है, आज जब हम में से कुछ लोग फास्ट लाइफ और इंस्टेंट सॉल्यूशंस के पीछे भाग रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बैक टू प्योर, बैक टू नेचुरल वाली रिदम पकड़ रहे हैं, और इसमें उनका साथ दे रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि खेती का एक ऐसा तरीका जो नेचर के साथ चलता है, उसके खिलाफ नहीं. दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक इनपुट्स के खेती करना, जिससे मिट्टी की सेहत बनी रहे और जो हम खाना हम तक पहुंचे वो भी प्योर हो. आप कह सकते हैं कि एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है जिसमें हम बैक टू बेसिक्स का फॉर्मूला अपना रहे हैं, और इसके फायदे भी बहुत हैं. सबसे पहला बेनिफिट तो है ही हेल्थ, क्योंकि ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हार्मफुल केमिकल नहीं होते, जिसकी वजह से बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है. फिर दूसरा बड़ा फायदा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दोस्तों, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है, इससे वाटर पॉल्यूशन भी कम होता है और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है. और तीसरा है टेस्ट और क्वालिटी. ऑर्गेनिक फूड का टेस्ट ज्यादा नेचुरल और रिच होता है, क्योंकि उन्हें नेचुरली ग्रो किया जाता है, और अब तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का एंगल भी इसमें जुड़ गया है. आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है, और ऑर्गेनिक चीजों के लिए लोग प्रीमियम प्राइस देने को रेडी हैं. फिर आपने फार्म टू फॉर्क कंसेप्ट तो सुना ही होगा, अब हमारे पास डायरेक्टली सप्लाइंग टू द कंज्यूमर मॉडल भी है, और फार्मर्स मार्केट का कंसेप्ट भी. और तो और, अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना ब्रांड भी बना सकते हैं. इसमें इनिशियली थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है, जैसे सर्टिफिकेशन, अवेयरनेस और पेशेंस, पर लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल दोनों है. और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि सोसाइटी को हेल्दियर भी बना रहे हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्यूचर है जहां हेल्थ, एनवायरमेंट और इकोनॉमी तीनों एक साथ ग्रो करते हैं. और हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं भी कर सकते, तब भी आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चूज करके इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं,

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: वैसे पता है दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट्स हम मार्केट में देखते हैं उसके पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे होता है वो इंसान जो उसे इस दुनिया तक पहुंचाता है। आज की हमारी अगली चर्चा का विषय इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जो है सेल्स और मार्केटिंग में करियर। एक ऐसा फील्ड जहां आइडियाज़ भी बिकते हैं और कॉन्फिडेंस भी। चाहे आप टेक कंपनी की बात करें, फैशन ब्रांड की, या किसी छोटे स्टार्टअप की, सबको अपने

नए प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्किल्ड इंसान की ज़रूरत होती है। सिंपल शब्दों में समझे तो मार्केटिंग का काम होता है लोगों को अट्रैक्ट करना, ब्रांड बनाना, अवेयरनेस क्रिएट करना। वहीं सेल्स का काम होता है डील अक्वायर करना, यानी इंटरेस्ट को इनकम में बदलना। तो एक तरह से मार्केटिंग इंटरेस्ट बनाता है और सेल्स उस इंटरेस्ट को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। अब अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें तो इसमें सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जैसी पोजीशन स्टार्टिंग लेवल्स पर देखने को मिलती है, और फिर एक्सपीरियंस के साथ आप मैनेजर, ब्रांड हेड और बिजनेस लीडर भी बन सकते हैं। और पता है इस फील्ड की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो ये है कि इस फील्ड में सिर्फ डिग्री पे डिपेंड नहीं होना होता, बल्कि यहाँ स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी एनालिटिकल थिंकिंग। ट्रेंडिंग जॉब्स की बात करें तो SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एड्स, ये सब नए करियर पाथ हैं जिन्हें आप 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे करियर की तलाश में हैं जहां ग्रोथ हो, लर्निंग हो और हर दिन एक नया चैलेंज हो, तो सेल्स और मार्केटिंग आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। यहां आप सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं और आइडियाज को रियलिटी में बदलते हैं। चलिए अब कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए पेश करते हैं फिल्म की वायरस से अरिजीत सिंह की आवाज में।

दोस्तों कहते हैं कि हर फैसला सिर्फ पैसों का नहीं होता, कुछ फैसले सोच के होते हैं और कुछ आदत के, और इन्हीं फैसलों के बीच कहीं छुपा होता है शौक और जरूरत का फर्क। जरूरत है वो है जो जीवन को स्थिर रखती है, जैसे हमारी बेसिक नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये वो चीजें हैं जिन पर अक्सर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। वहीं शौक वो होते हैं जो जीवन को थोड़ा और कलरफुल और इंजॉयबल बनाते हैं। लेकिन पता है, असली चैलेंज जो है वो इनकी डेफिनेशन में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन में है। आज के दौर में जहाँ हर तरफ वन क्लिक शॉपिंग, इंस्टेंट डिलीवरी, लिमिटेड टाइम ऑफर्स का कल्चर है, वहाँ हमारी डिसीजन मेकिंग भी इंस्टेंट हो गई है। सोचने का वक्त कम और खर्च करने के रीजन ज्यादा हो गए हैं, और यहीं से शुरू होता है इम्बैलेंस। आपको पता है, एक्सपर्ट अक्सर कहते हैं कि स्टेबिलिटी तब आती है जब आप अपनी नीड्स को सिक्योर करके ही वॉन्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। कई रिसर्चेस तो ये भी बताती हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो होता है वो हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन अक्सर डिलेड डिसीजन से ही आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सोल्यूशन सिर्फ कंट्रोल है? नहीं, सोल्यूशन है कॉन्शियस बैलेंस। बैलेंस का मतलब है खुद से ऑनेस्ट रहना और सबसे ज़रूरी कंपैरिजन से दूर रहना, क्योंकि अक्सर हमारे शौक हमारी ज़रूरत से नहीं दूसरों की लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सोशल मीडिया पर दिखती हुई लाइफस्टाइल कभी कभी हमारी रियल नीड्स को ओवरशैडो कर देती है। सोचिए, अगर ज़िंदगी एक घर है तो ज़रूरत उसकी नींव है जो उसे मजबूत बनाती है, और शौक उस घर की खिड़कियां और रंग हैं जो उसे खूबसूरत बनाते हैं। अगर नींव कमज़ोर हो तो सजावट का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर सजावट ही ना हो तो घर भी सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनकर रह जाता है। इसीलिए बैलेंस ही असली स्किल है, और शायद ये भी समझना ज़रूरी है कि वक्त के साथ ज़रूरतें और शौक बदलते भी हैं। जो आज लग्जरी लगता है वो कल नेसेसिटी बन सकता है। याद रखिए कि ज़रूरत ज़िंदगी को संभालती है और शौक उसे मुस्कुराहट देते हैं। दोनों ज़रूरी हैं, बस सही वक्त और सही जगह पर। चलिए अब सुनते हैं ये गीत फिल्म अनजाना अनजानी से विशाल ददलानी और शिल्पा राव की आवाज़ में।

दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप खत द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी, द्वारा निदेशक कार्यक्रम, आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पनापल, देहरादून। और हमारा पिन कोड है 248001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारी ईमेल आईडी है youth@gmail.com और व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए मुझे यानी सोनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनदारा सभी बैबंदों तय विनय ध्यानिक छोड़ बटे के नमस्कार सेवा सौंदी
1: और दगड़ मां शांति पिंजो लगतर बटे भी सादर सेवा सौंद
0: यू एक कन घीज पड़ी हम तक कि ठीक 5:45 होला और हमन नमस्कार करण अरे यू काम पिछला कई बरसों बटे हम करना चाहूं
1: 90 साल बटे
0: हाँ अब सिर्फ ग्राम जगत तक बात नहीं करना चाहूं हम अपना आकाशवाणी की बात करना चाहूं कि आज का ही दिन हम तक ठीक 90 साल पूरा हुए गिन
1: बिल्कुल
0: और एक इतनी लंबी प्रसारण यात्रा कि बोनो क्या 90 साल कम नहीं हुआ है
1: और हम ही नहीं डबे आ चाहे हमारे सुंदर भी डबे आ चीन उन चिट्ठी पता नहीं ना
0: बिल्कुल अगर उन्हें हुआ तो यू जो हमारा सफर चना
1: जी

0: माँ बड़ी खैरियाणी छ, लेकिन उनको प्यार इतना मिल, चाहे वो हिंदी फिल्मी गीत हो उनका खातिर, चाहे लोगों तक समाचार सुनना हो,
1: चाहे खेती किसानी की बात हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चाहे खिलड़े हो बात हो, अच्छा डांड कांट हो, माँ आप जब जब कर लगाना चाहते ना, बुझो बुझो पकड़ी के, अब तो बाट बनी है ध्यान जी, उबर तो अपन कन कन रेस लगाए
0: वही तो बने,
1: डांडो माँ।
0: आज सड़क बिल्कुल चुल फर पहुंच जानी चे, तो हम तो लगत कि है वाकई भाई विकास तो होनो चे, लेकिन लुखो माँ वो जो भाव चे ना,
1: जी
0: वो जब वो क्या बोलते हैं गैस बैल किया लीना खुणाना चाहे गदन छल कि ध्यान
1: हाँ
0: जी आया छे आज गोमा और बोल सुबह बल कुछ रिकॉर्डिंग हूँ, तो लोग रुमक पड़त दागर हम पहुंचना छो, और ये जीएमओ की बस से कभी कहीं बस से, अब तो गाड़ी घोड़ा होगी ना हम भी,
1: जी जी
0: और हम पट मुख पर पहुंच जन हुआ।
1: और
0: तो
1: जबर गैस निराहल दोबर रंग वाली छिलो
0: हाँ वही तो बना, लेकिन
1: जी
0: एक गैस पंचायत गैस तो होंगी छा है ना, तो जब अगर रात रिकॉर्डिंग करण तो वो अनुभव भी कुछ और ही चाहे, इन लोगों छा बरती में आया हम,
1: जी जी जी
0: तो सारा लोग खाण खाए खुई कर थाड़ में बैठ जाण और वो एक बाद कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो, तो ये इन अनुभव छ नहीं, इन याद छ जो था बिसरे ही नहीं जा सको। तो और अगर हम आंचलिक बोली भाषा की बात करना, तो जन के हम अपन जो रेबार चू गुकमा भी हम बताना चाहूँ
1: जी
0: कि 47 साल से और ज़्यादा को बगत हुए गए, जब बटे की आकाशवाणी ने शुरुआत करी तो उन देखी कि भाई अगर जन जन की वाणी बनाने तो जो आंचलिक बोली भाषाएं छिन वक संस्कृति छ वक लोक कलाकार छिन, यूं था दगुड़ रखण होल तभी हम सच्चा अर्थों में जन सेवक और जन प्रसारक बन सकना।
1: बिल्कुल, जब तक लोग संवेदना नहीं जुड़े लिवे कार्यक्रम से, तब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं बे सको।
0: तो आज हम आप तक बधाई देना चाहूँ अपना सभी रेडियो श्रोताओं तय, और आप भी हम तक दे दिया कोई बात नहीं, कि लेके आपक छोड़ बिटिक भी हम तक मिलने चंदे, और चिट्ठी पत्री ईमेल आप हम तक पैटाओ कि भाई बहुत सुंदर 90 सालों की दगुड़ च, और यू दगुड़ 90 सालक ना बल्कि ओण वो इना अनंत यात्रा च नहीं कि इन चलनू रहन
1: बिल्कुल
0: स्वरूप बदल जाला, ये बात अलग छ, कई बार मीडियम वेव पर कई बार शॉर्ट वेव पर कई बार रेडियो पुटुक, आज हम मोबाइल पर आ गए हुआ मोबाइल ऐप का माध्यम से सुने जाना छुआ, तो सब कुछ बदलनु छ सब कुछ, लेकिन एक चीज शांति जी नहीं बदली,
1: जी,
0: बताओ क्या?
1: अनवरतता रेडियो की।
0: ना ना वो भी ठीक छ क्या, हाँ वो चलनी छ। एक खास बात क्या छ पता, लोकप्रियता को जो ग्राफ चुनो कभी तोल नहीं आया,
1: बिल्कुल, ये तो अपन बहुत अच्छी बात बोले
0: और
1: सच्चे
0: उकमा
1: की।
0: हमन क्या करी कि लोकप्रियता था बढ़ाने का खातिर हमन अपना दायरा बढ़ा दिया, कि आज हम सिर्फ पहले ऊंचा के साथ चला आकाशवाणी नजम बाच जग जग तक सुने जाल वही कहते हमारा सीमा खत्म,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी जी
0: आज मोबाइल ऐप का माध्यम से हम जापान स्विट्जरलैंड और पूरे ब्रह्मांड में जग जग इंटरनेट की सुविधा च वक वक ग्राम जगत हाजिर छ।
1: यानी कि तकनीकी विकास लोगों की निभाए, हमारे रेडियो भी भाई और हमारे विचारों भी गए।
0: और जन के हम बना छुआ
1: जी
0: कि कुछ श्रोता वर्ग इना छिन जोन बोल के भाई लोकप्रियता मां रेडियो पहल भी छाया आज भी छ और एथर भी रालो एक दा
1: एकमात्र रेडियो ये नीचे
0: बिल्कुल।
1: ध्यान जी
0: हाँ
1: कि जो जैन बेटे शुरू हुआ लू और आज तलक वो चलने ही लगे छे, और लोकप्रियता का दगड़ चलनु छे। दुनिया बदले गया, जमान बदले गया, विज्ञानन क्या क्या कह दिया, लेकिन रेडियो सच बोले अपन की जो लोकप्रियता थी आज भी और पहले दिन बटी चलने लगी छे, जन गंगा जी को सी जल।
0: और खास बात क्या छ ना, या आकाशवाणी नहीं छी या आपक अपन वाणी छ, और अपन वाणी था सुनना को लोग तरसदा छन,
1: जी जी
0: तो यू काम हम करना छुआ एक दा फिर से आप ते बहुत बहुत बधे। अब आप तो बतौला आज कार्यक्रम के बाबत अजी और छुई बद भी हमार दगड़ आप लोग भी लगेला हम भी लगौला, ग्वालदम की पर्यटन की संभावना ये विषय पर हम एक बातचीत आप तक पहुंचौला श्री खिलाफ सिंह जी से जो कि पर्यख का पर्यटन विशेषज्ञ छन, एक अलावा छुई बत लगनी रहली, अब आप कुछ गीत गा सुनाओ दे।
1: जी जी जी तो सुन दो, भारत सिंह नेगी का स्वर में एक सुंदर सी गीत।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है।
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब

0: नोट्स बदलिए? अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: भारत सिंह नेगी का शर्मा अपन सुन, यू सुंदर सी गड़ गीत और रेबार भी सुन।
2: ठीक, तो अब एक रेबार आप अपने भी बने कि जंगलों में ये बत भलवा अपार सरक दीदा को कि चुमना अटकनू रहा है, तो जंगलों में आग लगने की घटना जो होनी भी चाहिए ना, वो पर जरिस अंकुश लग गया। लेकिन अगर अब आप देखना चाहिए कि फिर चटक तले को घाम हो लू, तो फिर से संभावना है ना कि वनाग्नि की घटना बढ़ सक दे, तो ये का वास्ता आपन जागरूक रहना।
1: बिल्कुल, और इन निवाहक ध्यान जी का कि मिन इन भी सुन कि घासक बांध लोग जान बुझे भी अज्ञा कर दिन कि कोई बात नहीं, हम बुझा लू लाइए थे और सोट के सी बढ़ने नुए थे बुआ नहीं सी और वे नु झाड़ दे दिन कि हम बुझा दूला। लेकिन कई दा इन हुंद कि वो आग अपन विशाल रूप ले लिंद और बहुत ज्यादा जन धन की हानि तो बहुत अलग बात चले। लेकिन जो वे अग्नि से जो जीव जंतु मर देना, जो हम जैव विविधता की बात कनके कर ला, हम अगर हम इन्हें बड़ा अंग लगाना रोला थे, तो ये वास्ता हम तो संवेदनशील होन बहुत ज्यादा जरूरी छ। ऊ चखलों के प्रति, ऊ जीव जंतु को, कीट पतंगों का, ऊ जंगली जानवरों का प्रति जो भरचे जाना छे हर साल, और उनकी प्रजाति घटना छे सबसे बड़ी दुख की बात या छे, हमारे पर्यावरण तक बहुत नुकसान पहुँचण।
2: तो हम तो ये भी बोल ला कि ये बात था आप भी बना छे, हमन भी जो वन क्षेत्र अधिकारी छे उन समण में रखी
1: जी,
2: तो उन मनोन चाहे कि यह घटना बहुत कम हों बल।
1: अच्छा,
2: कि लोग घासक बांध कम जंगल फूकना छे ना, के लेके शक्ति भी हुई गया तो इलछे छायु, लेकिन अब कम छो, तो हमन बोल फिर भी आखिर क्या कारण छे? उन बोली कि कुल मिला कि यह बात तो 100% सच छ कि जंगलों की आग मानव जनित छ। यानी आप सबसे बड़ा उदाहरण देखा ना, जन के मन
1: पहले
2: कोरोना काल में जब लोग बहरी नहीं चाहे तो कटक जंगलों में आग की घटना हुआ ही नहीं।
1: बिल्कुल,
2: यहाँ मतलब कहीं ना कहीं मानव जनित मानवीय भूल से ही जंगलों ते आग पिलचे जांद, चाहे हम बीड़ी पे माचिस कुड़ दे, आड़ा फूक दिन, तो कुल मिला कि हमारी लापरवाही से ही जंगलों में आग लगत। तो अब दोषी कोच हम
1: जी जी,
2: हम बोला साहब के ना, हमन रोज धे लगे आप तें कि भाई जंगलों में आग निलगन चेंद और इन और, लेकिन जब एक ग्रामीण होने की जिम्मेदारी आई तो तब हम लापरवाह हो गए, इनका तय नहीं करण। और एक बात और भी बोल ला कि अगर कहीं मैं आप बना के घटना देखना चाहें तो संबंधित विभाग तक वो एक सूचना आप जरूर दिया, क्या कि बगत रहें हम ये चे कि भाई जरिस मुश्किल तो हेली, लेकिन हम जो एक बड़ी संपदा च वही था न्यूनीकरण जो बोल दो कि कई नुकसान था कम हो
1: जी,
2: कोई बात नहीं चे, जब लग गया वही था बुझाए भी आल हमन तो कम नुकसान हुए। ये का बहाना अपन छंट चितल रहे, कंट्रोल रूम का नंबर जगह जगह छन, पंचायतों में दिया छन, क्षेत्र पंचायतों में दिया छन, और ब्लॉक मुख्यालयों में अलग से कंट्रोल रूम बनया छन, आपदा कंट्रोल रूम बनया छन, वन चौकी छन, वन अग्नि चौकी छन, और जुआ का फायर वॉचर छन, वो लगातार काम करना छन। तो यूँ सभी लोगों तय हमारे तरफ बटक बहुत बहुत बड़ू सैल्यूट छ, अपन जान जोखिम में डायरिक भी कहबत देखा हुए जानना अन्याड़ फुक्याड़ कखी न कखी कुछ हों। पिछला साल इन घटना भय छन कि जखमा जो कर्मचारी छन विभाग का वो हताहत हुई, तो ये बात ठीक नहीं छ, लेकिन वो लोग खूब बड़ो जिकड़ वाला छन, तो आग पर काबू पाण में ऊंग दगड़ आपन भी मदद करें। खारी ऊंची हुएगी है ना
1: जी जी जी,
2: तो ऐसे बड़ो दियो आपन बोल चाहो ना कि पर्यावरण पर्यावरण का दगड़ी ही एक बात जुड़ी चे पर्यटन की
1: जी।
2: जब सुंदर हरा भरा बूण होला तो केला नहीं पर्यटक आला, लेकिन अगर चौ छोड़ी धुआं रोली होली और जंगल हमारा फुकीना होला तो लोग ई तो बोलन अरे अफार देखो या फुके गया, बस ईदगा बोलन, और वैसे क्या हूं प्रदूषण भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: तो पर्यटन थे बढ़ावा देन में जो लोग यूं पहाड़ों में आण चंदे उनको वास्ता एक सुंदर जगह छ ग्वालदम, ठंडी जगह छ, भली जगह छ, और वखमा पर्यटन की असीम संभावनाएं छन। तो ये बाबत वका का ही एक पर्यटक जो छन पर्यटन विशेषज्ञ जो छन उनका दगड़ी हम बातचीत करना चाहूँ, आप छन श्री खिलाफ सिंह। श्रोता भाई बंधु नमस्कार, आज हम आप ग्वालदम ले जाना चाहूँ जो कि एक पर्यटक स्थल रहे और

0: भी आज बेटे ना बल्कि अंग्रेजों जमन बेटे की गढ़वाल और कुमाऊं का सीमा पर स्थित ग्वालदम अपन आप में एक रमणीक स्थान छे, लेकिन पर्यटन सुविधाओं को उतना विकास शायद आज भी हम तने दिखे। यख पर्यटन व्यवसाय से एक लंबा समय से जुड़िया छन श्री खिलाफ सिंह शाह जी, आवा उनसे जनदा कि क्या पर्यटन की विकास की गतिविधि ग्वालदम ने देखी और क्या इधर संभावनाएं छन। शाह साहब नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: बताएं आप कि पहले कन देखी ग्वालदम कुछ फर्क हुआ छे कि ना, जबकि एक सुंदर पर्यटक स्थल छे।
1: पहले तो बड़ी अच्छी सर या ना, यू ट्रेकिंग रूट वो छे ना बेस कैंप हो जी, तो यखी छे ग्वालदम में, तो अब रोड ले वाण मुंदोली वगैरह रोड ले, तो ट्रेकर जो तो वखी जानो उन्हा बेस वखी छे, तो वे हिसाब से ट्रेकर लोग यख नहीं रुकन और जग ज़्यादा डेवलप है ये चक्कर में, ये कम रुकना पर्यटक।
0: अगर हम पहले की बात करें जब कि अंग्रेजों विकसित कार्य क्षेत्र था, तो क्या क्या छाया खास देखना खोनी, क्या सुंदरता जिनके देवदार की बात करता हम बहुत सारा कुछ क्या क्या है।
1: ये पहली टी स्टेट थी ब्रिटिश पीरियड में, तो उन्हें जाना बात यू जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जन लोग बहादुरी काम करी उन्हें यकबे जागीरदारी मिली, तो अलग अलग जगह लोग यक आया छे तो उन्हें जागीर दी गई, और वो टाइम पे जो बथानगढ़ी छ और एक ग्वालदम नाग छ एक धनखरक टॉप छ ये देखने लायक जगह छ, या मच्छीदान छ ब्रिटिश टाइम में तलवाड़ी बगल में मच्छीदान सुनी वाला पे, तो भी ब्रिटिश पीरियड में बनाएंगे छी। घूमने लायक एक ये छ पिंडर नदी और एक बैजनाथ हुए और डंगोली हुए कोट माई मंदिर हुए, तो ये काफ़ी जगह चाहिए अगर प्रॉपर ढंग से डेवलप कर तो वे सकन।
0: पर्यटकों था सुविधाओं की बात जब हम देख दें तो ग्वालदम में क्या वो समुचित सुविधाएं छे जिन पर्यटकों का खाते
1: तो होना, कुछ कुछ होटल बने हैं अगर, लेकिन बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं चाहिए कभी। यह तो यू है ना, यू गढ़वाल लास्ट कोना हुए, चमोली जिला भी लास्ट कोना हुए, बागेश्वर लास्ट कोना हुए, तो चमोली जिला वाला एक ध्यान नहीं दें ज़्यादा यू है चक्कर। अब ये हिल स्टेशन के तौर पर विकसित हो सकन नहीं, धार्मिक स्थल तो बन नहीं सकन, तो हिल स्टेशन तौर पर अगर विकसित करें अगर गवर्नमेंट तब हो सकन एक थोड़ा बहुत डेवलप।
0: पर्यटन मानचित्र का अलावा अगर हम ग्वालदम तक खुजाने की कोशिश करा, तो यक जन के केंद्रीय विद्यालय छ SSB कुछ, ये के अलावा और यक को इना प्रमुख विभाग छ या
1: कृषि विज्ञान केंद्र छो, तो और उद्यान विभाग भी छो, छोटा सा यूनिट है और इंटर कॉलेज है GGIC है और प्राइमरी छ 3-4 एक और वन विभाग भी छे एक छोटा सा वो डाक बंगलो वगैरह और गढ़वाल मंडल विकास निगम भी छे, बाकी यही छे ज़्यादा तो नहीं छे, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो बैंक छे SBI वगैरह सब छे एक, तब कोऑपरेटिव बैंक भी शाखा छे एक।
0: पर्यटन विकास की जो अवधारणा है पहाड़ की, कि खास करी का वो होम स्टे इको टूरिज्म विलेज टूरिज्म था बढ़ावा देना छन, वे मायना में हम ग्वालदम थे कख देखना छो कि क्या ये का आसपास जो गांव छन या जो ट्रैक आप बताना छन या जो पर्यटक स्थल छन उनको विकास और वे का दगड़ी सुविधा यूं को क्या जो हिसाब किताब।
1: एक आसपास काफ़ी जगह थी, जैसे तलवाड़ी में आप बोना चाहे ना रुके चाहिए, एक ग्वालदम में चाहिए चिड़ंगा चे और लोल्टी आसपास भी बैठ सकन, और लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा प्रोत्साहन देना पड़ा इस साइड ना, तब हो सकन।
0: कुछ रमणीक गाँव जन के अपन नौ ले इकमा हमारा जो जवान दगड़ा छन युवा छन, आप तो एक लंबा समय से छन यख, आज भी क्यों उनको चिकित्सा भैर जाएंगे नौकरी करण या चरा पर्यटन से जुड़ जाओला, कुछ टूरिस्ट गाइड बन जाओला का कि अपना होम स्टे चलोला, तो युवाओं की सोच तो आप क्या देखना।
1: अभी तो नहीं चाहिए उतनी ज़्यादा स्कोप नहीं चाहिए ना अभी एक वे कि वो आगे पीछे आऊँ रह सको, मुझे स्कोप नहीं चाहिए कभी, तो ज़्यादातर ये हम चाहिए कि वो बाहर जाने कोशिश करें, हम भी अगर ये एम्प्लॉई चक्कर में तो फिर जाना एम्प्लॉय मिलने नहीं चाहूँ, मैं बाहर चले लूँ दिल्ली बॉम्बे वगैरह में काम के लिए 10-12 हज़ार में, हम 10-12-15 हज़ार देना तब भी यक तैयार नहीं हुआ, तो लोगों सोच ये कि अभी बाहर जाना चाहिए यक निकालू अभी प्रयास।
0: गढ़वाल कुमाऊं बिल्कुल इन बोले जा के मध्य केंद्र छ, ये से फायदा ज़्यादा है कि नुकसान।
1: अभी तो नुकसान होना मत न, तो हम कुमाऊं में होना न गढ़वाल में होना, कुमाऊँ सतन ये तो गढ़वाल से गढ़वाल सतन भाई, ये तो कुमाऊँ से लगा हुआ एरिया से, अब बहुत रिमोट है जाना 110 किलोमीटर से यक भाई गोपेश्वर, तो उन लोगों में तो बिल्कुल दूर।

0: पे बहुत दूर हुई तब।
1: अगर स्थानीय जनजीवन की हम बात करें तो वही था आपन के रूप में देखी, इतना समय से आप ग्वालदम, ग्वालदम का लोगों से, पर्यटकों से, पर्यटक सुविधाओं से, विकास की गतिविधियों तक देखना चाहिए अपन समझ में, तो यख जनजीवन कन चलनु छ?
0: जनजीवन तो एक विभिन्न जगह लोग छ, एक मुंशियारी भूटिया लोग भी छे, बुद्धिस्ट खम्पा लोग भी छे, गढ़वाला लोग भी छे, कुमाऊँ भी छे, और जो एस एस भी छे, तो ये में तो ऑल इंडिया लोग हैं, तो हम ऑल इंडिया लोगों तक मिलन यक, तो विभिन्न मिश्रित संस्कृति लोग छे यक ना तब।
1: जो हमारा जनप्रतिनिधि छन, चाहे ई छोड़ेगा चाहे ई छोड़ेगा, उनको कुछ राय कृपा ये पर कि चलो साहब ग्वालदम थे किला की सिर्फ और सिर्फ पर्यटन मानचित्र पर लोगों तो बता दे कि साहब बहुत सुंदर, सब कुछ बढ़िया, लेकिन जनप्रतिनिधि कभी कोशिश करी छे ईमानदारी से?
0: ना ना, ना कोई ईमानदारी कोशिश नहीं कर, कई बार मिल लेटर वेटर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया।
1: मांग क्या चाहिए यहाँ का लोगों का, यहाँ का कारोबारियों का, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का, आपका चाहे होम स्टे चिन, चाहे होटल चो, चाहे और कुछ चिन, यूँ लोगों तक चढ़ू क्या चाह?
0: हम तो ये चाहना चाहे जाने और जा क्यों करोड़ों रुपया खर्च करना मसूरी चो या नैनीताल से या और जाग से, तो वह मतलब 1% भी अगर वो यक कर दिया खर्च पर्यटन क्षेत्र में तो काफ़ी कुछ हो सकता।
1: ऐथर के संभावना हो सक दिन अगर माना कि जनप्रतिनिधियों तक जरा झेल लगाए विद्या या कर दिया, तो हम क्या कर सकता ग्वालदम तक कई रूप में हम विकसित कर सकता?
0: फिलहाल तो बिजनेस वर्क तो नीचे यक है बिजनेस पॉइंट पर, पर्यटन के क्षेत्र में अगर गवर्नमेंट करी या लोग ध्यान दे तो वह हमें रोजगार मिल सकन, यक कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाए, जैसे झील से यह डेवलप करी जाए, ट्रैकिंग रूट डेवलप कर गया छोटा मोटा इस टाइप का। मतलब
1: आप बोलना चाहे कि साहब वाण और मुंदोली का जो ट्रैकर छो अब उन्हें ही चल जाना चाहिए, यक नहीं रुकना, तो उतर रोकने का खातिर इन कुछ हो सकता कि यक प्रशिक्षण केंद्र हो या सारा एक केंद्रित यक कार्यालय बना दिए जा?
0: ना ना, ट्रैकर हो तो ये होना वह है, उससे के लिए होने वाले तो सीधा बेच दे जाऊँ, सीधा पहुँचाऊँ वह किले की, वह तो ट्रैक कौन थे ना, वह बीच जैसे कौशाण भी रहें तो कौशाण नहीं रुका हूँ, सीधा ट्रैक में जा लूँ, लेकिन वन जो लग्जरियस टूरिस्ट है उन लोग यहाँ कर कह सकाना।
1: इन बातचीत का माध्यम से हमारा सुनदरों तक क्या पैटान चाहना छन कि कनके कि हम ग्वालदम जो कि अपना आप में वाकई एक रमणीक स्थल छ, वे थे पर्यटन मानचित्र पर, सिर्फ मानचित्र पर ही ना बल्कि वे थे विकास सुविधाओं का दगड़ जोड़ी कि हम क्या कह सकता, आप के सुझाव छ कि क्या क्या करना चाहिए हम तय?
0: यंत गवर्नमेंट ही कह सकें थोड़ा बहुत ना, बेसिक मूलभूत सुविधाएं जन ट्रेकर रूट हो, हेलीपैड हुई, झीलों सौंदीकरण हो, और जन बधानगढ़ चो छोटा मोटा रज्जू मार्ग बन जाओ, ये टाइप आओ हो जाए, बाकी बेसिक सुविधाएं अगर मिल जाए तो तब पर्यटक भी आ सकन।
1: आज ही यख पानी की और स्वास्थ्य की ये सब सुविधाएं मूलभूत हैं चाहिए
0: ना? वो तो ठीक हुए, आप ठीक हुए, हाँ पानी वानी ठीक हुए, बिजली भी कभी कभी हुई दिक्कत, बाकी ठीक चाहिए।
1: शाहजी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपन ग्वालदम का पर्यटन की संभावनाओं और ये बद जो स्थिति चाहिए पर हमारे दगड़ बातचीत स्वीकार कर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालदम में पर्यटन की संभावनाएं, अभी ये विषय पर हम बातचीत करना चाहे पर्यटन विशेषज्ञ श्री खिलाफ सिंह से। उनका अनुभव छिन भाई, इतना साल बटे वो ग्वालदम देखना छिन, भल के कि पर्यटक कई छोड़ बिटाना छिन, और खास बात क्या छिन शांति जी,
2: जी
1: ये एक इन जगह छे जख्म बटे कि हम गढ़वाल और कुमाऊं दुयों का बीचों बीच हुआ, तो दुई तरफ पर्यटन की बाहर हुई सकत।
2: और कत का बढ़िया बात छी कि इत का सार्थक छुई आपन लगे ने, और वो छुई हमारा जब सभ्यों तक सैर जदन ये रेडियो माध्यम से, तो कुछ ना कुछ हर कोई फायदा उठान वही बात ही, और यू हमारे रेडियो की सार्थकता भी चाहिए कार्यक्रम की भी।
1: तो अब इन करदा घड़े में फिर कुछ और छुई लगौला, आज एक दिन हमारे खाते बहुत बहुत बहुत खास रख दे, लगे आज आकाशवाणी 90 साल पूरा करण चो अपन प्रसारण का, आवा ये ही बात पर एक गीत सुन दिए जा।
2: बिल्कुल, कुमाऊनी गीत सुन दो स्वर्च आशा पांडे को।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।
3: सुंदर आपन सुन रहे बार रहे बार से पहल सुन आशा पांडे को गयू सुंदर सी न्योली गीत।
4: और आप फिर एक दा बदे दीना को सिलसिला टूटने चाहिए भाई। 90 साल हो गए आकाशवाणी का प्रसारण की यात्रा थे और आज हमन ने यही उपलक्ष्य में एक सुंदर सी दौड़ को आयोजन। दौड़ तो क्या है, हिटून बोल देन, अंग्रेजी में बोल देन वाकाथॉन, वो एक आयोजन कार्य है। और आकाशवाणी, दूरदर्शन, हमारे समाचार अनुभाग और तमाम जितना भी लोग आकाशवाणी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, सभियों ने आकाशवाणी का ये केंद्र बड़े जो कि रसपना पोल पर सभी जनता छन अब तो है ना खारी हुए भगत हम तक तो यक बटे की यार आओ अफार नेहर कॉलोनी तो छोड़ जाए कि यार फिर अफार फबारा चौक रिंग रांगी की वापस आ गयों। लोग देखना चाहे क्या वह आयु तई तो बैनर छा हाथों में और सभी लोग एक अलग से जो सुबह सुबह दौड़न वाली नहीं हूं क्या बोल देना उखड़ टी शर्ट भाई 90 साल आकाशवाणी का और ये तो हम एक उत्सव का तौर पर मनाना छुआ।
3: और आज सबसे बढ़िया बात पता क्या ने जी क्या लग कि पूर्व प्रसार भारती परिवार जब कट हुई छा ना और बाटो पर हसदा खेलदा समझ लिया जन गांव में जान छा क्या दिन कौती कौती गए जन जाना छा रैली में। और वे रैली में जब हम आए छो तो सभी हम तो सब घुरघुरी देखना चाहे पढ़ना चाहिए उन टी शर्टों पर क्या लिखूं

0: तो यो एक जागरूकता रैली जन मैं तो बोलो ये रैली साल भर में एक बार भी निकल जा तो आनंद है जा, लेकिन रेडियो के प्रति एक जागरूकता फैलाना क्या सुंदर माध्यम चाहिए।
1: बिल्कुल साहब, जखम फवारा चौक छे ना वखम
0: जी
1: बहुत सुंदर एक डाल छे ना, वो एक मोड़ एक श्रोता हम तमिल
0: अच्छा
1: और ये जो हमारा रेडियो को रिश्ता
0: जी
1: जेता
0: जी
1: हम बताना चाहना आपते,
0: जी
1: किले कि बहुत सारा लोग इना छे ना कि साहब रेडियो का माध्यम से वो सिर्फ आवाज से परिचित रहते हैं,
0: जी
1: देखियो तो छे ना कि बिना ध्यान कंचो शांति भी जो लखन छे है
0: जी
1: ना। लेकिन आज जब दौड़ना चाहिए और जाना चाहे उपरण हिटी की तो मिजा के लगे हम अपन रेडियो बटे की लगातार प्रसारित भी करना चाहो, यही चीज था
0: जी
1: सोशल मीडिया पर भी हमन बोलियो चाहे कि आज सुबह 8:30 बजे हमारे जो वॉकाथॉन चे वो दौड़ला हम जोला और 1 बटे 1 तक जोला सब बताना चाहे हम। तो देखा श्रोता कितना जागरूक छे, उन बोली यार आज देखदा कि ये हुमायूं भीड़ में बिना ध्यान को होल बल है ना। तो बड़ो सुंदर लगी कि एक आदमी में यार मी से ही पूछ दे, ये भी इत्तेफाक की बात है
0: बताओ कंदा बड़ी
1: ना,
0: बात है।
1: कि हो रही तो नहीं
0: अच्छा
1: पूछो।
0: तभी हुए आज आप ज्यादा खुश
1: अरे कन्न श्रोता नहीं छे तो हम कहते ही नहीं छे वहां कुछ भी। तो मी में पूछना कि भैया आकाशवाणी वाले छे बल मिल बल, हाँ जी तो आप बताओ बल कि
0: ज्ञानी जी का बोला है
1: हाँ बल बिना ध्यान भी छे चाहिए मा मिल बल, हाँ छे मिल बल पछाना तो जो बल देखे आए तो नहीं छे तभी तो पूछना मिल बल
0: अच्छा।
1: टोपला उतार मिल बल मी छो
0: और ये नहीं हमारे आपस में भी है, जो हमारा जो स्टाफ अगर है ना सभी
1: हाँ
0: ये आपस में कोई पछाड़ना नहीं चाहे,
1: हाँ
0: कि काला चश्मा लगाया चाहे कहेगा टुपुल धर टुपुल सभी उधर चाहे, और
1: जी
0: ये एक जन सब उड़ रहे छे तो आवाज से ही आज सभी तो पछाड़ हम एक दूसरे से।
1: बिल्कुल। तो अब इन करता है यही यात्रा में शामिल करता फिर 90 साल का ये सफर था जो कि बहुत ही शानदार जो
2: 8 जून 2026 अपनी आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने वाला छन। यूं 90 सालों में एक कार्यक्रम 47 साल बटे की लोकप्रियता को सबसे ऐंच पायदान पर रहे और वो च उत्तराखंड के लोक भाषाओं को कार्यक्रम ग्राम जगत। 1978 में आकाशवाणी नजीबाबाद से शुरू हुई की यु कार्यक्रम आकाशवाणी पौड़ी अल्मोड़ा और देहरादून पहुंच गए। 60-70 का दशक में गढ़वाली कुमाऊनी संगीत दिल्ली और लखनऊ केंद्र बटे की उत्तराण कार्यक्रम का अंतर्गत प्रसारित होन शुरू हो गया छा।

0: 47 साल बटेकी ग्राम जगत कार्यक्रम पूरी तौर पर बोली भाषा गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी मा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित करी की आज भी श्रोताओं का बीच पहली पसंद बन्यो छे।
1: खासकर आकाशवाणी का जो कार्यक्रम छन जो कि रीजनल कार्यक्रम छन जो हमारे लोग बहुत ज्यादा संपर्क में छे, प्रासंगिकता और साथ में एक ही लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। या तो आपके ग्रामीण जगत कार्यक्रम से मैं ये बता दूं कि इन लोगों से गढ़वाली बोल सिखा देने सबसे।
2: रेडियो की आज भी वही महत्व थे जो आज से 3 दशक पहले, बिल्कुल जो दूरस्थ क्षेत्र से ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र वहाँ आज भी रेडियो लोग वही उत्सुकता से सुनना जो पहले थे, क्योंकि जनसंपर्क को साधन आज भी रेडियो था, रेडियो की महत्ता आज भी वही है, चाहे वो जो समाचारों का क्षेत्र में हो, चाहे वो जानकारी का क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति संरक्षण का क्षेत्र में हो। और आकाशवाणी देहरादून तो ये मामले में बहुत अच्छा प्रयास करी।
0: कुछ कितना लोक कलाकारों ते आकाशवाणी ना पहाड़ का जनमानस तक पहुँचे की उते प्रसिद्धि दिले।
3: जो भयों की होने होली वो कठराला, अनमिल भयों को लोग ठटाला।
0: जीत सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, गोपाल बाबू गोस्वामी, हीरा सिंह राणा, महेश तिवाड़ी, कपोत्री देवी, प्रीतम भरतवाण जना कतना ही नौछन जौन आकाशवाणी का माध्यम से अपनी पहचान बने।

0: गढ़वाली कुमाऊनी चौंसारी बोली भाषा का दगड़ ही लोक संस्कृति, लोक संगीत और लोक जीवन पर आधारित कार्यक्रम ग्राम जगत ना सिर्फ स्टूडियो में ही कार्यक्रमों को निर्माण नहीं करी, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र का सुदूरवर्ती गांव-गांव पहुंची की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम ग्राम जगत की सबसे बड़ी ताकत बनी।
1: स्कूल नांतनो आज किलकारी कार्यक्रम प्रस्तुत करनी च हाई स्कूल सुनाऊ जो कि थराली ब्लॉक के एक स्कूल च।

0: गाड़ी सुविधा पहले हॉस्पिटल तो छह लेकिन दीदी सुविधा हम तो बाहर ही जान पड़े और जो सुविधा भी होता धीरे धीरे लेकिन क्या करे पलायन ज्यादा हो गया गाँव में लोग भी कम छे यहाँ से सुविधा जागरूकता बिल्कुल कम हो गई।
1: आकाशवाणी का 90 साल और ग्राम जगत कार्यक्रम का 47 साल से ज्यादा कुछ समय पहाड़ का गोंगों की छुई लगांदू हुंगरा पुरांदू ग्राम जगत इन्हीं एथर बढ़नु छ। श्रोता भाई बंधु अब कार्यक्रम का आखिर में जौन सारा छोड़ चलना
2: और सुन दो धर्म सिंह राणा का स्वर मा यो सुंदर सी जौन सारी गीत और गीत से पहल रेबर।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: सुन्दरो अपन रेबार सुन, रेबार बाद धर्म सिंह राणा का स्वर मा यू सुंदर सी जौनसारी लोकगीत सुन।
1: आबिन जी क्या जी होर सुनना अपन कथी नहीं जान के लेके 7 बजे तक कार्यक्रम छु और आप अपन ये बोला कि भाई कार्यक्रम का बाबत आप राय सदन ही हम तो चढ़नी छ तो अब बगत छ उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार सुनना।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का लोकार्पण किया। कहा, उच्च हिमालय क्षेत्र में अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ में कैलाश उत्सव का शुभारंभ करने के साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर बागेश्वर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र के देहरादून में वॉकथॉन का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ धाम में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का लोकार्पण किया। यह अस्पताल स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस उच्च हिमालय क्षेत्र में इस अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष प्राथमिकता दे रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
4: ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जैसे संस्थान हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति

0: बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के विकल्प रही संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ स्थित लक्ष्मण सिंह महर राजकीय महाविद्यालय में कैलाश उत्सव का शुभारंभ करने के साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की।
2: आज महाविद्यालय में शानदार कैलाश उत्सव किया गया है छात्रों और छात्राओं के बीच में, और अनेक क्षेत्रों में आज हमारे इस सीमांत क्षेत्र से छात्र छात्राएं आगे बढ़ रहे हैं, अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उसको हमारे नौजवान आज अपना रहे हैं और उनको जड़ों से जुड़ रहे हैं। महाविद्यालय हमारा काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ जरूरी जो आगे काम होने हैं उन कामों को लेकर भी मैंने वहाँ पर ऑडिटोरियम बनाना हो, हॉल बनाना हो या अन्य संकाय के कक्षों का निर्माण करना हो या पाठ्यक्रम ठीक प्रकार से चले उसके लिए जो जरूरी चीजें उसकी मैंने वहां पर आज घोषणा भी की है।
1: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज अल्मोड़ा जिले के हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोमेश्वर में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र छात्राओं की सूची में छात्राओं की बढ़ती संख्या शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की निरंतर प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज बागेश्वर जिला कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आकांक्षा कौंडे ने बागेश्वर रेडक्रॉस द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं सेवकों की निस्वार्थ सेवा भावना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4: आज विश्व रेडक्रॉस दिवस में हम लोगों ने सम्मान समारोह जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। जो हमारी बागेश्वर जिले की सोसाइटी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और कोई भी चाहे आपदा हो या कोई भी ऐसे समस्या हो उसमें हमारे रेडक्रॉस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और कभी कभी देखा गया दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। चाहे इसके पहले हमारी पौशारी की आपदा हो या इसके अलावा और भी कोई आपदा आई हो, तो उसमें अच्छा काम किया है जिन लोगों ने उनको हमने सम्मान किया है। कुछ हमारे दिव्यांगजन है उनको भी हम लोगों ने सम्मान किया है। कुछ जो हमारी महिलाएं जो इस सोसाइटी से जुड़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको भी सम्मान किया गया है। और आशा है इसी एक्टिविज्म के साथ, इसी तरह सक्रियता के साथ हमारी जो सोसाइटी है वो आगे भी काम करती रहे।
1: रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि संस्था के स्वयंसेवी लगातार मानव पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, और भविष्य में भी वह यह सेवा कार्य इसी तरह जारी रहेगा।
5: आज हमारे द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो समाज सेवा के लिए लगातार अच्छा कार्य जिनके द्वारा किया गया उनको आज सम्मानित किया गया, और जिलाधिकारी महोदया ने भी बागेश्वर रेडक्रॉस की काफी सराहना की और काफी हमारे कार्यो को सराहा। और जब अधिकारी इस प्रकार से अपना अमूल्य समय देते हैं और कार्यो को सराहते हैं तो अवश्य हमारे सदस्यों और कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन होगा और वह दुगनी गति से और दुगनी मेहनत से काम करेंगे।
1: आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र देहरादून से नेहरू कॉलोनी तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। चंपावत के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में आज जिला स्तरीय कौशलम प्रदर्शनी आयोजित की गई। जिले के चारों विकास खंडों के चयनित 22 विद्यालयों में से 17 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने नवाचारी मॉडल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ कमल सिंह गहतोड़ी ने बताया कि छात्रों में

0: उद्यमशीलता मानसिकता को विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रदर्शनी में उद्योग विभाग, नगरपालिका और विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया।
1: विगत 4 वर्ष से हमारे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल है, जो विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों में व्यावसायिक दृष्टिकोण पैदा कर रहा है और उनमें उद्यमशील मानसिकता का विकास कर रहा है। प्रतिवर्ष हम जनपद में उनके बनाए हुए उनके आइडियाज को डेवलप करते हुए उनका एक दर्शनी यहाँ पर आयोजित करते हैं, जिसको कौशलम एक्सपो नाम देते हैं। उसमें बच्चे अपने विभिन्न व्यावसायिक आइडियाज को प्रोटोटाइप के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और मार्केट से कैसे उसको संबद्ध किया जाए। तो ऐसे में हमने बच्चों को व्यावसायिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उद्यमशील मानसिकता के विकास के लिए इस मुहिम में जोड़ा है।
0: राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ की छात्रा स्नेहा बोहरा ने बताया कि उन्होंने गौमय प्रतिमय मॉडल का प्रस्तुतीकरण किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक वस्तुओं को पर्यावरण से जोड़कर एक स्टार्टअप का निर्माण करना है।
2: हमने कौसलम कार्य के अंतर्गत अपने प्राकृतिक संसाधन गौमय प्रतिमा यानी गाय के गोबर, मिट्टी, इमली बीज का पाउडर और इसके प्रीमिक्स को मिलाकर पहले हमने ट्रायल के रूप में एक दिया बनाया था जो बहुत अच्छा रहा। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उद्यमशील बनाने के लिए हमने मूर्तियां बनाई और कुछ हस्तनिर्मित चीजें भी बनाई थी। और इसका उद्देश्य हमारा यह रहा कि हम कैसे अपने पारंपरिक चीजों कैसे हम इसमें हम अपने रोजगार को कैसे जोड़ रहे हैं, इससे हम लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं अपने साथ और इससे हम कैसे लाभ कमा रहे हैं।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का लोकार्पण किया। कहा, उच्च हिमालय क्षेत्र में अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ में कैलाश उत्सव का शुभारंभ करने के साथ ही 165 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर बागेश्वर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र में वॉकथॉन का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों का बाद स्वागत छ आप सभियों को कार्यक्रम ग्राम जगत में, जेता आप सुनना छे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी। मैं छो आपे दगड़िया शांति पिंजोला। सुनदरो, हर साल मई महीना में विश्व रेडक्रॉस दिवस मने जान। आज एक दिन ये दिवस मानवता, दया, सेवा और निस्वार्थ सहयोग की वी भावना ते समर्पित च, जैन आपदा, युद्ध, महामारी और बड़ा बड़ा संकटों में हजारों लाखों लोगों ते जीवन दान दे। यु दिन रेडक्रॉस संस्था का संस्थापक हेनरी ड्यूनोल्ड की जयंती पर मने जान, किले कि उन मानव पीड़ा ता देखी कि निस्वार्थ मानव सेवा कर छे और सेवा की प्रेरणा भी दे छे। रेडक्रॉस को मूल उद्देश्य बिना कह भेदभाव का मानव सेवा करूं छे। जाति, धर्म, भाषा, देश, राजनीति या आर्थिक स्थिति से उब उठे कि सिर्फ पीड़ित मनखियों की मदद करूं छे। आज के समय में यु गंभीर सामाजिक चेतना को विषय बन गए। आज का तकनीकी युग में भी युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी, मानसिक तनाव, विस्थापन और संवेदनहीनता बढ़नी चाहिए, इन में रेडक्रॉस जन संस्था एक उम्मीद की किरण छ। आज को यु दिन हम त याद दिलांद कि संसार में सबसे बड़ो धर्म पीड़ित मनखियों की मदद करूं छ। जब तलक मनखियों में दया, सेवा और सहयोग की भावना जीवंदी राली, तब तलक आशा भी बनी राली। रेडक्रॉस सोसाइटी इलाजक दगड़ दगड़ सभी तक जागरूक भी करद और स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रति हम सभी तक सचेत करद। तई छे आज एक छुई और अब खारी छुई वेगेन। अब कार्यक्रम था एथर सरकंदों और सुन दो एक सुंदर सी पुराण गीत।

0: सुंदरों आपन सुनियो सुंदर सी पुरानो गढ़वाली लोकगीत और अब मठमोट के भगत हुणु जो समाचारों को तो लिया घड़ेक में सुना गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी कीर्ति जखमोला। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल को लोकार्पण काई। कृषि मंत्री गणेश जोशी बोली कि असम का चाय उद्योगों का अनुभव और आधुनिक तकनीकों को अध्ययन करी उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन थे नए दिशा देने को कार्य करे जालू। केदारनाथ धाम यात्रा का दौरान सुरक्षित स्वच्छता व्यवस्था थे लेके रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त कचरा फैलान वालों का खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे जाली। और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ का उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकेथॉन को आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ धाम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल को लोकार्पण काई। यो अस्पताल स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित करे जालू। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला ये उच्च हिमालय क्षेत्र में यो अस्पतालों को संचालन स्वास्थ्य सेवाओं थे नए मजबूती प्रदान करलू। उन बोली कि यो अस्पताल यात्रा का दौरान श्रद्धालुओं का दगड़ा दगड़ी स्थानीय नागरिकों खुन भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआलू। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम यात्रा थे सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने का वास्ता स्वास्थ्य सेवाओं थे विशेष प्राथमिकता देनी च ताकि श्रद्धालुओं थे कै भी प्रकार की असुविधा को सामना नहीं करन पाड़ू।
2: ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जैसे संस्थान हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

0: जाने के विकल्प रही संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।
1: कृषि मंत्री गणेश जोशी आजकल असम दौरे पर छी। मूल असम का बरपाथार स्थित चाय बागानों को दौरा करी वख की उत्पादन क्षमता, प्रसंस्करण प्रणाली और विपणन व्यवस्था को विस्तार से निरीक्षण काई। मूल स्थानीय चाय उत्पादकों, निर्यातकों और विशेषज्ञों का दगड़ी बैठक करी उत्तराखंड में चाय उत्पादन थे बढ़ावा दीण, गुणवत्ता सुधरण और विपणन व्यवस्था थे मजबूत बनाने का संबंध में सुझाव प्राप्त करी। कृषि मंत्री ने बोली कि उत्तराखंड में चाय उत्पादन की अपार संभावना छी और राज्य की जलवायु उच्च गुणवत्ता वाली चाय खूनी अनुकूल छी। विश्व रेड क्रॉस दिवस का अवसर पर आज बागेश्वर जिला कार्यालय में सम्मान समारोह को आयोजन करी गई। ये दौरान समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दीन वाला लोगों थे सम्मानित करी गई। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बागेश्वर रेडक्रॉस द्वारा करे जाने वाला सेवा कार्य की सराहना कर दफे बोली कि स्वयं सेवियों की निस्वार्थ सेवा भावना समाज में सकारात्मक बदलाव ल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभांदी।
2: आज विश्व रेड क्रॉस दिवस में हम लोगों ने सम्मान समारोह जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। जो हमारी बागेश्वर जिले की सोसाइटी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और कोई भी चाहे आपदा हो या कोई भी ऐसे समस्या हो उसमें हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और कभी कभी देखा गया दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। चाहे इसके पहले हमारी पौशारी की आपदा हो या इसके अलावा और भी कोई आपदा आई हो तो उसमें अच्छा काम किया है जिन लोगों ने उनको हमने सम्मान किया है। कुछ हमारे दिव्यांगजन है उनको भी हम लोगों ने सम्मान किया है। कुछ जो हमारी महिलाएं जो इस सोसाइटी से जुड़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको भी सम्मान किया गया है और आशा है इसी एक्टिविज्म के साथ इसी तरह सक्रियता के साथ हमारी जो सोसाइटी है वो आगे भी काम करती रहे।
1: रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवारण बोली कि संस्था का स्वयंसेवी लगातार मानव पीड़ा थे कम करने का उद्देश्य से समर्पित भाव से कार्य करना छीन और भविष्य में भी यो सेवा कार्य इन्नी जारी रालू।
3: आज हमारे द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो समाज सेवा के लिए लगातार अच्छा कार्य जिनके द्वारा किया गया उनको आज सम्मानित किया गया और जिलाधिकारी महोदय ने भी बागेश्वर रेड क्रॉस की काफी सराहना की और काफी हमारे कार्यों को सराहा। और जब अधिकारी इस प्रकार से अपना अमूल्य समय देते हैं और कार्यों को सराहते हैं तो अवश्य हमारे सदस्यों और कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन होगा और वो दुगनी गति से और दुगनी मेहनत से काम करेंगे।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ धाम यात्रा का दौरान स्वच्छता व्यवस्था थे लेके सख्ती बढ़ आयल। जिलाधिकारी विशाल मिश्र ने बोली कि यात्रा मार्ग नदी और पहाड़ियों में कचरा करण वालों का खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जाली। प्रशासन का अनुसार यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने का वास्ता 400 से ज्यादा सफाई कर्मी सीतापुर से केदारनाथ धाम थे लगातार सफाई अभियान चलाना छीन। अकेला गौरीकुंड क्षेत्र में 110 सफाई कर्मियों की तैनाती कहीं च। सोनप्रयाग में प्लास्टिक कचरा थे कॉम्पैक्ट करना खूनी विशेष मशीन लगाई छी। प्रशासनल यात्रा मार्ग में 600 से ज्यादा डस्टबिन लगाए छी और पर्यावरण मित्रों की तैनाती करी नियमित सफाई और कचरा संग्रहण की व्यवस्था कई च। ऊखीमठ का उप जिलाधिकारी अनिल रावतल श्रद्धालुओं से प्लास्टिक और अन्य कचरा निर्धारित कूड़ेदान में ही डलने की अपील कई च।
5: सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 400 के आसपास कार्मिकों को स्वच्छता और सफाई के लिए लगाया गया है जिनमें से मात्र गौरीकुंड में ही 110 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही शौचालय यात्रा मार्ग की सफाई और अन्य कार्यों का संपादन किया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम पधारने वाले सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने कूड़े का समुचित निस्तारण करने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और जिला प्रशासन को स्वच्छता और सफाई के दृष्टिगत अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
1: वखी केदारनाथ यात्रा पर आण वाला श्रद्धालुओं की सफाई व्यवस्था थे लेके जिला प्रशासन की सराहना कनी छिन।
6: यहाँ पर जो टॉयलेट्स की सुविधा है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सफाई हो रही है और सब काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सफाई मिलेगा पर बहुत अच्छा है। जय श्री कृष्ण।
1: आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ का उपलक्ष्य में आज सुबह आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून से नेहरू कॉलोनी थे वॉकेथॉन को आयोजन करी गई। ये दौरान आकाशवाणी

0: योजना का तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला मेधावी छात्र छात्राओं थे प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित कराई। उन्होंने बोली कि मेधावी छात्र छात्राओं की सूची में छात्राओं की बढ़ती संख्या शिक्षा का क्षेत्र में बेटियों की निरंतर प्रगति को प्रमाण च। रुद्रप्रयाग जिला का अगस्तमुनि क्षेत्र में एक दा फिर बाल विवाह को मामला समीण आण पर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की तत्परता से एक नाबालिग बालिका को भविष्य सुरक्षित करेगी आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर बाल विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम आज सवेर डांगी पठालीधार गांव पहुंची, जब एक नाबालिग बालिका को सगय हूण वल छाई। अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल को लोकार्पण कराई। कृषि मंत्री गणेश जोशी बोली कि असम का चाय उद्योगों का अनुभव और आधुनिक तकनीकों को अध्ययन करी उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन थे नए दिशा देने को कार्य करे जालू। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था थे लेके रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त, कचरा फैलाने वालों का खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे जाली और आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ का उपलक्ष में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वैकेतन को आयोजन। ये का दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
1: और ये की दगड़ हमारे आज को ग्राम जगत कार्यक्रम यख हमें संपन्न होंद। भोल नए अंक लेके आपकी सेवा में फिर उपस्थित होला। तब तक अक वास्ता पर दगड़िया शांति बिंजोलता दया अनुमति। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत के बाद अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार श्रोताओं, 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, और मैं हूं आपका साथी मधुसूदन नौटियाल। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जिसकी मिठास और सुगंध हर किसी को आकर्षित करती है। हमारे किसान साथी झट से समझ गए होंगे कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लीची के बागों में सामयिक कार्य की। जी हाँ किसान साथियों, लीची एक महत्वपूर्ण बागवानी फसल है और उत्तराखंड, विशेषकर देहरादून और तराई क्षेत्रों में इसकी खेती किसानों की आय को अच्छा बनाती है। लेकिन अच्छी गुणवत्ता और अधिक उत्पादन के लिए समय समय पर बागों की देखभाल और आवश्यक कार्य बहुत जरूरी हो जाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सफाई और निराई गुड़ाई की। लीची के बागों में खरपतवारों को समय समय पर हटाना चाहिए। खरपतवार पौधों से पोषक तत्व और नमी छीन लेते हैं, इसलिए पेड़ों के आसपास की भूमि को साफ और भुरभुरी बनाए रखना जरूरी है। किसान साथियों, अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। लीची के पेड़ों को उचित नमी की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में नियमित सिंचाई करना चाहिए, विशेषकर फल बनने के समय। लेकिन ध्यान रहे कि बाग में पानी का जमाव न हो, क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, खाद और उर्वरक प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय समय पर गोबर की सड़ी खाद और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, इससे पेड़ों की वृद्धि अच्छी होती है और फल की गुणवत्ता बेहतर होती है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद देना अधिक लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं किसान साथियों छटाई और सूखी शाखाओं को हटाने की। पेड़ों की सूखी और रोगग्रस्त जो आपस में शाखाएं उलझ जाती हैं, उन्हें काट देना चाहिए। इससे पेड़ों में हवा और धूप का उचित संचार होता है और

रोगों का खतरा कम हो जाता है। यहाँ रोगों की बात हो ही रही है तो लीची के बागों में कीट और रोग नियंत्रण भी जरूरी है। फल छेदक कीट, तना छेदक और पत्तियों के रोगों पर समय समय पर निगरानी रखें। जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उचित दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, फल लगने के समय पेड़ों को तेज हवा और अधिक गर्मी से बचाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए मल्चिंग तकनीक अपनाई जा सकती है जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों को गर्मी से राहत मिलती है। साथ ही फल तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। जब फल पूरी तरह लाल और आकर्षक रंग के हो जाएं, तभी उनकी तुड़ाई करें। जल्दी तोड़ने से मिठास कम हो सकती है जबकि देर करने पर फल खराब भी हो सकते हैं। तुड़ाई के बाद फलों की सावधानीपूर्वक पैकिंग और भंडारण भी बेहद जरूरी है ताकि बाजार तक पहुंचने में नुकसान कम हो और किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, लीची के बागों में मधुमक्खियों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। लीची में परागण की प्रक्रिया मधुमक्खियों के माध्यम से बेहतर होती है जिससे फल बनाने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए बागों के आसपास मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना लाभकारी माना जाता है। इससे न केवल लीची का उत्पादन बेहतर होता है बल्कि किसानों को शहद उत्पादन से अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सकती है। किसान साथियों, मौसम में लगातार बदलाव को देखते हुए बागों की नियमित निगरानी करना जरूरी है। तेज गर्मी, ओलावृष्टि या असमय बारिश जैसी परिस्थितियां लीची की फसल को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में समय रहते उचित प्रबंधन अपनाना चाहिए। कृषि विभाग और बागवानी विशेषज्ञों से समय समय पर सलाह लेते रहें। किसान नई तकनीकों और रोग नियंत्रण उपायों की जानकारी भी इनसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे बागों की उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि संभव है। किसान साथियों, समय हो चला है एक संगीतमय विराम का। आइए आपको सुनवाते हैं ये अवधि लोकगीत।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आया कि
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
4: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
4: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना

0: लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
1: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अब वक्त है आज की भेंट वार्ता का। आज की भेंट वार्ता का विषय है सहकारिता से ग्रामीण विकास। कृष्णानंद डिमरी से बातचीत कर रही हैं वीना शर्मा।
2: किसान साथियों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं सेवा निवृत्त वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णानंद डिमरी। हमसे बातचीत करेंगे सहकारिता से ग्रामीण विकास के बारे में। तो कृष्णानंद डिमरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले तो कृष्णानंद जी, आप कुछ सहकारिता से क्या तात्पर्य है इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, ताकि हमारे किसान साथी जान सकें कि इससे क्या समझ में आता है।
3: नमस्कार श्रोताओं, सहकारिता शब्द में ही इसकी व्यापकता निहित है। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में लोग अपना और सामाजिक कार्यों का निर्वहन सहकारिता के माध्यम से करते रहे हैं। सहकारिता का अर्थ है मिलकर चलना, मिलकर बढ़ना। आज सहकारिता की बहुत आवश्यकता है, विशेषकर हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण अंचलों, जहां पर कृषक जोत बहुत कम है और आय के साधन भी सीमित हैं। जीविकोपार्जन के लिए आज हमें सहकारिता के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है।
2: तो सहकारिता में आप लोग क्या क्या कार्य करते हैं जिससे कि ग्रामीण विकास होता है?
3: सहकारिता जो शब्द है उसके अनुसार हमारे उत्तराखंड में 2003 में सहकारिता अधिनियम लागू हुआ
2: जी,
3: जिसमें एक स्वायत्त सहकारिता भी है
2: जी,
3: जिसमें ग्रामीण लोग हैं वो आपस में मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं
2: जी,
3: और स्वेच्छा से अपना कार्य शुरू करते हैं, उसका संचालन करते हैं
2: जी।
3: इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। एक सहकारिता अधिनियम जो 2003 है उसके अनुसार जो हमारी न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां होती हैं
2: जी,
3: जिला स्तर पर केंद्रीय समितियां होती हैं, या जिला सहकारी बैंक बैठते हैं, जिला भेषज सहकारी समितियां, जिला सहकारी विकास संघ है, ऐसे ही प्रदेश स्तर प्रादेशिक सहकारी समिति है, प्रादेशिक सहकारी बैंक है, इनके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको अनेक प्रकार से सहायता मिलती है। वो अपना विकास, अपना कार्य, अपनी योजना बना सकते हैं, करते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर जो समितियां होती हैं उसमें लोग समिति के माध्यम से कृषि कार्य के लिए खाद, बीज, ऋण अपने सहकारी समिति से लेते हैं
2: जी,
3: और अपनी उपज वहां रखते हैं
2: जी,
3: जिससे वो बाजार में अच्छे दामों पर दी जा सके
2: जी। तो सहकारिता समिति ही जो होती है वो किसानों का जो भी फसल उत्पादन होता है उसका जो एक रेट होता है उसको निर्धारित सहकारिता समिति ही करती है?
3: नहीं, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है
2: जी,
3: क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव रहता है
2: जी,
3: किसानों के उपज कम दाम बन जाए
2: जी,
3: ऐसी स्थिति में जो सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य होता है फसलों का
2: जी,
3: फलों का
2: जी,
3: या अन्य किसी वस्तुओं का भी
2: जी,
3: उनका भंडारण खरीद करके भंडारण रखती है
2: हाँ,
3: और जब बाजार में अच्छे रेट होते हैं उनको बेचते हैं, उसका लाभ किसानों को भी होता है
2: हाँ जी,
3: और जो जिस समिति में वो रखते हैं उस समिति का जो लाभ होता है वो लाभ भी उन कृषकों को लाभांश के रूप में वितरित होता है। इसके अलावा
2: हाँ जी,
3: जो सहकारी समितियां न्याय पंचायत पर हैं वो ऋण भी प्रदान करती है समितियों, क्योंकि वो जो सदस्य हैं वो उनके हिस्सेदार भी हैं और सहभागिता भी करते हैं
2: जी,
3: उसका संचालन भी करते हैं। तो इन ऋण समितियों में जिनको प्रारंभिक ऋण समिति, अब उनका नाम हो गया एमपैक्स, बहुउद्देशीय सहकारी समिति।
2: अच्छा,
3: ये समितियां अनेक कार्य कर रही हैं, जैसे खेती के अलावा, ऋण वितरण के अलावा आपको अन्य कार्यों के लिए भी, जैसे दुधारू पशु
2: हाँ जी,
3: मुर्गी पालन
2: हाँ जी,
3: भेड़ पालन
2: जी,
3: और जैविक खेती, हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प के लिए
2: हाँ जी,
3: तो अनेक छोटे छोटे उद्योगों के लिए वो ऋण देते हैं कम ब्याज दर पे
2: हाँ,
3: और उनके उपज को भंडारित करके बाजार प्रदान करते हैं
2: जी।
3: इसके अलावा समिति का जो बचत

0: होती है किसानों की जो बचत होती है,
1: जी
0: उस बचत को
1: जी
0: वो उनका एक मिनी बैंक होता है जिसको आप ग्रामीण बचत केंद्र कहते हैं,
1: जी
0: पहले उन्हें मिनी बैंक कहते थे,
1: हाँ
0: अब
1: जी
0: उनमें होते ग्रामीण बचत केंद्र,
1: हाँ जी
0: उनकी जो जमा पूंजी है
1: जी
0: उसमें रख करके
1: हाँ
0: उन पे ब्याज देते हैं। तो इस तरह से उन सहकारी समितियों से
1: हाँ जी
0: उस ग्रामीण लोगों को दो तरह के लाभ होते हैं, एक
1: जी
0: तो उनको ऋण मिलता
1: ऋण
0: है,
1: मिलता है
0: दूसरी
1: जी
0: तरफ से उनकी जो उपज है उसका भंडारण होता है, और
1: जी
0: तीसरा जो उनका जो बचत होती है, जो आय होती है,
1: जी
0: उसको उस बचत केंद्र में, ग्रामीण बचत केंद्र में जमा करके उनको ब्याज भी मिलता है। तो इस तरह से लोगों को एक तो आय का साधन होता है,
1: जी
0: दूसरी बात जो स्वायत्त सहकारिता है, जो
1: जी
0: दूसरी हम सहकार स्वायत्त सहकारिता बात करते हैं,
1: जी
0: उसमें सरकार का नियंत्रण तो नहीं होता है,
1: जी
0: लेकिन वो समितियां
1: हाँ जी
0: 7 से अधिक लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं,
1: जी
0: उसका पंजीकरण करते हैं
1: जी
0: सहकारिता विभाग में,
1: जी
0: और उसके वाला अपना व्यवसाय चलाते हैं, जैसे
1: जी
0: पर्यटन में,
1: हाँ
0: पर्यटन के क्षेत्र के लिए,
1: जी
0: जैसे कि अपने श्रम संविदा सहकारिता, जो छोटे छोटे ठेके लेकर के
1: हाँ
0: और
1: जी
0: जो श्रमिक हैं वो काम करते हैं, क्योंकि जोत कम है तो
1: जी
0: उनको आय का साधन होता है।
1: जैसे गांव में आजकल क्या है कि जैसे शहर के जो लोग हैं वो गांव में घूमने आते हैं, जैसे
0: होम
1: आपने बोला
0: स्टे,
1: कि आप रुद्रप्रयाग से हैं, तो रुद्रप्रयाग एक जो है टूरिस्ट प्लेस भी है, तो
0: धार्मिक और
1: वहाँ
0: टूरिस्ट।
1: पे हाँ जी धार्मिक भी है, तो लोग वहाँ घूमने आते हैं, तो आजकल एक और मतलब रोजगार का
0: होम
1: साधन
0: स्टे,
1: बन गया है कि
0: होम
1: लोग
0: स्टे,
1: अपने घरों को होम
0: होम
1: स्टे
0: स्टे,
1: बना देते हैं,
0: जी
1: तो होम स्टे से उनको एक इनकम भी आती है, तो क्या सहकारिता समिति इसमें भी मदद करती है?
0: बिल्कुल ऐसा है कि ये लोग क्या कर सहकारिता के माध्यम से गांव में आसपास के घरों में सभी
1: जी
0: लोग
1: जी
0: पर्यटन को रखते हैं,
1: हाँ जी
0: उनको अपना हाथ का बनाया भोजन खिलाते हैं,
1: जी
0: वहाँ के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको उनको बनाते हैं, और उससे लोग आकर्षित होते हैं, पर्यटकों को उससे शांति मिलती है, एकांत मिलता है, और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो खाद्यान्न हैं उनका उपयोग भी करते हैं, उनका
1: जी
0: लाभ भी लेते हैं, और
1: जी
0: हमारे जो घर में सब परिवार में काम करने वाले उनको
1: जी
0: आय का साधन भी मिलता है, उनको
1: जी
0: रोजगार भी मिलता है।
1: जी
0: तो बाहर जा करके लोगों को होम स्टे, जिसको कहते हैं हम होम स्टे के द्वारा, वो दो लाभ कर रहे हैं, एक तो उनका घर भी सुरक्षित रह रहा, सब
1: जी
0: साथ रह रहे, परिवार साथ में रह रहा, और
1: जी
0: सबको जीविकोपार्जन का साधन भी मिल रहा है, आय
1: हाँ
0: तो बढ़ी रही है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: सहकारिता के माध्यम से, सहकारी बैंकों के माध्यम से
1: हाँ जी
0: उनको ऋण दिया जाता है, अगर उन्हें ऋण की आवश्यकता है
1: जी
0: तो ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से, क्योंकि ये
1: जी
0: मध्यकाल ऋण है, बड़ा ऋण होता है, तो
1: जी
0: सहकारी समिति तो कम स्तर की हुए,
1: जी
0: लेकिन उनकी जो केंद्रीय समिति जिनको जिला सहकारी बैंक कहते हैं,
1: जी
0: उनके माध्यम से उनको ऋण मुहैया कराया जाता
1: जी
0: है और वो उनसे लाभ ले सकते हैं।
1: तो कृष्णानंद जी, जैसे आपने बोला कि जो सहकारिता समिति होती है वो किसी भी गवर्नमेंट की योजना से जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन क्या सहकारिता समिति गवर्नमेंट की योजनाओं से कोई लाभ जो हम अपने ग्रामीण लोगों को दे सकते हैं, अपने किसानों तक पहुंचा सकते हैं, क्या ऐसा भी कार्य करती है?
0: जो सहकारी समितियां, जो प्रारंभिक ऋण समितियां हैं,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: सरकार के नियंत्रण में ही काम करती हैं,
1: जी
0: उनका पर्यवेक्षण होता है, नियंत्रण भले उनकी स्वतंत्र बॉडी होती है
1: जी
0: और उसको चलाते भी हैं जो
1: हाँ
0: सहकारी समिति के पदाधिकारी चलाते हैं,
1: जी
0: लेकिन उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है,
1: नियंत्रण रहता
0: पर्यवेक्षण
1: है
0: रहता है, और
1: जी
0: सरकार उसमें हिस्सा भी रहता है उसका, सरकार
1: ओके
0: एक सदस्य सरकार भी रहती है, तो
1: ओके
0: सरकार उसको आर्थिक मदद भी करती है, समिति को भी
1: जी
0: करती है,
1: जी
0: और सदस्यों के हित के लिए सहायता भी देती है,
1: जी
0: जो सरकार के अन्य योगदान अनुदान की
1: हाँ
0: योजनाएं हैं
1: हाँ हाँ
0: वो
1: हाँ
0: सहकारी समिति के माध्यम से ही होती हैं,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: मतलब
0: व्यक्तिगत रूप से सरकार कोई अनुदान नहीं देती,
1: राइट
0: सहकारी
1: राइट
0: समिति के
1: हाँ
0: माध्यम से ग्रामीण लोगों को
1: जी
0: सहायता भी, उनको अनुदान सहायता भी
1: तो
0: मिलती है।
1: सहकारिता समिति गवर्नमेंट और किसानों के बीच का एक कनेक्शन
0: एक
1: है,
0: वहाँ बीच का एक पुल का
1: एक
0: काम
1: जोड़
0: करती
1: है
0: है। हाँ यो
1: जिसके थ्रू जो है जो गवर्नमेंट की योजनाएं जो किसानों के लिए ग्रामीणों के लिए बनाई जाती हैं, सहकारिता समिति उसको लोगों तक पहुंचाती
0: हाँ
1: है
0: समित
1: और उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताती है।
0: बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर में जितने भी हैं, उसके बाद जिले में जो हैं वो सब समितियां एक बैंक बनाते हैं, जिसको हम जिला सहकारी बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक नाम है उसका,
1: जी
0: केंद्रीय सहकारी समिति है, लेकिन उसको
1: हाँ
0: जिला सहकारी बैंक का नाम हम रखते हैं।
1: हाँ
0: तो वो सदस्य, वो समितियां उस बैंक की सदस्य होती है, और उस बैंक में भी सरकार का शेयर होता है,
1: जी
0: सरकार उस बैंक की भी जिला सहकारी बैंक की शेयर रखती है, तो वहां भी सरकार का आंशिक रूप से नियंत्रण रहता है,
1: जी
0: भले वो बॉडी उनकी स्वतंत्र हो, संचालन का स्वतंत्र होता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ
0: बोर्ड
1: हाँ
0: होता है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: जी
0: सरकार का वो इससे पर्यवेक्षण रहता है,
1: जी
0: और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से किसानों को मिलती रहती है। तो
1: जी
0: इससे सदस्यों को दो लाभ होते हैं, एक तो अगर जब सहकारी बैंक लाभ में होते हैं या सहकारी समितियां लाभ में होते हैं तो उनका लाभांश भी मिलता है, सरकार की योजनाएं तो मिलती हैं, लेकिन जो उनका शेयर वहां जमा है उसे लाभांश मिलता है, जिसके हिसाब से उनका शेयर होता है उसके हिसाब से ग्रामीणों को या सदस्यों को उनका लाभांश भी मिलता है।
1: जी
0: तो इस तरह से सरकार की योजनाएं सहकारी बैंकों के माध्यम

0: से और सहकारी समिति के माध्यम से ग्रामीण को मिलती है
1: जी
0: सीधे, जो
1: जी
0: सरकार सीधा कोई लाभ नहीं देती।
1: जैसे आपने बताया कि आप भंडारण के लिए किसानों की मदद करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं?
0: उसमें ये होता है जैसे हमारे गांव में चौलाई होती है,
1: हाँ
0: राजमा होती है,
1: जी
0: जड़ी बूटियां होती हैं, और जैसे नींबू है, माल्टा है जिसको
1: हाँ
0: हम गलगल भी कहते हैं,
1: हाँ
0: इस
1: जी
0: तरह से फल भी होते हैं, फल
1: जी
0: है, कई चीज ऐसी होते, आलू हैं, तो इनका भंडारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, व्यापार बाजार में कहाँ रखें। तो हमारे न्याय पंचायत पर ग्रामीण गोदाम बने हैं समितियों में, तो
1: अच्छा
0: समितियां उसको क्रय करती हैं,
1: हाँ
0: क्रय करके जो मनवा है, झंगोरा है, जो हमारे उत्पाद स्थानीय उत्पाद है, राजमा
1: जी
0: है,
1: हाँ
0: इनको बेचने का साधन कोई है नहीं, ऐसे मार्केट है नहीं, तो इसलिए लोग क्या करते, समितियां उनको खरीदती हैं,
1: हाँ जी
0: सरकार उसका समर्थन मूल्य घोषित कर देती है
1: जी
0: और उसे कम से कम मूल्य है, अधिक से अधिक पे तो खरीद सकती है,
1: हाँ
0: तो जड़ी बूटियां हैं तो उनका संग्रह करके और
1: हाँ
0: समिति गोदाम में रखती है और उनको
1: जी
0: मार्केट प्रदान करती है,
1: जी
0: जिला सहकारी संघ से उनके माध्यम से उनको भेज करके और मार्केट प्रदान करती है, तो उनका एक तो उत्पाद खरीदती है
1: हाँ
0: उसका उचित मूल्य मिलता है, और
1: हाँ
0: दूसरा भंडारण की समस्या नहीं रहती है,
1: हाँ मतलब उनको अच्छे से संभाल के रखा
0: संभाल
1: जा
0: के
1: सकता है
0: रखती है
1: ताकि जो उनका
0: और
1: फसल है वो
0: मार्केट में भेज में,
1: खराब
0: जब
1: ना हो।
0: बाजार में उसकी मांग ज्यादा हो तब वो
1: हाँ
0: भंडार
1: तब
0: में,
1: वो भंडार
0: बाजार
1: से
0: में भेजती
1: निकाल
0: है।
1: के और
0: हाँ, तो
1: बाजार
0: उनको
1: तक
0: आय भी
1: पहुंचा
0: होती
1: सकते
0: है,
1: हैं।
0: उनकी समस्या भी नहीं रहती है
1: जी
0: और उनका जो उपज है वो उनको मिलती रहती है। इसमें अनेक व्यवसाय है, व्यवसाय करने के लिए बहुत व्यवसाय है,
1: जी
0: जैसे कुक्कुट पालन है, भेड़ पालन, जो समय जगह कम है, स्थान कम है, कम
1: हाँ
0: जगह पर आदमी जो कृषक है, स्थानीय लोग हैं, अपनी आय के लिए कुक्कुट पालन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका अन्य जो व्यवसाय है, जड़ी बूटी का संग्रहण करके, हथकरघा से काम करके, अन्य जो छोटे छोटे साधन है उनसे अपने अपने आय बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इनके जो कार्य करने के तरीके हैं उनमें जो आप दुधार पशु
1: हाँ जी
0: डेयरी के, उसके लिए भी सरकार अनुदान देती है,
1: जी
0: आप डेयरी खोलेंगे तो
1: हाँ
0: आपका दूध क्रय करके और
1: हाँ
0: उचित मूल्य पर बेचती भी है और
1: हाँ
0: उसका उनसे सहकारिता तो बनती है, आपस में आय बढ़ती
1: हाँ
0: है, लेकिन
1: हाँ
0: सरकार उसमें अनुदान देती है, तो
1: अच्छा
0: पशुपालन के लिए भी देती है,
1: हाँ जी
0: आप भेड़ पालन करें, बकरी पालन, उसके लिए भी वो एक व्यवसाय है, उसके लिए भी सरकार अनुदान भी देती है, और उनके जो बैंक हैं जिला सहकारी बैंक, वो कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध
1: ऋण
0: कराते
1: भी
0: हैं।
1: उपलब्ध
0: तो
1: कराते हैं।
0: सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिसमें जो किसान है वो अपना आय प्राप्त कर सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, तो इसमें इसका बहुत बड़ा स्कोप है।
1: तो जैसे रुद्रप्रयाग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर ज्यादातर उनकी क्या समस्याएं होती हैं?
0: अभी जो रुद्रप्रयाग क्षेत्र है उसका जो पहाड़ी ऊपरी वाला क्षेत्र है
1: हाँ जी
0: उसमें चौलाई होती है,
1: जी
0: राजमा होती है, तो
1: जी
0: उसका जो है जो समितियां है उसको भंडारण करके उनको बेचती हैं। दूसरी समिति वहाँ की मूल रूप जो प्रारंभिक ऋण समिति है जिसको हम पैक्स कहते हैं, बौद्धिक सहकार समिति, वो उनको ऋण प्रदान करती है,
1: जी
0: किसके लिए, पशुपालन मुख्य रूप से वहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण जो पर्वतीय क्षेत्र है पशुपालन तो उनका मुख्य वो है,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: पशुपालन जिसमें दुधारू पशु हैं,
1: जी
0: भेड़ बकरी है, उसके लिए
1: जी
0: ऋण देती हैं और वो अपना व्यवसाय करते हैं, उनसे उनसे लाभ भी होता है, आय भी होती है, और अब लोग इससे काफी जुड़ने लग गए हैं, जब से इसमें लोगों को ये लगा कि भाई इससे काफी लाभ है, मार्केट है, क्योंकि रुद्रप्रयाग तो पर्यटन भी और धार्मिक दृश्य भी है, तो वहां पर होम स्टे चला रहे हैं लोग, हर गांव के आसपास, सड़क के आसपास लोगों ने होम स्टे खोले हुए हैं, लेकिन क्योंकि जानकारी ज्यादा नहीं है तो अब सरकार जो है उनको सहकारी समितियों के माध्यम या सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा करके वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं और लोगों को जीविकोपार्जन भी उस
1: लोगों ने, जैसे कि आपने बोला कि लोगों ने होम स्टे बनाए हुए हैं,
0: जी
1: तो होम स्टे में जो वहाँ का खान पान है वो ही जो है
0: हाँ स्थानीय
1: मेहमानों
0: उत्पाद
1: को
0: से जो
1: दिया
0: है,
1: जाता
0: हाँ
1: है,
0: जी झंगोरा
1: तो
0: है, मंडवे की रोटी है, इस तरह के जो जो स्थानीय उत्पाद हैं, तो उससे दो लाभ हुए, एक तो उत्पादन हुआ, जिसने उत्पादन उसको उत्पादन हुआ, स्थानीय रूप में वो बिक भी गया,
1: बिक भी
0: उनका
1: गया
0: व्यवसाय भी बना, उनको रोजगार भी मिला, तो इससे कई लाभ है, व्यापारिक लाभ भी है, आर्थिक लाभ भी है,
1: हाँ
0: हाँ, और रोजगार
1: दोनों
0: तो है ही, क्योंकि बाजार
1: आवश्यकता
0: में
1: है।
0: उनके जो मूल्य हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपको
1: हाँ
0: कम मूल्य में बेचना पड़ सकता है,
1: हाँ जी
0: आपके समिति के एक सरकार के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस
1: हाँ
0: पे आप
1: जी
0: रख दीजिए,
1: हाँ जी
0: बाजार ज्यादा जाएगा तो आपका मार्केट अधिक जाएगा, नहीं तो उतना मूल्य तो आपने खरीद दिया
1: जी
0: तो उसको बाजार में बेचने की आवश्यकता नहीं है, चाहे
1: जी
0: उनका जो भी उत्पाद है
1: जी
0: वो वहां भंडारण भी कर देगा
1: जी
0: और उनको रोजगार भी मिला हुआ है, तो दोनों काम हो रहे हैं आपको उस
1: जी
0: समिति के माध्यम से।
1: तो कृष्णानंद जी, आपसे एक सवाल और मैं पूछना
0: जी
1: चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि वहां पर ज्यादातर लोग फल, सब्जी और दूध उत्पादन करते हैं।
0: फलों में जैसे आपका माल्टा जिसको हम गलगल कहते हैं,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: ऊंचाई क्षेत्र में बहुत मात्रा में होता है
1: हाँ जी।
0: तो लोग उनका जूस निकालते हैं
1: हाँ जी।
0: जिसको कहते हैं
1: हाँ।
0: तो वो भी खूब चल रहा है
1: हाँ
0: उससे भी लोगों की रोजगारी बढ़ती है।
1: हाँ
0: स्थानीय जो जंगल है वहाँ पे बुरांस का है तो बुरांस को एकत्रित करते हैं
1: हाँ जी।
0: उसका जूस निकालते हैं तो वहां से भी लोगों को आय हो रही है
1: जी।
0: तो काफी उससे लोगों की आर्थिकी बढ़ी है और लोग उससे जागरूक भी हो गए हैं जब से लोगों ने माल्टे का काम करना शुरू किया। और अब तो लोग अपने छोटे छोटे स्टोर में जैसे आंवला का करके आंवला का अचार बना करके
1: जी अचार
0: जैम बना करके
1: जैम, हाँ। हाँ। जैसे आपने बोला कि जो लोग हैं वो जूस निकालते हैं आंवले का अचार बनाते हैं जैम बनाते हैं तो इस चीज का प्रशिक्षण भी आप लोग दिलाते हैं उनको।
0: हाँ उनको सहकारिता के माध्यम से जैसे आपके उद्यान विभाग के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं क्योंकि हम लोग सहकारिता विभाग का कृषि विभाग से और उद्यान विभाग से कई हर विभाग से समन्वय रहता है तो अपने किसानों को वो उनको प्रेरित करते हैं कि आप प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छा सा अच्छा कार्य करें उसमें ताकि आपको अच्छी आय भी हो आपका उत्पाद मार्केट में अच्छे ढंग से दिखे। आप अपने आय सहकारिता के माध्यम से बढ़ा सकते हैं अपने सहकारी समितियों से मिलकर के सहकारिता सहकारी समिति सदस्य बन करके अपना धंधा अपना व्यवसाय स्वयं कर सकते हैं और अपनी आर्थिकी बढ़ा सकते हैं।
1: तो कृष्णानंद जी आप हमारे कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं अभी आपने सुनी भेंट वार्ता विषय था सहकारिता से ग्रामीण विकास। कृष्णानंद डिमरी से बातचीत कर रही थी वीना शर्मा। श्रोताओं गर्मी आ गई है ऐसे में गर्मी से बचाव के साथ ही हमें आहार प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर हमारे किसान साथी भरी दोपहरी में भी अपने खेती किसानी के काम में जुटे रहते हैं तो आपको भी अपने आहार या यूं कहें कि पोषण पर ध्यान देना चाहिए। श्रोताओं अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत आवश्यक है। हमारे भोजन में अनाज दालें हरी सब्जियां फल दूध और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। पोषण प्रबंधन का अर्थ है सही समय पर सही मात्रा में और संतुलित भोजन लेना। बच्चों गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष पोषण की आवश्यकता होती है। जंक फूड और अधिक तेलीय चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि इससे मोटापा डायबिटीज़ और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नियमित व्यायाम और स्वच्छ खान पान भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। श्रोताओं यदि हम संतुलित पोषण अपनाएं तो हमारा शरीर स्वस्थ मजबूत और रोगों से सुरक्षित रह सकता है। तो श्रोताओं स्वस्थ जीवन के लिए सही पोषण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। श्रोताओं अब वक्त है एक और लोकगीत का आइए आपको सुनवाते हैं रोहिल खंडी लोकगीत।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ही समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, देहरादून 248001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। अब अपने साथी मधुसूदन नौटियाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का दगड़ मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल केदारनाथ धाम में नई सुविधाओं वाले अस्पताल का लोकार्पण करो। कृषि मंत्री गणेश जोशील कोय असमक चाह उद्योगों का अनुभवों और नई तकनीकों का अध्ययन कर वेर उत्तराखंड में ले चाह उत्पादन को नई दिशा देने काम करी जल। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन भय सख्त, कचरा फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करी जल। और आकाशवाणी स्थापना के 90 साल पूर्ण होने के मौके में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकथान का आयोजन। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज केदारनाथ धाम में नई सुविधाओं वाले अस्पताल का लोकार्पण करो। यह अस्पताल को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा चलाई जल। यह मौके में मुख्यमंत्री को कि विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती दल। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के दगड़ दगड़ वहां रोने वाले मैसों के लिए जिले बहुत फायदेमंद होल। मुख्यमंत्री को कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष प्राथमिकता देने जैल यात्री श्रद्धालुओं को कैल तरह की परेशानी सामना निकरण पड़ल।
2: ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड के इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। इस विस्तार के बाद केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, स्थानीय निवासियों को आपातकाल में ये संजीवनी का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जैसे संस्थान हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के विकल्प रही संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।
1: कृषि मंत्री गणेश जोशी इनुदिना असमक दौर पर छिन। उन्होंने असमक बारफा थारक चाह बगानों फेर करो। वहां उत्पादन क्षमता, प्रसंस्करण प्रणाली और विपणन व्यवस्था और जानकारों दगड़ बैठक कर वेर उत्तराखंड में चाह उत्पादन को बढ़ावा

0: ऋण गुणवत्ता सुधार और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने बारे में सुझाव ले। कृषि मंत्री कहे कि उत्तराखंड में चाह उत्पादन लीजी अपार संभावनाएं छिन और राज्यक जलवायु भल गुण वाल चाहक लीजी अनुकूल छू। उन्होंने कहे कि असमक चाह उद्योगक अनुभवों और नई तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखंड में ले चाह उत्पादन को नई दिशा देने काम करी जल जैल उत्तराखंडक चाह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पछाण दिलोणक लीजी प्रभावी विपणन रणनीति तैयार करी जल वे किसानों को ले फैद होल। विश्व रेड क्रॉस दिवसक मौके में आज बागेश्वर जिला कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन करी गए। यह दौरान समाज सेवा और भल का अलग अलग क्षेत्रों में भल काम करने वाले मैसों को सम्मानित करी गए। जिलाधिकारी आकांक्षा कौंडेल बागेश्वर रेड क्रॉस द्वारा करे जाने वाले सेवा काम की सराहना करी। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवियों की निस्वार्थ सेवा भावना समाज में सकारात्मक बदलाव लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभुन।
1: आज विश्व रेड क्रॉस दिवस में हम लोगों ने सम्मान समारोह जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, जो हमारी बागेश्वर जिले की सोसाइटी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और कोई भी चाहे आपदा हो या कोई भी ऐसे समस्या हो, उसमें हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत एक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और कभी कभी देखा गया दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, चाहे इसके पहले हमारी पौशारी की आपदा हो या इसके अलावा और भी कोई आपदा आई हो, तो उसमें अच्छा काम किया है जिन लोगों ने उनको हमने सम्मान किया है। कुछ हमारे दिव्यांगजन हैं उनको भी हम लोगों ने सम्मान किया है। कुछ जो हमारी महिलाएं जो इस सोसाइटी से जुड़ी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको भी सम्मान किया गया है। और आशा है इसी एक्टिविज्म के साथ, इसी तरह सक्रियता के साथ हमारी जो सोसाइटी है वो आगे भी काम करती रहे।
0: रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाणेल कोय की यो संस्था स्वयंसेवी लगातार मानव पीड़ा को कम करण के उद्देश्य समर्पित भावल काम करणी और भविष्य में ले यो सेवा काम यसे रोल।
2: आज हमारे द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो समाज सेवा के लिए लगातार अच्छा कार्य जिनके द्वारा किया गया उनको आज सम्मानित किया गया। और जिलाधिकारी महोदय ने भी बागेश्वर रेड क्रॉस की काफी सराहना की और काफी हमारे कार्यो को सराहा। और जब अधिकारी इस प्रकार से अपना अमूल्य समय देते हैं और कार्यो को सराहते हैं तो अवश्य हमारे सदस्य और कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन होगा और वो दुगनी गति से और दुगनी मेहनत से काम करेंगे।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़े है। जिलाधिकारी विशाल मिश्राल कोई की यात्रा वाल बाटों में गाड़गद्यार नदी और पहाड़ियों में कचरा करण वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करी जाए। प्रशासनक अनुसार यात्रा के बाटों में सफाई बने धरणक लीजी 400 से ज्यादा सफाई कर्मी सीतापुर बटी केदारनाथ धाम तक लगातार सफाई अभियान चलुणी। यकले गौरीकुंड क्षेत्र में 110 कर्मियों की तैनाती करी छू। सोनप्रयाग में प्लास्टिक कचरा कम करण के लिए विशेष मशीन लगाई छिन। प्रशासन 600 है जद कूड़ेदान लगे रखिन और पर्यावरण मित्रों की तैनाती करवे नियमित सफाई और कचरा संग्रहण व्यवस्था करी जाने। उखी मठक उप जिलाधिकारी अनिल रावतल श्रद्धालुओं से प्लास्टिक और कूड़ा को कूड़ेदान में डालने का अनुरोध करो।
4: सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 400 के आसपास कार्मिकों को स्वच्छता और सफाई के लिए लगाया गया है, जिनमें से मात्र गौरीकुंड में ही 110 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही शौचालय यात्रा मार्ग की सफाई और अन्य कार्यों का संपादन किया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम पधारने वाले सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने कूड़े का समुचित निस्तारण करने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और जिला प्रशासन को स्वच्छता और सफाई के दृष्टिगत अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
0: वे केदारनाथ यात्रा में ओणीवाल श्रद्धालु ले सफाई व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन एक सराहना करणी।
5: यहाँ पर जो टॉयलेट्स की सुविधा है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सफाई हो रही है और सब काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सफाई मिलेगा, पर बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण।
0: आकाशवाणी स्थापना के 90 साल पूर्व होने के मौके में आज राती आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादूनल केंद्र बटी नेहरू कॉलोनी तक वाकथानक आयोजन करो। यह मौके में आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों खुशी खुशी भाग ली। बहुजन हिताय बहुजन सुखायक आदर्श वाक्यक दगड़ आकाशवाणी स्थापना साल 1936 में है। यह देशक सबूह है विश्वास वाल

0: प्रसारणक माध्यम छु और अलग अलग भाषाओं में समाचार बुलेटिनक अलावा संगीत मनोरंजन अर्जन उपयोगी कार्यक्रमक प्रसारण करूं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यल आज अल्मोड़ जिलाक हुकम सिंह बोरा राजकीय स्नातोत्तर महाविद्यालय सोमेश्वर में आयोजित वार्षिकोत्सव में शामिल हई। यह मौक में उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के भीतर छात्रवृत्ति पाणवल मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देवे सम्मानित करो। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र छात्राओं की सूची में छात्राओं की लगातार बढ़ने संख्या शिक्षा क्षेत्र में चेलियों को लगातार अखिल बढ़ना प्रमाण छू। श्रीमती आर्याल कौ की प्रदेश सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य अलग अलग योजनाएं संचालित करना। रुद्रप्रयाग जिलाक अगस्त्यमुनि क्षेत्र में एक बारी फिर बाल विवाहक मामला सामने में आई छू। प्रशासन और संबंधित विभागक तत्परताल एक नाबालिग चेलीक भविष्य बचाई गई। मिली जानकारी के अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 में बाल विवाहक सूचना मिलने पर प्रशासनक टीम आज राती डांगी पाटालीधार गांव में पहुंची, जहां एक नाबालिग चेलीक टिक पिठा हुण छी। वे द्वीय पक्षों को बाल विवाह निषेध कानूनक जानकारी दे और सलाह के बाद द्वीय पक्षों सहमति जताई और चेलिक 18 साल पूर्ण होने के बाद टिक पिठिया और ब्याह करी जाल। फिलहाल यह काम टाली गई। आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम में नई सुविधाओं वाल अस्पताल का लोकार्पण करो। कृषि मंत्री गणेश जोशील कौ की असमक चाह उद्योगक अनुभवों और नई तकनीकों का अध्ययन करवे उत्तराखंड में ले चाह उत्पादन को नई दिशा देना काम करी जल। केदारनाथ धामक दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेवे रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त, कचरा फैलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जल। और आकाशवाणी की स्थापना 90 साल पूर्ण होने के मौके में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकथानक आयोजन। एकादगढ़ कुमाऊनी में समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में साया के 7:40 हुए हैं। अब समय है आपके मनोरंजन का, तो सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म बरसात की एक रात से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में, बोल अनजान के थे और संगीत था आरडी बर्मन का, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी देहरादून और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म महबूबा से, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम RNU देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से मैं अखिलेश चंद्र गैरोला आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के विशेष कार्यक्रम विषय संवाद में। विषय संवाद के अंतर्गत हमारे विशेष पॉडकास्ट अशोक चक्र विजेता श्रृंखला में आज हम आपको ले चल रहे हैं उस वीर योद्धा की कहानी में जिन्होंने सीमा पर नहीं बल्कि शांति के समय भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर देश की रक्षा की। लैंस नायक सुंदर सिंह अशोक चक्र, उनका जीवन, उनका साहस और उनका बलिदान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट अंतरिक्ष थपलियाल, जो असम रेजिमेंट के साथ सेवा का अनुभव रखते हैं। लेफ्टिनेंट थपलियाल, आकाशवाणी देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मैं आकाशवाणी के इस मंच से भारत माता के वीर पुत्र लैंस नायक सुंदर सिंह अशोक चक्र के अपार शौर्य को नमन कर सकूं।
1: लेफ्टिनेंट थपलियाल, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अशोक चक्र का महत्व क्या है।
2: देखिए, अशोक चक्र भारत के शांति के समय दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह उन वीरों को दिया जाता है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में, चाहे दुश्मन का सामना हो या किसी जानलेवा स्थिति का, असाधारण साहस, अप्रतिम हिम्मत और अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य के प्रति संपूर्ण समर्पण दिखाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं बल्कि हर सीमा, हर चौकी और हर जिम्मेदारी पर होती है।
1: लेफ्टिनेंट थपलियाल, अब जरा हमारे श्रोताओं को लैंस नायक सुंदर सिंह के जीवन के बारे में बताइए। वो कहाँ के थे, कैसे सेना में आए और कौन सी यूनिट से जुड़े थे?
2: लैंस नायक सुंदर सिंह का जन्म 14 फरवरी 1929 को जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ जिले के गांव चौखदान में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाले इस युवक के अंदर बचपन से ही देशभक्ति और देश सेवा का जज्बा था। फरवरी 1947 में उन्हें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस में भर्ती किया गया, जो बाद में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के रूप में पुनर्गठित हुई। अपनी कठोर ट्रेनिंग के बाद वो 4 जैकरिफ के साथ तैनात हुए और धीरे धीरे एक अनुभवी इन्फेंट्री सोल्जर के रूप में उभर कर आए।
1: लेफ्टिनेंट थपलियाल, हमने सुना है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन पंजाब के हुसैनीवाला सेक्टर में हुआ। उस समय उनकी यूनिट किस ड्यूटी पर तैनात थी और स्थिति क्या थी?
2: 17-18 मार्च 1956 को 4 जैकरिफ की तैनाती पंजाब के हुसैनीवाला फिरोजपुर के आसपास के इलाके में थी। ये इलाका सतलुज के किनारे डैम और गाइड बंद के कारण बहुत संवेदनशील सेक्टर माना जाता है। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना के तत्वों ने इस क्षेत्र में हमला किया। हमारे सैनिकों ने प्रतिक्रिया में वीरता से पलटवार किया और बंद के एक हिस्से पर कब्जा वापस ले लिया, लेकिन डैम और

0: हाइडबंद के कुछ हिस्सों पर अब भी दुश्मनों ने मजबूत पकड़ बना रखी थी। दुश्मन ने पथरीले इलाके में मशीन गन्स लगाकर ऐसी फायरिंग पोजीशंस बना ली जहां से वो हमारे जवानों पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। किसी एक व्यक्ति को अपनी जान की परवाह किए बिना आगे जाकर इन पोजीशंस को खामोश करना जरूरी हो गया। और यहीं से शुरू होती है लैंस नायक सुंदर सिंह की वो कहानी जो उन्हें अशोक चक्र तक ले गई।
1: लेफ्टिनेंट थपलियाल, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तब ग्राउंड पर हमारे जवान किस प्रकार की टैक्टिकल चुनौतियों का सामना कर रहे थे? क्या था वो जो इस मिशन को इतना कठिन बना रहा था?
0: सबसे बड़ी चुनौती थी खुला और नंगा मैदान, जहां से डैम और गाइड बंद की तरफ बढ़ते हुए हर सिपाही दुश्मन की सीधी नजर और फायर के दायरे में आ जाता था। दूसरी बात, रात का अंधेरा, पानी के आसपास की नमी और पथरीला इलाका, इन सब ने मूवमेंट को धीमा और खतरनाक बना दिया था। दुश्मन की लाइट मशीन गन्स ऊंचे ग्राउंड से नीचे की तरफ फायर कर रही थी, जिससे हमारे जवानों के लिए सिर उठाकर आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में किसी एक जवान का आगे बढ़कर इन पोजीशंस को तबाह करना पूरी कंपनी के लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल था, और यही जिम्मेदारी लैंस नायक सुंदर सिंह ने बिना झिझक अपने कंधों पर ले ली।
1: लेफ्टिनेंट थपलियाल, मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पल था, वो कौन सी रात थी जहां लैंस नायक सुंदर सिंह ने ऐसा शौर्य दिखाया कि उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया पूरी घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी और बंद के उस पार से दुश्मन की मशीन गन की गोलियां अंगारों की तरह बरस रही थी। हमारे जवान डैम पर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन दुश्मन ने एक ऐसे कोने पर मजबूत पकड़ बना ली थी जहां से वो हमारे सैनिकों पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। ऐसे में एक ही रास्ता था, किसी को अपनी जान दांव पर लगाकर सीधा उनकी पोजीशन तक पहुंचना था। इसी समय लैंस नायक सुंदर सिंह नंबर 1503 को दुश्मन की पोजीशंस को खामोश करने का टास्क दिया गया और उन्होंने बिना झिझक हाँ कर दी। उनके पास सिर्फ 6 हैंड ग्रेनेड थे और सामने थे दुश्मन की मशीन गन्स और तेज गोला बारूद। वो लगभग 150 मीटर तक खुले पथरीले इलाके में गोली की बौछार के बीच रेंगते हुए दुश्मन की तरफ बढ़े। जब वो दुश्मन की पहली पोजीशन के करीब पहुंचे, उन्होंने पहला ग्रेनेड फेंका। इससे दुश्मन की एक पोस्ट खामोश हो गई, उनके कुछ सिपाही मारे गए और मशीन गन चुप हो गई। फिर वो आगे बढ़े दूसरी और तीसरी पोजीशन की तरफ, हर बार वो अपने ऊपर हो रही गोलीबारी को नजरअंदाज करते हुए पथरीले इलाके का फायदा उठाते हुए आगे सरकते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। तीन तीन बार ऐसा करके उन्होंने तमाम पोजीशंस को तबाह कर दिया जहां से हमारे जवानों पर सबसे तेज फायर हो रहा था। उनकी इस वीरता के कारण फोर जैकरिफ बंद के उस हिस्से पर पूरी तरह कब्जा जमा पाई, दुश्मन को पीछे धकेल दिया और पूरा इलाका सुरक्षित कर लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की, उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, मिशन कंप्लीट करना और अपने साथियों की जान बचाना।
1: लेफ्टिनेंट थपलियाल, इतनी कठिन परिस्थिति में जब हर पल मौत सामने खड़ी हो तब भी ऐसे साहस का प्रदर्शन, ये भारतीय सेना के किस मूल सिद्धांत को दर्शाता है?
0: यह भारतीय सेना के उसी मूल मंत्र को दर्शाता है जिसे हम अक्सर बोलते हैं, नाम, नमक, निशान। सोल्जर के लिए अपने रेजिमेंट का नाम, अपने देश का नमक और अपनी पलटन का निशान उसकी अपनी जान से भी बड़ा होता है। लैंस नायक सुंदर सिंह ने दिखाया कि जब देश की मर्यादा, यूनिट का सम्मान और साथियों की जान दांव पर हो तो एक फौजी अपनी सुरक्षा के बारे में सबसे आखिर में सोचता है। इसी कर्तव्य निष्ठा की वजह से उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और वो जम्मू एंड कश्मीर से पुरस्कार को पाने वाले प्रथम वीरों में शुमार हुए।
1: लेफ्टिनेंट थपलियाल, यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज के युवाओं के लिए जो फौजी जीवन को सिर्फ एक नौकरी के रूप में देखते हैं, लैंस नायक सुंदर सिंह का जीवन क्या संदेश देता है?
0: उनका जीवन हमें सिखाता है कि फौजी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान का प्रतीक है। एक साधारण परिवार का बेटा जो एक छोटे से गाँव से निकलकर फोर्ट जैकरीफ का वीर जवान बनता है और फिर हुसैनीवाला जैसे संवेदनशील सेक्टर में अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी कंपनी को जीत की राह दिखाता है। ये कहानी हर युवा को बताती है कि आप कहीं से भी आते हो, अगर जज्बा सही हो तो आप देश के इतिहास में अपना नाम लिख सकते हैं।
1: लेफ्टिनेंट थपलियाल, जब आप जैसे अधिकारी स्टूडियो में बैठकर इन कहानियों को सुनाते हैं तो हम सबके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हम कभी उन वीरों का कर्ज चुका सकते हैं? आप आज के इस विशेष कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम इन वीरों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनकी कहानियों को जिंदा रखें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। चाहे आप फौज में हों, पुलिस में, किसी दफ्तर में, खेत में या कक्षा में, अगर आप अपना काम ईमानदारी और समर्पण से कर रहे हैं तो आप भी देश की सुरक्षा और उन्नति में हिस्सा डाल रहे हैं, यही असली राष्ट्रभक्ति है।
1: तो श्रोताओं, आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमने सुना लैंस नायक सुंदर सिंह अशोक चक्र की वीरगाथा, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिन्होंने हुसैनी वाला के मोर्चे पर अपनी जान से खेलकर दुश्मन को पीछे धकेला, अपने साथियों की जान बचाई और भारत के तिरंगे को सर उठाकर लहराने दिया।

0: सेवा जिनका धर्म है, भारत उन्हें सदा याद रखेगा। जय हिंद।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में सायं के 7:58:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत हैं कुछ संदेश।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242
1: FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए कथा सागर में डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र से कहानी।
5: बसंती मौसम की मादकता से महकती बसंत पंचमी की शाम उत्सव के परवान चढ़ते उल्लास में अपने पुराने मित्रों, शुभचिंतकों, परिचितों की उपस्थिति उस खुशनुमा आयोजन को अपूर्व उमंग और उत्साह से सराबोर कर रही थी। कैंट कॉलोनी के पुराने एवं विशाल ऑडिटोरियम में कॉलोनी के निवासियों के लिए होने वाले मिलन समारोह एवं रात्रिभोज आयोजन की वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन आज के दिन भी हो रहा था, परंतु आज का वार्षिक मिलन समारोह इस मायने में विशेष था कि इसमें आसपास की अनेक कॉलोनियों के खास खास परिवारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी तथा सैनिक कॉलोनी के लोग भी सादर आमंत्रित थे। करीने से सजी फुलवारी के विभिन्न गमलों में खिले भिन्न भिन्न तरह के फूलों की खुशबुओं से मदमस्त माहौल, दूधिया रोशनी में नहाया प्रांगण तथा ऑडिटोरियम में बज रहे मधुर गीत संगीत बरबस ही सभी का मन मोह रहे थे। एक एक करके हुई अनेक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रखा था। जैसे ही एंकर ने अगली प्रस्तुति के लिए स्वर्णिमा का नाम पुकारा, ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शायद उसके स्वर की माधुर्यता से वहां उपस्थित अधिकांश व्यक्ति पहले से ही बखूबी परिचित रहे होंगे। मंच पर आकर स्वर्णिमा ने जैसे ही शुरू किया, तोरा मन दर्पण कहलाए, इस भजन गीत के संग संग मधुमेह बजती हल्की हल्की तालियों ने पुनः पुनः उस मधुर प्रस्तुति की मुक्त कंठ से सराहना की। दर्शकों में बैठा हुआ सेना का हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ अधिकारी अरुण मोहन इस गायन को एक टक अपलक निहारता और गाने की तान के माधुर्य में हिलोरें खाता हुआ मधुर अतीत में चला गया। उस किशोर गायिका की मधुर प्रस्तुति उसके स्मृति पटल को और ज्यादा झंकृत करते जा रहे थे। संगीत को सुनते सुनते वह न जाने कब अतीत के स्वप्न सरीखे सुखद पलों में डूबता चला गया। उस गायिका के गाना गाने की खूबसूरत अंदाज एवं उभरती हुई उसकी आकर्षक छवि उसे कुछ विशेष याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे। अब उसे अपने ग्रेजुएशन के दिन याद आने लगे कि कैसे प्रथम वर्ष के वार्षिक समारोह में एक सहपाठी छात्रा अरुणिमा ने कितने चित्ताकर्षक एवं मधुर अंदाज में ये गीत तोरा मन दर्पण कहलाए प्रस्तुत किया था। उस मनमोहक प्रस्तुति के लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा।

की गई थी तथा प्राचार्य जी ने तब उसे भरे मंच से सम्मानित भी किया था। अतीत में घटित हुए पल चलचित्र की तरह अरुण के मानस पटल पर तीव्रता से गतिमान होने लगे थे। अरुण को याद आ रहा था कि कैसे अरुणिमा ग्रेजुएशन में प्रवेश के समय एक छोटे से कस्बे से आई हुई सुंदर, सलोनी और बेहद शर्मीली सी छात्रा थी। वह सिर्फ पढ़ने लिखने से मतलब रखने वाली, नियमित कॉलेज और प्रयोगशाला जाने आने वाली एक छात्रा थी। एक दिन बस यूं ही लेक्चर के दौरान पता चल पाया था कि उसका कंठ बेहद सुरीला है, परंतु उस समय न तो उसे कोई गाना पूरा याद था और न ही किसी अच्छे गाने के लय का उसे सही ज्ञान था। धीरे धीरे अपने अभ्यास एवं सहपाठियों के निरंतर प्रोत्साहन से अरुणिमा के गायन में उत्तरोत्तर निखार आता चला गया। शुरुआत में एक बेहद शर्मीली सी पढ़ाकू अरुणिमा अपने विश्वविद्यालय की स्टार गायिका बन गई थी। अतीत की यादों में स्मृतियों के हिचकोले खाते खाते अरुण उस ऑडिटोरियम में बैठा बैठा बेसुध सा हो गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन के बाद अब प्रीति भोज आरंभ हो चुका था। गुमसुम से बैठे अरुण के पास आकर हल्के से हिलाते हुए एक बैरा ने कहा, सर प्लीज आप भी डिनर पर चलिए, सभी लोग जा चुके हैं, हॉल में केवल आप ही हैं। अरुण लगभग चौंकता हुआ सा उठा और प्रांगण में जहां डिनर चल रहा था वहां चला गया। प्रांगण में पहुंचकर उस प्रतिभावान सुमधुर गायिका स्वर्णिमा को लगभग तलाशने सा लगा। डिनर के अलग अलग काउंटर पर तलाशते तलाशते और डिनर कर रहे लोगों की भीड़ में एक एक व्यक्ति के चेहरों को निहारते निहारते उसे एक जगह कोने में बैठकर डिनर कर रही स्वर्णिमा दिखी गई। अरुण लगभग भागता सा उसके पास गया। वह अपनी डिनर लगभग समाप्त ही करने वाली थी। अरुण उसके पास जाकर उसको शुभाशीष दे स्नेह से उसका सिर सहलाने लगा। शुभकामनाएं देते हुए अरुण ने पूछा, बेटा आपके साथ कौन आया है? मेरी माँ, ऐसा कहते हुए उस किशोरी ने हॉल में एक तरफ बातें कर रही महिला की तरफ इशारा किया। अरुण ने अपनी नजरें उठाकर जैसे ही उसे देखा, वह तो बस देखता ही रह गया। यह तो वही अरुणिमा थी जिसकी एक झलक मात्र पाने के लिए वर्षों से वह प्रतीक्षारत था। कॉलेज के दिनों के बाद से ही वह अरुण के लिए जैसे अदृश्य सी हो गई थी। अन्य अन्य संभावित संपर्क सूत्रों के माध्यम से अरुण ने अरुणिमा के बारे में पता लगाना चाहा, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली थी। अरुणिमा को अपने सामने ऐसे पाकर वह भाव विभोर सा हो गया था। उससे मुलाकात न हो पाने के कारण अलग अलग समय में मन में उठने वाले उलाहने, दर्द भरे हुए टीस, इस समय अरुणिमा के आकर्षक एवं हंसमुख चेहरे, विशाल मृगनयन और कंधे तक लटक रहे खुले खुले बालों की खुशबू में बहक से गए थे। दृश्य मुग्ध हो अनायास ही निहारता रह गया था अरुण। अब अरुणिमा ने भावनाओं को उठते हुए अनवरत भंवरों में जैसे पत्थर सा उछाल दिया हो सहसा अरुण और पूछा, कैसे हो मिस्टर अरुण, कहाँ थे अब तक? सेना में सेवारत था, अब सेवानिवृत्त हो गया हूं, अरुण ने धीरे से जवाब दिया। ओ तो फौजी हैं आप, खिलखिलाते हुए अरुणिमा ने सम्मान जताया। अब क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब? अरुणिमा ने बातों को आगे बढ़ाते हुए पूछा। सामान्य दिनचर्या है, बस कट रही है जिंदगी, अरुण ने जवाब दिया। ओह इतनी उदासी, ऐसा क्यों? अरुणिमा ने हमदर्दी जताते हुए पूछा। अकेलापन, तनहा जिंदगी कैसी होगी, अरुण ने जवाब दिया था। मतलब आपका परिवार? अरुणिमा ने आश्चर्यचकित करते हुए पूछा।

0: अविवाहित हूं तो मेरा परिवार कौन होगा? अरुण ने जवाब दिया था। अरुण के अब तक अविवाहित होने की बात जानकर जैसे कुछ पलों के लिए शांत सी हो गई थी अरुणिमा। कुछ पलों के लिए एक दूसरे को निहारते रहे थे वे दोनों। रह रहकर अरुणिमा के चेहरे पर उठ रहे भाव को समझते हुए टोंक पड़ा था अरुण, परेशान को क्यों हो रही हैं अरुणिमा जी? कुछ नहीं, बस यूं ही। और गंभीर होते जा रहे माहौल को हल्का फुल्का करने के प्रयास में खिलखिला पड़ी थी अरुणिमा। अरुण भी मुस्कुरा पड़ा था उसके प्रत्युत्तर में। जीवन में बीत चुके इतने ज्यादा समय, तमाम जद्दोजहद, अपनेपन के बिछोह, अतीत की बेरुखियों से मन ही मन हिचकोले खाते हुए एकाएक अरुणिमा ने कहा, क्यों ना हम अब वक्त को नई खुशनुमा जिंदगी दें, उन्मुक्त जिंदा दिली दें। ऐसा सुनकर अरुण का उदास, निराश, निस्तेज हो चला चेहरा रोमानियत से खिलखिला उठा था। चलो अब जीवन को गाते हैं, सूखे पुष्प दलों को पुनः खिलाते हैं, गमगीन पतझड़ को भुलाकर बसंत लहलहाते हैं। ऐसा कहते हुए अरुण ने अरुणिमा का हाथ पकड़ लिया था। अरुणिमा ने अरुण के कंधे पर अपनी गर्दन टिका दी। हौले हौले कदमों से दोनों आगे बढ़ने लगे थे जीवन के शेष पलों को गुनगुनाने के लिए। स्वर्णिमा अब दूर से निहारती, मंद मंद मुस्कुरा रही थी, अकेलापन झेल रही अपनी मां के आने वाले सुखद पलों को सोचकर।
1: कथा सागर के बाद FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है देशगान।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत में विविध कलाकारों से गजल।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:24 और 50 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है ये रेडियो रिपोर्ट।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना और प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी परिसर से आज सुबह 8:30 पर आयोजित वॉकेथॉन की ये खास रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर प्रियंका जेना का और प्रस्तुति रमेश चंद्रा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि देश की आवाज, भावनाओं और संस्कृति को दशकों से जोड़ने वाला माध्यम आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी अवसर पर आज सुबह 8:30 पर प्रसार भारती केंद्र से फवारा चौक नेहरू कॉलोनी तक एक विशेष वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने और श्रोता एवं रेडियो प्रेमी उत्साह के साथ शामिल हुए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ ने वॉकेथॉन का शुभारंभ किया। हमने बातचीत की मुख्य अतिथि महोदय उमेश शर्मा काऊ से।
1: तो हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं जो आज वॉकेथॉन में इस सफर के हमारे साथी बने हैं। तो बहुत स्वागत सर, आप बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं?
2: आज आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए। जन जन तक पूरे इंडिया में हजारों कार्यकर्ता के रूप में जो जनता की आवाज़ और संस्कृति को पहचान दिलाने का काम आकाशवाणी विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से करती है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस लंबी यात्रा को और अधिक मजबूती के साथ हमारी आकाशवाणी आगे बढ़ाए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और ये जो वॉकेथॉन जैसी मुहिम है, इसको आप किस रूप में देखते हैं?
2: अच्छी बात है, जनता को भी पता लगे कि आकाशवाणी हर तरह के काम करने में और जन सहयोग में और जनता को साथ लेके चलने में अपना काम कर।
0: हमारे साथ हैं अभी आकाशवाणी के उप महानिदेशक श्री एसके मीना जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? आकाशवाणी 90 वर्षों का ये सफर पूर्ण कर चुका है और आज इस तरह के वॉकेथॉन का आयोजन होना, किस तरह की अनुभूति है?
3: ये हमें बहुत अच्छा लगा। हम आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो हमारा मेन उद्देश्य है, 1936 से लेके 2026 में आज हमने 90 वर्ष पूरे कर लिए। पूरे भारत वर्ष में हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता के कोने कोने तक बहुजन होता है एवं बहुजन सुखाए के उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।
0: हमारे साथ है आकाशवाणी के सहायक निदेशक कार्यक्रम रमेश चंद्रा जी। तो रमेश चंद्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो वॉकेथॉन का आयोजन हुआ आज आकाशवाणी के परिसर से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर, का मुख्य उद्देश्य क्या रहा?
4: आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष हम पूर्ण कर रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एक वॉकेथॉन का आयोजन किया और इसमें हम आकाशवाणी परिसर से फुहारा चौक तक हमारे आकाशवाणी के समस्त जो स्टाफ के लोग हैं, किसी भी रूप में वो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के द्वारा वॉकेथॉन में भाग लिया गया और बहुत ही जोश के साथ भाग लिया गया। और जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो जो जनसमूह था वो एक विशाल जनसमूह हम लोगों को दिखाई दे रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य हमें ये लगता है कि लोगों को पता चले कि आकाशवाणी ने पिछले 90 सालों में क्या किया है, देश को क्या दिया है, लोगों को क्या दिया है। और बात करें समाचार की, मनोरंजन की,

0: संस्कृत की, साहित्य की, संगीत की, जन भावनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ने का जो अनुपम कार्य है वो आकाशवाणी ने किया है। और इसकी जो मधुर आवाज है, इसके जो प्रस्तोता है कार्यक्रमों के, विभिन्न कार्यक्रमों के, उनकी मधुर आवाज ने देश के हर कोने में विश्वास, जागरूकता और अपनत्व का संदेश पहुंचाया है। इसी सब को लेकर हम ये जो 90 वर्ष का कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके और हमारी आकाशवाणी की जो पहचान है वो सभी लोगों के मन में और ज्यादा अमिट रूप से बनी रहे। सभी श्रोताओं को और जो लोग भी हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, उन सबसे हम यही आशा करते हैं कि हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें वो बढ़ चढ़कर भाग लें, प्रतिभाग करें।
1: दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख है जो कि आकाशवाणी से भी लंबे अंतराल तक जुड़े रहे, अनिल भारती।
2: इसमें जो प्रतिभागी हैं उनका जो जोश है, उनका उत्साह इस आयोजन का एक बहुत बड़ा कारक है और वो उत्साह लगातार दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी संख्या में वो आवाजें जो कहीं रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचती हैं, वो आज सड़कों पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो कदम है ये केवल सड़क पर नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि उस विरासत के सम्मान में उठ रहे हैं जिसने लगभग वर्षों तक आवाज दी है देश की धड़कनों को। तो सूचना, ज्ञान, मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में आकाशवाणी का जो योगदान है वो भुलाए नहीं भूलता, अप्रतिम योगदान है। आजादी के बाद से आकाशवाणी ने निरंतर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तमाम योजनाओं के बारे में आम व्यक्ति को जागरूक किया है। संविधान की में जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है आकाशवाणी की। हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है उसको जीवित रखा है, हमारी परंपराओं को, और ज्ञान से लेके शिक्षा तक, खेल कूद, कृषि, संगीत से साहित्य तक, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमने कार्य नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, संकल्प लें कि आने वाले दौर में हम एक नया समाज बनाएं, एक सकारात्मक संवाद हो और जो सांस्कृतिक विविधता है उसको हम जीवित रखें, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विविधता जो है यही हमारी जीवन का, हमारे देश की जो मुख्य धारा है उसका प्राण है। और ये सांस्कृतिक विविधता यदि जीवित रहती है तो देश बहुत तरक्की करेगा और ये हमारी राष्ट्रीय एकता की पूंजी भी है। धन्यवाद।
1: हमारे साथ हैं आकाशवाणी के टॉप ग्रेड सितार वादक पंडित रॉबिन कर्माकर जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम था वॉकेथॉन का, आकाशवाणी 90 वर्ष अपने पूर्ण कर चुका है और वॉकेथॉन का आयोजन हुआ आज आकाशवाणी परिसर से, आप भी इसका हिस्सा बने, तो किस प्रकार की अनुभूति है?
3: बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, और इस तरीके से आयोजन होते रहने चाहिए और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं इसीलिए मैं भी अंदर से बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं भी इस परिवार का एक सदस्य हूं और आकाशवाणी में सर्विस भी करता हूं। और जिस प्रकार इस आयोजन में सभी लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अब आइए सीधे ले चलते हैं आयोजन स्थल की ओर और जानते हैं प्रतिभागियों का उत्साह, उनकी भावनाएं और आकाशवाणी से जुड़ी उनकी यादें। क्या नाम है आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर इस तरह के वॉकेथॉन का आयोजन हुआ है, सब लोग एक साथ कदम ताल मिलाते हुए चल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं?
4: मेरा नाम मानव डोभाल है, मैं 2024 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ एक न्यूज रीडर के तौर पर। और मतलब हमेशा से लगता था कि पहले जब हम छोटे थे तो दूरदर्शन को सुना करते थे, घर में केबल नहीं हुआ करता था और रेडियो का भी उस टाइम बहुत चलन था, तो आकाशवाणी में हम हमेशा सुना करते थे। दिल्ली में रहकर विविध भारती, AIR FM गोल्ड से, मतलब कई सारे अलग अलग तरह के हमने प्रोग्राम सुने थे। सबसे अच्छी बात यह है कि अब यकीन नहीं होता कि जिस चीजों को हम सुना करते थे अब उनको हम बोल रहे हैं अपनी तरफ से, अब हम दूसरों को सुना रहे हैं अपनी वही बातें, तो सच में ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहूंगा हमेशा इस तरह आकाशवाणी के साथ में जुड़ूं और जिस तरह अब आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं, बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऑल इंडिया रेडियो जो पूरे इंडिया में जिसका अपना दबदबा हमेशा से 90 के दशक में रहा है, अब भली चाहे अब धीरे धीरे डिजिटल मीडिया हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसने चाहे अपने आप को अब लाइमलाइट में लाना शुरू कर दिया, लेकिन जो आकाशवाणी है, जो हमारी मूल जड़ है हमारे भारत की, उसको अभी भी हमें बनाए रखने में हम अपना सहयोग दे रहे हैं और उसी 90 साल को पूरे होने की खुशी में आज हम वॉकेथॉन में हम शामिल हुए, बेहद खुशी की बात है। मैं चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन लगातार होते रहें और हमेशा जब भी कभी हमें कोई मौका मिले आकाशवाणी को आगे प्रमोट करने का तो हम लगातार उसमें सहयोग करते रहें।
1: सभी लोग एक साथ हैं फिट इंडिया की मुहिम को लेके और वॉकेथॉन का आयोजन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नाम बताइएगा सबसे पहले।
5: मेरा नाम अभिनव शंकर सक्सेना है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे आप सभी को बधाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के वॉकेथॉन, बहुत काफी सारे लोग दिख रहे हैं, काफी अच्छा रहेगा। अभी तो चालू नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ चालू होगा तो बहुत मजा आएगा हमें, और मैं चाहता हूँ आकाशवाणी और वॉकेथॉन और ऐसे इवेंट्स करवाता रहे, सभी को अच्छा लगता है।
1: कैसा लग रहा है आपको वॉकेथॉन का हिस्सा बनके?
6: जी मैं अनुराग वर्मा, और ये बड़े हर्ष की बात है कि 90 वर्ष

0: गए हैं आकाशवाणी प्रसार भारती को, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर एकजुट होना, और क्योंकि हमारा नेटवर्क लगातार लोगों के साथ जुड़ा है वर्षों से और आजादी से भी पहले से हम लोग जुड़े हैं लोगों के साथ, तो आज दोबारा से हमें आपस में जुड़ने का अवसर मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: मेरा नाम दिव्या नेगी है और आज आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके। और जैसा कि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, स्वस्थ मन में अच्छे विचार आते हैं और जब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे तो आपके जीवन का जो लक्ष्य होगा वो जल्दी से पूरा हो पाएगा। तो ऐसे ही मतलब आप फिटनेस की तरफ आगे बढ़ते रहें और एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें, मेडिटेशन करें, स्वस्थ रहें।
2: तो क्या नाम है आपका और कैसे महसूस कर रहे हैं कि सभी लोग एक साथ कदम ताल मिलाते हुए आज वॉकेथॉन का हिस्सा बने हैं?
3: जी, मेरा नाम शुभम शर्मा है और इस तरह से जो एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सारे जो हमारे साथी है आकाशवाणी और दूरदर्शन के वो साथ में चल रहे हैं, तो एक तरह से हमारा आपस में मिलना भी हो गया और साथ में जब चलते हैं तो चलना बहुत आसान हो जाता है, मैं ये मानता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके भी और एक एनर्जी महसूस हो रही है कि अब तो हम काफ़ी दूर तक साथ जा सकते हैं और अच्छा लग रहा है काफ़ी।
2: जी, जैसे कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, तो इस तरह के वॉकेथॉन का आयोजन करना आकाशवाणी की जो मुहिम है वो उसको आप किस रूप में देखते हैं?
3: मैं ये देखता हूँ कि इस तरह की चीज़ें लगातार होनी, कहना कि आजकल आप देखते हो कि बहुत ही ऐसा समय आ गया है कि हम लोग बहुत अकेले अकेले से रह रहे हैं पाते, तो ऐसी जगह पे जब वॉकेथन हो रही है और हमारा जो संस्थान है आकाशवाणी और साथ में जो दूरदर्शन है वो इस तरह की चीज़ें करवाता है जहाँ पे हम लोग आपस में मिलते भी हैं और बातचीत भी करते हैं और साथ में चलते भी हैं, तो ये मेलजोल वाली चीज़ भी हो रही है एक तरह से, और चल रहे हैं हम तो हमारी शारीरिक कसरत तो हो ही रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
4: मेरा नाम गीता नेगी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पे वॉकथन किया जा रहा है और सभी लोगों उत्साह से भरे हुए हैं।
5: भाई, मेरा नाम है मीनू गोयल चौधरी, आकाशवाणी के साथ अनाउंसर के पद पर तैनात हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। 90 साल पूरा करना किसी भी संस्था के लिए बहुत गौरवान्वित है और सरकारी संस्था इस समय में जब प्राइवेट चैनल्स की भरमार है तभी आकाशवाणी ने अपनी एक पहचान, अपनी एक जगह बना रखी है, दैट इज कमेंडेबल।
2: तो इस तरह की जो पदयात्रा है तो एक तरह से फिट इंडिया की तरफ भी हमें लेके चलती है, तो कैसे महसूस कर रहे हैं कि सभी लोग व्हाइट टी शर्ट में और व्हाइट कैप में नजर आ रहे हैं एक जैसे कदम ताल करते हुए?
5: वेरी नाइस। एक जैसे कपड़े पहनने के पीछे एक ही रीजन है कि सब एक ही लेवल पे दिखाई दें, यहाँ पर अभी कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई लोअर लेवल का नहीं है, सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और हम तो चाहते हैं कि ऐसी वॉकथन या इस तरह की इवेंट आकाशवाणी की तरफ से और होते रहे।
6: मेरा नाम बबीता है, मैं आकाशवाणी VA हूँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है वॉकथन में।
2: आपको कैसा लग रहा है, क्या नाम है?
7: मेरा नाम श्रद्धांजलि जैना है, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है।
8: मेरा नाम सुहासिनी गोनियाल है और मुझे बहुत हर्ष और उल्लास है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पे ये वॉकथन हुई है। आज हमें स्पेशल एक टी शर्ट भी मिली है हमारे आकाशवाणी की, जिसे पहन के आज हम गए तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है और खुशी महसूस हो रही है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी सुनने वाले हमारे श्रोताओं से कि आकाशवाणी को सुनिए, क्योंकि हमारा आकाशवाणी आपको बहुत तरीके से, बहुत कार्यक्रमों में बहुत अच्छे तरीके से जागरूक करता है। कई प्रोग्राम हमारे ऐसे हैं कि जिससे हमारे श्रोताओं को बहुत लाभ मिलता है, वो बहुत लाभान्वित होते हैं। जब मैं रोड में देखा लोगों ने और लोग उससे जागरूक हुए कि हाँ ये स्टेशन यहाँ पे है और अब हम इन्हें सुनेंगे, क्योंकि लोग हमसे रुक रुक के पूछ रहे थे कि क्या है। ये भी एक तरीके का प्लस पॉइंट है कि ये वॉकथन हुआ है तो लोगों को पता चला है, लोग इससे जागरूक हुए।
0: मेरा नाम गोर्की तिवारी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मजे आ रहे हैं क्योंकि सब लोग अपनी यूनिफॉर्म में है। हमारे सारे मेंबर्स जो है वो यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक फिट इंडिया मूवमेंट टाइप का हमारा बन रखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ मैं 90 वर्ष होने को आकाशवाणी के।
9: मैं सुषमा जोशी, आकाशवाणी ने 90 वर्ष अपने पूरे किए हैं, इस पर ये जो आयोजन किया गया है बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल है, ऐतिहासिक पल है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस पर, धन्यवाद।
10: मेरा नाम चंदा मलासी है और मैं काफी एक लंबा अरसे से आकाशवाणी के साथ जुड़ी हूँ और आज का ये जो उत्सव, जिसे मैं कहूंगी 90 साल पूरा करने का जो उत्सव है, वो बहुत ही एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है, एक अपनेपन की फीलिंग है, बहुत ही गौरवान्वित हूँ मैं।
11: हेलो, मैं हूँ सोनिया घुक्षाल और मैं अनाउंसर हूँ आकाशवाणी में और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना टाइम हो गया मुझे ज्वाइन किए हुए और ये पहली बार है कि जब हम सब लोग एक साथ गैदर हो रहे हैं और मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा एक्साइटमेंट है।
12: मेरा नाम शशि जोशी है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत इंजॉय करा।
13: मेरा नाम मंजीत रावत है और बहुत अच्छा लग रहा है और भविष्य में ऐसे आयोजन जाएंगे हम, बार बार किए जाएं।
14: मेरा नाम मंजू काला है, बहुत हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा कि आकाशवाणी के आज 90 ईयर्स पूरे हो गए, तो हम तो वैसे भी आकाशवाणी दूरदर्शन परिवार से

0: है, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत हमने वीडियोग्राफी करी, फोटोज बनाए और फ्रूटीज, लस्सी, बहुत चीजें खाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
1: नमस्ते, मेरा नाम आशिमा खन्ना है और मुझे आज बहुत ही ज्यादा खुशी हुई आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का जो मौका मिला और आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूरे हुए, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है और आज सबने बहुत उत्साह के साथ आज इस कार्यक्रम में अपना सबने सहयोग दिया और आज बहुत मजा आया, बहुत ही उत्साहपूर्वक रहा ये दिन। थैंक यू।
2: मेरा नाम आसिफ हसन है और अच्छा लग रहा है बहुत, आज आकाशवाणी की ओर से जो 90 साल का सफर हो रहा है वो अच्छा है। आकाशवाणी को और मतलब जनता से कहना चाहूंगा, आकाशवाणी को सुनो, जो हमारा पुराना चैनल है दूरदर्शन उसको सुनो, उसको आगे लेके आना चाहिए।
3: मेरा नाम सीमा सक्सेना है और बहुत दिव्य अनुभूति हो रही आज इसका हिस्सा बनकर मुझे, क्योंकि मैं खुद इसका आकाशवाणी का जो हिस्सा हूँ वो लगभग मैं अपने बचपन का याद करती हूँ। तो 82 में मैंने पहला प्रोग्राम दिया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट और उसके बाद मैंने 90s में युवाणी प्रोग्राम और उसके बाद में जो है मैं अनाउंसर के तौर पर यहाँ पर 2001 से आकाशवाणी से जुड़ी हूँ। तो आप समझ ही सकती है कि ये मेरे लिए कितना अच्छा मौका है कि जो मुझे इतने बड़े आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिला और इस संस्था का जो मैं हिस्सा हूँ वो अपने आप में बहुत ही अलग अनुभव है मेरे लिए। और मैं तो चाहती हूँ कि आकाशवाणी हर जन तक पहुँचती, जैसा कि उसका नाम ही है जन जन की वाणी आकाशवाणी, और जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारी आकाशवाणी देती है वो अपने आप में बहुत ही अलग है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो इसके स्लोगन है वो अपने आप में चरितार्थ होते हैं। आकाशवाणी एक ऐसी संस्था है जो हर जन तक पहुँचती है। अब तो पूरे विश्व में इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं और हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो मैं एक अनाउंसर के तौर पर आपसे बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के अब हमारे साथ लिसनर जुड़े हैं और हमें सुनते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। ये बात सबसे बढ़िया आकाशवाणी की है कि लोग इस पे भरोसा करते हैं।
0: मेरा नाम शांति बिंजला है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है आज, क्योंकि मेरा तो जुड़ाव आकाशवाणी से 24 सालों का सफर है। तो 24 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, यहाँ तक कि हमारे बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं तो ये कहूँगी कि ज्ञान जहाँ से हमने पाया वो है आकाशवाणी हमारा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, और धन्यवाद दूंगी आज विशाल भारती को।
4: जी, तो आज ये जो वॉकेथॉन, इस तरह का जो वॉकेथॉन का आयोजन हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं?
0: ये अच्छा है, आसपास के लोगों ने हमें जाते हुए देखा, उन्हें भी लगा कि हाँ आकाशवाणी भी, जिनको नहीं पता होगा वो भी जान जाएंगे कि आकाशवाणी कोई संस्थान है। और आकाशवाणी तो एक ऐसा संस्थान है, जब से ये रेडियो शुरू हुआ है और आज तक कभी बंद नहीं हुआ, कभी रुका नहीं। तो ये वॉक थी हमारी, जिस तरीके से हम चलते जा रहे हैं ये रेडियो भी हमारा चलता जा रहा है।
4: क्या नाम है आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज इस वॉकेथॉन का हिस्सा बनकर?
5: बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम रविंद्र है और 90 वर्ष पूरे हो गए हैं आकाशवाणी के, और जिस तरीके से वॉकेथॉन हुई है और बहुत जो है बड़ी संख्या में हमने देखा कि सबने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, तो ये बहुत अच्छा एक संदेश दिया है कैसे अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोग जागरूक है।
6: मेरा नाम रेखा जोशी, मैं दूरदर्शन में हूँ। सर, कभी हुआ ही नहीं, आज पहली बार ही ऐसा लग रहा है।
4: तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो होनी चाहिए?
6: होनी चाहिए, मैं तो कह रही हर ईयर होनी चाहिए।
7: मेरा नाम सुनीता छेत्री है और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हम लोग सब इकट्ठा हुए और जैसे हमने वॉक गए हम लोग, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ।
4: आपका क्या नाम है?
8: नाम पूनम खत्री है और आज हम मैराथन वॉक के लिए ये आकाशवाणी केंद्र में आए, हमें बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छे से व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की थी इन लोगों ने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड वर्क।
9: मेरा नाम समीना है और मैं आकाशवाणी में न्यूज़ सेक्शन में हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर वॉकेथॉन का आयोजन किया गया है, इसमें सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं और मुझे भी बड़ी खुशी है इस आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
10: मेरा नाम किरण है और जब से देहरादून आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी तब से मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आकाशवाणी के साथ जो सफर है हमारा एज ए लिसनर वो आई थिंक बचपन से ही है, और आज सुनते सुनते आज आकाशवाणी का मैं हिस्सा भी हूँ तो बहुत गर्व महसूस होता है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ हमारे पेरेंट्स बल्कि हमारे दादा दादी, हर कोई इस वक्त मुझे लगता है और कोई रेडियो चैनल वो सुने ना सुने लेकिन आकाशवाणी जरूर सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ इंफोटेनमेंट, अगर आप देखेंगे तो बच्चों के लिए भी अलग प्रोग्राम की सीरीज है, बड़ों के लिए और युवा साथियों के लिए। तो अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आकाशवाणी जरूर सुनिए। और ये भी कहूंगी मैं कि आकाशवाणी में जिस तरीके की वैरायटी होती है और जिस सरलता के साथ में वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं, वो सरलता और वो सौम्यता मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे किसी और चैनल में भी सुनने के लिए मिलती है।
11: मेरा नाम हिना जोशी, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये जो वॉकेथॉन का आयोजन किया गया है, जो आकाशवाणी के पदाधिकारी, बड़े अधिकारी, कर्मचारी और काफी सारे प्रतिभागी उसमें शामिल

0: हैं। वाकई में इस पद यात्रा का हिस्सा बनकर बहुत ज्यादा उत्साहित और ऊर्जावान खुद को फिर इस वक्त में महसूस कर रही हूँ। और अच्छा लगता है कि आकाशवाणी जिसको दशकों से लोग सुनते आए हैं वो आवाज आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है, हृदय में गूंजती रहती है। और ऐसे ही इन्हीं कामनाओं के साथ कि आकाशवाणी लगातार अपनी संस्कृति, जन सेवा और संवाद के जरिए लोगों से जुड़ा रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस गौरवशाली सफर को समर्पित इस वॉकेथॉन ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि रेडियो केवल सुनने का माध्यम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक भावनात्मक कड़ी है। कदमों के साथ बढ़ता उत्साह और चेहरों पर मुस्कान, इस पूरे आयोजन ने ये साबित कर दिया कि आकाशवाणी आज भी लोगों के दिलों में उसी आत्मीयता के साथ बसी हुई है। इसी विश्वास और ऊर्जा के साथ आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित वॉकेथॉन की ये रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। अब मुझे यानी प्रियंका जेना को दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित वॉकेथॉन की ये खास रेडियो रिपोर्ट, वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति रमेश चंद्रा।
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:44:51 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
3: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
4: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
3: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
4: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
3: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस,

0: आईयूएमएल, वीसी के और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:25 हुए हैं और ये समय है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। तो शुरू करते हैं इस फरमाइशी गीत के साथ, जो जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। इसी के साथ मारहरा दरवाज़ा एटा से इस गीत को सुनना चाहते हैं नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रशीद वारसी। तो और ये गीत है श्रोताओं फिल्म बॉम्बे से, जिसे आवाज़ दी है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने, वैरामुत्तू ने इसके बोल लिखे हैं और ए आर रहमान ने संगीत दिया है। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, अब अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म दस्तक से, जिसे आवाज दी है उदित नारायण ने, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत राजेश रोशन का है। और इस गीत की फरमाइश हमसे की है मथुरा उत्तर प्रदेश से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि ने। इसी के साथ GMS रोड देहरादून से राजेश्वरी सागर इस गीत को सुनना चाहती हैं, मुरादाबाद यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। तो सुनते हैं फिल्म तेजाब से ये गीत, क्षमा कीजिए, ये गीत है फिल्म दस्तक से उदित नारायण के स्वर में।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और अब अगला गीत श्रोताओं आपकी फरमाइश का, ये हमने लिया है फिल्म तेजाब से, जिसे गाया है अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। इसी के साथ रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी कुलदीप इस गीत को सुनना चाहते हैं। और हमारे पास इस गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है झारखंड से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, दीन बंधु महतो के साथ कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहीन हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। साथ ही श्रोताओं लक्सर से हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने इस गीत की फरमाइश भेजी है। तो प्रस्तुत है फिल्म तेजाब से ये अगला गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है आपको अगला गीत सुनाने का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फरमाइश आ रही हैं और हम सारी फरमाइश तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता फरमाइश कर रहे हैं उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। और अगला गीत अब जो सुनना चाहते हैं वो शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल ये सुनना चाहते हैं। फिल्म खुद्दार से किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में ये गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है राजेश रोशन का, इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख ने भी लिख भेजी है। और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा, इनके साथ ही अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहम, मोहम्मद आलम हाशमी इस गीत को सुनना चाहते हैं और साथ ही इसी गीत को हमारे पास फरमाइश भेजी है सुनने के लिए। शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। तो सुनते हैं फिल्म खुद्दार से ये गीत।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश हम ले रहे हैं फिल्म मोम की गुड़िया से लता मंगेशकर और आनंद बख्शी के स्वर में इस गीत के साथ, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और इस गीत को श्रोताओं सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा ने। इसी के साथ साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता इस गीत को सुनना चाहते हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी के साथ। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। साथ ही नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी के साथ। सब्जी मंडी झज्जर से हमारे पास फरमाइश भेजी है बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया ने। तो प्रस्तुत है लता मंगेशकर और आनंद बख्शी के गाया ये गीत फिल्म मोम की गुड़िया से।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: मार्केट के बारे में क्या?
4: परफॉर्मेंस का बोलो।
3: बी द फ्यूचर
4: मार्केट ट्रेंड देख।
3: सुनने में आया कि
5: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो।
4: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
4: मेरे दोस्त ने बोला
7: देवी जी की सुनो।
8: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है श्रोताओं, और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश। और आपकी फरमाइश में अब हम अगला गीत ले रहे हैं फिल्म दोस्ताना से किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से निवासी जो हैं सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तनु, नानू, राधिका रानी, रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आरएस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनीषा आहूजा, और इन्हीं के साथ पूरी चावला फैमिली इस गीत को सुनना चाहती है। साथ में छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा ने इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और समस्त परिवार के सदस्य इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही अनारकली बाज़ार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक।

दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव ने इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है, तो सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से ये गीत।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

आपने सुना ये गीत फिल्म बॉबी से लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के स्वर में, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनने के इच्छुक थे मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया शुएब खान, परी महल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा खान और मोहम्मद असलम सैफी, इल्मा खान, मास्टर जाहिद अली। संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा था। साथ ही भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण दपिंदर, वरिंदर कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिजीत भी इस गीत को सुनना चाहते थे। उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी, बाबू भाई भारती देवी ने हमें इस गीत को सुनाने की फरमाइश की थी। अब श्रोताओ, अगला गीत जो कार्यक्रम का अंतिम गीत है, इसको सुनना चाहते हैं। पहले हम बता दें कि ये किस फिल्म से और कौन सा गीत है। ये फिल्म जूली से लिया गया गीत है, जिसे किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी है, आनंद बख्शी के बोल हैं। और इस गीत को सुनना चाहते हैं वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट, तमन्ना कांगड़ा, मुजफ्फरनगर यूपी से राशिद मंसूरी, आयान मंसूरी, सयान मंसूरी, गंगो सहारनपुर से इलियास मंसूरी, हसन मंसूरी इस गीत को सुनना चाहते हैं। साथ ही टटीरी बागवत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारी

0: अली खान ने इस गीत को सुनना चाहा है, तो सुनते हैं कार्यक्रम का यह अंतिम गीत, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
2: हाँ?
1: हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की, तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

श्रोताओं, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:59:50 हुए हैं। अब समय हो गया है आकाशवाणी से दिल्ली के

0: परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal.